0: Talks with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sat sri akaal, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke ek khoobsurat show jiska naam hai Lunchbox Show. खूबसूरत इसलिए बिकॉज धूप भी है, बारिश भी है, सब कुछ है एक साथ एक ही छत के नीचे. आप मुझे सुन रहे हैं या फिर हो सकता है आप कार में बैठे हो या फिर आप हो सकता है काम करते करते सुन रहे हो, पर यस आप बने रहिए. मेरा नाम केतन है और मैं अभी से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे हूँ बहुत सारी बातों के साथ साथ बहुत सारी गपशप और एक से बढ़कर एक गाने भी चलाने वाला हूँ यहाँ पे. एज यू ऑल नो दैट यहाँ पे सबसे बड़े बॉलीवुड के गाने चलते हैं, हिट वाले वो भी. पर यस शुरुआत करेंगे एक खूबसूरत गाने से और उसके बाद आप सभी के लिए लेके आऊंगा एक अमेजिंग सी बात होम सिक रेमेडीज की. जी हाँ, अगर आपको कुछ भी कहना है फील फ्री टू टेक्स्ट मी. आप मुझे टेक्स्ट भेजिए 5599 पे जिसके बारे में चर्चा होगी यहाँ पे.
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है और यस से बात करेंगे होमसिक रेमेडीज की. एक मैसेज आया मुझे अमित भाई का. अमित भाई कहते हैं, आई वॉज सिटिंग ऑन द 80 बस कमिंग बैक फ्रॉम वर्क यस्टरडे एंड इट वॉज अ डेड साइलेंट. Everyone had their headphones in and staring blankly at their phones. Back home in Fiji, riding the minibus was full on vibe. Loud music playing, people chatting across seats and constant laughter. My flatmate from India says the exact same things about his auto rickshaw rides and local train journey. Where strangers instantly become your friends. Sitting on that quiet bus made me feel so isolated and homesick for that everyday desi noise and warmth. How do we deal with the silence, commute, homesickness in Auckland? Well, I think you are, first of all, New Zealand mein rehke, you are in the very best city because honestly batau, to mera experience to alag hi raha hai. Aap bus ki baat kar rahe hain, mujhe to road bhi khali khali dikhti thi jab main New Zealand mein aaya hu. अर्ली स्टेज पे. बट द थिंग इज, यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली ये जो बात है ये तो अलग अलग आप ले सकते हो इसको. सम पीपल लाइक नॉइसेस, सम पीपल लाइक क्वाइट, जो यू नो साइलेंस हो हर एक चीज़ हो. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन. और मैंने देखा है काफ़ी इंडिया से भी लोग आए हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्हें सचमुच साइलेंस बहुत ज़्यादा पसंद, दे लव द एनवायरमेंट. अब डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए. डेफिनेटली यू विल गोइंग टू मिस, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि आपके बसेज हैं या फिर आप जिसमें सफ़र करते हैं वहाँ पर साउंड होता था, नॉइस होती थी. बट अगेन यहाँ पर मुझे लगता है मेरा पर्सनल टेक तो ये कि I think it is good to have no sound while, because everyone is very, वो respect करते हैं एक दूसरे के time की, एक दूसरे की privacy की, and they always think about कि भाई जो भी हम कर रहे हैं it should not affect the other person. For example, अगर आप loud music सुनना पसंद करते हैं, हो सकता है उससे बाकियों को दिक्कत हो. जैसे कि मैंने देखा है इंडिया में कोई देखते नहीं, वो अपने मनपसंद के गाने चलाते हैं, वो अपने मनपसंद का मनपसंद की वॉल्यूम भी रखते हैं विदाउट आस्किंग एनीवन कि भाई वॉल्यूम कम ज़्यादा क्या करना है, किस तरह के गाने चलने हैं, वो सारी चीज़ें. तो आई फील दैट इज़ गुड थिंग अबाउट न्यूजीलैंड. बट अगेन अगर आपको फिर भी मन करता है ऐसा, तो मैं तो कह रहा हूँ किसी दिन कोई गाड़ी वाड़ी बुक कर लो, कोई एकांत जगह जाओ जहाँ पर सचमुच कोई ऐसे पब्लिक या रेसिडेंशियल एरिया नहीं हो, वहाँ पर थोड़ा घूम लो, अच्छा लाउड म्यूज़िक अपने हिसाब से चलाओ और इन्जॉय करो, है ना. बट यस, अगर और भी ज़्यादा मिस करते हैं ये चीज़, तो डेफिनेटली मैं तो कहता हूँ कि एक दो हफ्ते की छुट्टी लेके एक बार फिजी घूम के आ जाओ. वहाँ पे ये आपको एकदम से फिर से आपको वाइब थोड़ी मिल जाएगी एंड देन यू कम बैक वंस यू आर डन कि हाँ भी हो गया, देन यू कम बैक. बट थैंक यू सो मच यार अमित भाई आपके मैसेज के लिए, एंड कीप लिसनिंग टू अस, कीप शेयरिंग द थॉट्स एंड कीप रिकमेंडिंग अदर पीपल एज वेल.
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम
3: driving you home. The drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार.
1: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
8: What if your next holiday wasn't just a holiday,
9: but the adventure everyone talks about?
8: Imagine chasing waterfalls,
9: wandering lush rice terraces,
8: catching unforgettable sunsets,
9: and relaxing at iconic beach clubs.
8: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
9: discovering incredible temples,
8: tasting world-famous street food.
9: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
10: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
10: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
11: Kahani of Indelible Homes.
12: Branchy Group 3 Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Marine Prastut Kareche Raj Gadvi live in Auckland.
13: Hey, hello, bhai, hello, hello.
12: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે જ્યાં હશે મ્યુઝિક મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ ગરબા વિથ રાજગઢવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz
14: बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
15: क्यों क्या हुआ
14: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
16: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424
17: Non-stop Bollywood.
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
17: हम playing Bollywood's biggest hits.
19: Lunchbox with Ketan.
20: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
19: हम office shoutout.
0: स्वागत करते हैं फिर से ये रहा office shoutout का सेगमेंट यानी कि आप मुझे बताइए टेक्स्ट भेजिए कि आपको अभी हाल फिलहाल आप क्या खा रहे हैं वेदर इट हैज बीन प्रिपेयर्ड एट होम और आपने बाहर से खरीदा है तो यस 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं बट यस मैं अगर अपनी बात बताऊं तो आज मैंने आलू मटर की सब्जी और पूरी खाई है सुबह आई मीन सुबह एज इन सुबह बनाई उठ के खुशबू बहुत जल्दी उठती है एंड आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी ऐसे लिसनर्स होंगे जो बहुत ही जल्द उठा करते होंगे बिकॉज ऑफ कोर्स रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है कि भाई जल्दी उठो बच्चे को प्रिपेयर करो ये सब करो वो सब करो खाना बनाओ एंड देन गो टू वर्क सो यस खुशबू इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम मैं उठता हूँ मैं एक घंटे बाद उठता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स खुशबू तब तक रेडी हो जाती है एंड देन आई ट्राई टू हेल्प फॉर एग्जांपल नैपी चेंज करना ये सब करना इहान का थोड़ा ध्यान रखना उसको फीड करना जो बर्तन डिश नहीं धुले हैं उसको धोना तो ये सारा काम मैं करता हूँ सुबह उठ के सो यस तो सुबह उठ के हमने पूड़ी खैर यहाँ पे मेरा पॉइंट ये नहीं था कि मैं क्या करता हूँ मेरा पॉइंट ये था कि पूड़ी हम मोस्टली जो भी प्रिपरेशन करते हैं हम सुबह बनाते हैं तो सुबह बनाई थी और इतनी यमी लगी यार ऑनेस्टली जादू है मतलब मज़ा आ गया एक तो चाय इतनी पॉपुलर है इनफैक्ट मेरे दोस्त आते वो भी ये बोलते हैं कि यार क्या चाय बनाती है टच वुड बढ़िए आप मुझे टेक्स्ट भेजिए 5599 पे और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कुजीन कौन सा है ये भी आप मुझे टेक्स्ट भेज के बता सकते हैं पहले एक मैसेज आया है ये एक्चुअली पहले आ चुका था बट अभी मैं बोल रहा हूँ ये ऑफिस टुडे पिक्ड अप अ चिकन शवरमा शवरमा फॉर लंच शवरमा क्या होता है चिकन शवरमा माय फेवरेट कुजीन इज लेबनीज राइट प्लीज एक्सप्लेन अमन भाई शवरमा शवरमा क्या होता है चिकन शवरमा आई वुड लव टू नो यार और एक और मैसेज आया है वर्किंग फ्रॉम होम लेफ्ट ओवर दाल एंड राइस मेड बाय माय मॉम माय फेवरेट कुजीन इज साउथ इंडियन कविता ये हैंडरसन से इन्होंने मैसेज भेजा है वेल थैंक यू सो मच एंजॉय करिए ये बॉलीवुड का टॉप हिट ऑफ द आवर का गाना
17: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे थोड़ी नजर डाल देते हैं। 23 जुलाई 1952 को हेलसिंकी ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड के एथलीट येवीती विलियम्स ने हिस्ट्री क्रिएट की थी। वो न्यूजीलैंड की पहली फीमेल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनी। क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने 6.16 मीटर जंप किया, लेकिन फाइनल का पहला दो अटेम्प्ट जो है वो फाउल हो गया था। एलिमिनेशन के प्रेशर होने के बाद उन्होंने 5.9 मीटर जंप करके टॉप सिक्स में जगह बनाई। फिर अपने फोर्थ अटेम्प्ट में 6.24 मीटर के आउटस्टैंडिंग जंप लगाई, जो ओलंपिक रिकॉर्ड था और वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम था। इस अमेजिंग परफॉर्मेंस से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और पूरे न्यूजीलैंड को प्राउड फील कराया। उनकी जीत इतनी हिस्टोरिक थी कि अगले 40 साल तक कोई भी न्यूजीलैंडर्स की फीमेल एथलीट ओलंपिक गोल्ड नहीं जीत सकी। येवीती विलियम्स की डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस आज भी एथलीट्स के लिए एक इंस्पिरेशन मानी जाती है। वैसे क्या लगता है आपको, 40 साल बाद किसने रिकॉर्ड तोड़ा? 555 इज द नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं।

0: वेल, आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट लेके आए हम आज के अनफिल्टर एपिसोड में मिलेंगे शनील लाल। जी हाँ, इन्होंने रिकॉर्ड किया है विद रुस्बिन सैंडी, जो न्यूजीलैंड के वेल नोन जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमांडर, कमेंटेटर और LGBTQIA+ एक्टिविस्ट भी है। शनील ने कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बताया है कि बैन करवाने के लिए 5 साल तक का कैंपेन चलाया उन्होंने, जिसके बाद 2022 में न्यूजीलैंड में इस प्रैक्टिस पर बैन लग गया। वैसे इस कन्वर्जेशन में वो LGBTQ+ राइट्स, रेसिज्म, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी से जुड़ी मिथ्स, वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन और रिप्रेजेंटेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर खुलकर बात करते हैं। साथ ही फैमिली सपोर्ट, हेट स्पीच लॉज और ब्लड डोनेशन पॉलिसीज जैसे इश्यूज पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर आप डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि इक्वालिटी और इंक्लूजन के लिए हम सब एवरीडे में क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए। बट यस अगेन, अगर आप चाहते हैं ब्रेकफास्ट शो के कैचअप, ब्रेकफास्ट शो के कंटेंट को कुछ कैचअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें BF लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए। बट यस, सफायर 2.0 भी आ चुका है, 12 दिन हो चुके हैं एंड 60,000 व्यूज हो चुके हैं उस वीडियो में। सो यस, ये सॉन्ग अब सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये सॉन्ग आपका भी बन चुका है। इतना प्यार दे रहे हैं आप, उसे कंटिन्यू रखिए और जितना शेयर कर सकते हैं, जितने कमेंट्स आप वहाँ पे डाल सकते हैं, सो दैट इसकी जो एल्गोरिथम है इतनी हाई पे चली जाए दैट इट रीचेस टू अरिजीत सिंह खुद और एड शेरन के पास भी पहुँच जाए और वो इसे शेयर करें। बिकॉज इस वीडियो में हमने पूरा पूरा न्यूजीलैंड को शो किया है, न्यूजीलैंड को एक तरह से ट्रिब्यूट दी है बाय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। बट यस, एक और खास बात यह है कि इसके जो पूरे बोल हैं, जो लिरिक्स हैं, वो कम्प्लीटली न्यू है एंड इट हैज़ नॉट बीन टेकन एनीथिंग फ्रॉम द ओल्ड वन अपार्ट फ्रॉम द चम चम चम के सितारे वर्गी एंड सफायर। सो बेसिकली आई वुड से दैट फील वही है, धुन वही है, बट प्यार न्यूजीलैंड का है। जी हाँ, एकदम न्यूजीलैंड तरीके से, कीवी तरीके से। सो यस, जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए सफायर केतन के नाम से, गाना आपको मिल जाएगा। एंजॉय करें वीडियो और प्लीज वहां पे आप जितना प्यार दे सकते हैं दीजिए।
1: लंच बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

सबसे पहले मीडिया इंडस्ट्री की खबर में लेके आया हूँ चटनी शॉर्ट्स में। स्टफ ने अपनी न्यूज रूम में रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोज की है, जिसके तहत 8 एडिटोरियल जॉब्स खतरे में है। कंपनीज का कहना है कि ये स्टेप चेंजिंग मीडिया एनवायरनमेंट को देखते हुए लिया जा रहा है। बे ऑफ प्लेंटी के पापामोआ से एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है। एक रोड रेज डिस्प्यूट के दौरान एक फादर को रिवर्सिंग कार ने टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है और पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। इंटरनेशनल अपडेट में कनाडा ने अमेरिका के साथ एक जॉइंट ब्रिज ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी है। ये डिसीजन यूएस के नए टैरिफ अनाउंस होने के बाद लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशन और बढ़ गई है। इंडिया से काफ़ी सैड न्यूज़ है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल ब्लास्ट में कम 12 लोगों की डेथ हो गई है और कई लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू टीम्स लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्पोर्ट्स से एक पॉजिटिव स्टोरी, न्यूजीलैंड में जन्मे इरिश रग्बी स्टार ने अपने पुराने स्कूल को सरप्राइज विजिट किया और स्टूडेंट्स के साथ वक्त भी बिताया। इस गेस्चर से काफ़ी तारीफ हो रही है। एनवायरमेंट के कंसर्न की खबर, न्यूजीलैंड के होई हो यानी येलो आइड पेंगुइन, जो दुनिया की सबसे रेयर पेंगुइन में से एक है, अब एक्सटेंशन के है और करीब पहुंच चुकी है। कंजर्वेशन ग्रुप्स ने इस स्पीशीज को बचाने के लिए और सपोर्ट की अपील की है। एंटरटेनमेंट से भी एक सैड न्यूज, गॉडज़िला फ्रेंचाइजी की यंग एक्ट्रेस काइली हॉटले का कार क्रैश में डेथ हो गई है। वो सिर्फ 18 साल की थी।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: आज का सवाल मेरी तरफ से ये है कि which country is known as the land of the rising sun? ऐसी कौन सी जगह है जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? कौन सी कंट्री है? आप मुझे इसके जवाब 5599 में भेजिए. लेट्स सी कितने स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे, या फिर कितने लोग हैं जिनको ये जवाब पता है. 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे जवाब भेज सकते हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हालचाल 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 50% चांस है बारिश के, आज 1.2 mm तक रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन आज का सनसेट होगा 5:30 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वैसे यस, इस आर में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में, जहां पे आप मुझे भेजेंगे कुछ ऐसी बातें जहां पे यू नो यू मस्ट हैव फेल्ट कि यार क्यों ऐसा हो, क्यों लोग करते हैं ऐसा। सो रेंट लाइन इट इज, बट उसके बाद बॉलीवुड की भी खबर लेके आऊंगा, लेटेस्ट खबर भी लेके आऊंगा, और स्पोर्ट्स की जगत में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बात होगा। एंड सबसे खास बॉलीवुड में कलेक्शंस का क्या रहा है वो सारी बातें भी बताऊंगा। दमदार गाने तो चलेंगे ही, कुछ मौके भी दूंगा यहाँ पे जिसे आप सुन के उस पर हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो यस, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू इट, कीप लिसनिंग टू माई शो लंच बॉक्स शो।
0: बचाओ क्या,

0: कुछ कम्युनिटी न्यूज बता देता हूँ। यहाँ पे हेल्थ वेलबिंग एक्सपो 2026 होने वाला है संडे को 26 जुलाई, फ्री है सभी के लिए, यानी कि जो भी बंदा जाना चाहता है डेफिनेटली आप जाइए। काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी अच्छा भी है आपकी हेल्थ के लिए भी। फिजी गिरमिथ फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन ये लेके आ रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया एनुअल कम्युनिटी प्रोग्राम जहाँ पे आप जा सकते हैं। लोकेशन A1 इवेंट सेंटर, 731 ग्रेट साउथ रोड, पापाटोटोय, सुबह 10 से लेके दिन के 3 बजे तक। फ्री स्क्रीनिंग होगी आपकी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज, किडनी, ECG, आई टेस्ट, उसके साथ आपको कैंसर से रिलेटेड बातें भी पता पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिकल लर्निंग भी मिलेगा, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी आपको पता पड़ेगा, एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड करियर के बारे में भी वहाँ पे बात होगी। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देंगे जैसे आपकी बॉडी को लेके, फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसके अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो ले सकते हैं, नहीं भी है तो भी ले सकते हैं, इट इज़ गुड टू हैव द नॉलेज। उसके बाद अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो काफ़ी एक्टिविटीज़ है, फेस पेंटिंग है, किड्स एक्टिविटीज़ है, लाइट रिफ्रेशमेंट्स भी हैं, हैम्पर गिववेज, योगा क्लासेस, जुम्बा, लाइव परफॉर्मेंसेज, सॉसेज सिजल एंड मोर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। एंड ऑफ कोर्स इंक्वायरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सरोजनी दयाल, sromich@hotmail.com, या फिर आप शनीला महाराज, shanilafgfnz@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अखंड रामायण पाठ भी हो रहा है यहाँ पे, अखंड रामायण पाठ जो कि 1 एंड 2 अगस्त को होने वाला है। महाप्रसाद भी वहाँ पे सर्व किया जाएगा। सो 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में आप पहुँच जाइए श्री राम मंदिर में। उसके अलावा न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं राम श्री राम लीला। अगर आपको स्टॉल्स की इंक्वायरी करनी है तो आप कॉल करिए मास्टर अशोक को 021-179-5459 पे। लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर. For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
1: When hard work calls from dawn's first light, Tianli Tractor Tires keep you rolling right. Premium performance at a price that's fair, with a comprehensive range for every job out there. For farmers and contractors tried and true, built for the tough demands you put them through. For value, grip and reliability all day and night, see your local dealer for Tianli Tires with a lifetime warranty. That's peace of mind done right. T's and C's apply. Tianli Ag Tires. Lifetime warranty.
0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: '21 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम. और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
6: Lunchbox with Ketan.
7: मुझे पसंद है लड़का.
6: हम. Lunchtime Rent Line.
8: Lunchtime Rent Line के सेगमेंट में स्वागत है. आयशा का मैसेज आया है. वो कहती हैं, हाय केतन, दिस इज आयशा फ्रॉम योर नेबर. अरे वाह, पापा टोटो से इन्होंने मैसेज किया है. टुडेज रेंट इज अबाउट पीपल हु कैंसिल प्लान्स एट द लास्ट मिनट आफ्टर यू ऑलरेडी गॉट रेडी. मतलब वो कहते ना, दुखती नस पे आपने, नहीं सॉरी, जलती नस पे मरम छिड़क दे, पता नहीं क्या बोलते हैं. एनीवेज, ये बहुत ही सोच विचार वाला बात है. थोड़ी इरिटेशन भी होती है क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे लोग काफ़ी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक्चुअली. यू नो, एक नहीं, मैं मतलब गिना सकता हूँ उतने, यार नाम नहीं बताना चाहूँगा, बट यस, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लास्ट मिनट पे आके मना कर देते हैं, प्लान चेंज कर देते हैं, और उस वजह से हमारा मूड ऑफ, मूड भी ऑफ हो जाता है. बट आई होप कि आपके ग्रुप में ऐसा कोई नहीं हो. अगर है तो मुझे बताइए 5599 पे, विदाउट मेंशनिंग द नेम आप बता सकते हैं मुझे कि अगर आपके ग्रुप में भी हैं तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं, बताइए मुझे. सुनील भाई का आया मैसेज मैंग्रे से, व्हाई डू पीपल लीव डर्टी डिशेज इन द सिंक एंड वॉक अवे लाइक इट्स समवन्स एल्स जॉब. ये थोड़ा अनहाइजेनिक वाली बातें हैं यार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको. जब आप एक बार खा लो, यूज़ कर लो, उसको बस हाथों हाथ सेम टाइम पे वॉश भी कर लो, सिंपल इज दैट. रीना कहती हैं, कैन वी रेंट अबाउट ड्राइवर्स हु डोंट लेट यू मर्ज बट एक्सपेक्ट एवरीवन टू लेट देम इन. सही है, वेरी इंटरेस्टिंग. इस पर तो मतलब चर्चा हो सकती है, सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, चर्चाएँ हो सकती है इस पर, चर्चा नहीं. अर्जुन आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं. टुडेज रेंट इज अबाउट पीपल हु बोरो चार्जर एंड रिटर्न देम ओनली व्हेन देयर ओन बैटरी इज फुल. इंटरेस्टिंग, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वैसे इसका जवाब नहीं है, आई मीन लाइक, वो पर्सन ने लिया है तो वो चार्ज करने के लिए लिया होगा ना, ऐसा थोड़ी कि थोड़ी देर के लिए चार्ज करने के लिए लिया है तो वो फुल करके देगा. आई थिंक दैट्स व्हाट माय टेक इज. बट आप बताइए, आपको क्या लगता है, अगर कोई चार्जर अगर ले रहा है तो क्या उसे फुल नहीं करना चाहिए?
6: लंच के मंच पे टॉप हिट of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: अभी की लेटेस्ट खबर, न्यूजीलैंड पुलिस में एक नया कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ चुका है। न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेपियर कैंडिडेट और फॉर्मर लेबर मिनिस्टर स्टुअर्ट नैश अपने एलिजिट सेक्सिस्ट कमेंट की वजह से काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक नैश ने नेशनल एमपी केटी निमोन के मैटरनिटी लीव को लेकर प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज में उन्हें वन ऑफ द लेजिएस्ट एमपीज कहा। नॉट गुड। लेकिन कैटी निमोन ने इस क्लेम को रिजेक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ 10 वीक्स की मैटरनिटी लीव ही ली थी और उस दौरान भी इलेक्टोरेट का काम करती थी। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने नैश के इस कमेंट को सेक्सिस्ट और ग्रॉसली इनअप्रोप्रिएट बताया। उन्होंने कहा कि मैटरनिटी लीव लेना और फैमिली को टाइम देना हर वर्किंग मदर का हक है और वुमेन एमपीज को इसके लिए सपोर्ट मिलना चाहिए। ग्रीन पार्टी ने भी कमेंट की निंदा की है, जबकि न्यूजीलैंड फर्स्ट ने फिलहाल इस मामले पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है। स्टुअर्ट नैश ने भी रिस्पॉन्स मांगा गया है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से भी कोई पब्लिक ट्रीटमेंट या स्टेटमेंट नहीं मिला है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर करते हैं तो।

0: द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड में परफॉर्म करने एक अनफॉर्गेटेबल नाइट लेके। जी हाँ, एक फुल ऑन म्यूजिक के साथ, फुल ऑन कवाली, सूफी और आपके मोस्ट फेवरेट सॉन्ग संग बाय राहत फतेह अली खान वो आने वाले हैं यहाँ पे और आप सभी के सामने गाने वाले हैं एक से बढ़कर एक गाने। वैसे यस, वो अकेले नहीं, उनके बेटे भी आ रहे हैं साथ में, तो वो भी मतलब बहुत ही बढ़िया गायक है, बहुत ही बढ़िया फनकार है। वैसे आप एक्सपीरियंस करें बहुत ही बढ़िया अमेजिंग शो द ट्रस्ट एरिना में ऑकलैंड, जो कि 25 जुलाई को होने वाला है, यानी कि आज हो चुकी है 23 तारीख, यानी कि लिटरली दो दिन बाकी है आपके पास। अभी भी मौका है, टिकट ले लीजिए। टिकट्स आर नाउ ऑलरेडी अबाउट टू गेट सोल्ड आउट, बट बिफोर दैट यू गो ऑन dryTickets.com पर और टिकट खरीद लीजिए। प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। वैसे एक सवाल रह गया मेरा, उनके बेटे का नाम क्या है? मैंने जहाँ मुझे नाम नहीं बताया उनके बेटे का, तो जो आ रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म करने उनके बेटे का क्या नाम है? 5599 नंबर जहाँ पे आप फट से मुझे भेज दीजिए ये जवाब।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Breakfast show with VJ and Pooja.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
5: क्या? कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा, Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: Do Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
3: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
4: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave. Battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
5: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest Flowmate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
6: Lunchbox with Ketan.
7: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
8: इसके पीछे
6: लंच के मंच पे
9: बॉलीवुड से खबर लाया हूँ। प्राइम वीडियो की अपकमिंग हिंदी ओरिजिनल फिल्म फूलन ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। एमी अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर रिची मेहता की डायरेक्टेड ये फिल्म 2000

26 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF के प्रेस्टीजियस स्पेशल प्रेजेंटेशन सिलेक्शन के लिए सेक्शन में सिलेक्शन हुआ है और ये फेस्टिवल 10 से 20 सितंबर तक होगा और फूलन की स्क्रीनिंग 16 सितंबर को प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर में रखी गई है। फिल्म फूलन देवी की ऑटोबायोग्राफी आई फूलन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियंस बैंडिट क्वीन से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये ट्रेडिशनल बायोपिक नहीं है। इसमें फूलन देवी की जिंदगी का एक इंटेंस 48 आवर सीज को दिखाया गया है जिसमें उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। टिफ में सिलेक्शन किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। फेस्टिवल प्रीमियर के बाद फूलन दुनिया भर के व्यूअर्स के लिए प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है, यानी कि सितंबर बाद ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सो इफ यू वांट टू वॉच समथिंग वेरी नाइस एंड बेस्ड ऑन ट्रू या फिर इंस्पायर बाय द ट्रू इवेंट, तो ये जो ऑटोबायोग्राफी काइंड ऑफ आ रही है उसे आप डेफिनेटली देख सकते हैं।

वैसे एक सवाल किया था मैंने, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन. कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने न्यूजीलैंड बताया, बट न्यूजीलैंड इज नॉट द राइट आंसर. द फर्स्ट पहला जो सबसे पहले मैसेज आता है उनका आंसर सही है. विकास इनका नाम है, ये इन्होंने मुझे सिटी में सुन रहे हैं मुझे और उन्होंने मुझे भेजा है प्रॉपर जवाब. इन्होंने जापान भी लिखा है प्लस उसके आगे ये भी लिखा है, द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज जापान बिकॉज इट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट वेयर द सन अपीयर्स टू राइज फर्स्ट. द नेम कम्स फ्रॉम द जापानीज वर्ड निहॉन और निपॉन विच मीन्स ओरिजिन ऑफ द सन. क्या बात है, थैंक यू यार, थैंक यू ब्रो फॉर सेंडिंग यू नो प्रॉपर जवाब कि भाई, ताकि जिनको नहीं पता हो उसका रीजन भी मिल जाए कि भाई क्यों इसे कहा जाता है. बट यस, न्यूजीलैंड को एक और चीज से भी नवाजा जाता है. क्या है वो? द लैंड विद द लॉन्गेस्ट, क्या है वो मुझे बताइए 5599 पे.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप बने रहिए बिकॉज SR में भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाला हूँ। स्पेशली टेक टॉक के बारे में भी मैं बात करूंगा। एंड यस, कौन कौन से स्पोर्ट्स है जिसे आप देख सकते हैं। बट यस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा शो 3 बजे तक है। उसके बाद सैंडी जुड़ जाएंगी फॉर द कॉफी ब्रेक और उसके बाद ड्राइव शो का कारवां शुरू हो जाएगा। बट यस, जो भी मुझे सुन रहा है 12 बजे से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कीप लिसनिंग टू मी। और अगर आपने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नाउ स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। मैं लेके आऊंगा सबसे पहले तो लेटेस्ट खबर थोड़ी देर में।
1: बचाओ क्या,

चलिए लेटेस्ट खबर पहले पढ़ लेते हैं। ऑकलैंड में हाउसिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है। ऑकलैंड काउंसिल ने 17 से 5 वोट से ज्यादा हाउसिंग इंटेंसिफिकेशन के फेवर में डिसीजन लिया है। इसका मतलब है कि मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स और टाउन सेंटर्स के आसपास फ्यूचर में ज्यादा अपार्टमेंट्स और मल्टी स्टोरी होम्स बन सकेंगे। मेयर वेन ब्राउन ने इस डिसीजन को एक बैलेंस कॉम्प्रोमाइज बताया। उनका कहना है कि लगभग 85% प्रॉपर्टीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पहले से बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं, वहां हायर डेंसिटी हाउसिंग को इनक्रेज किया जाएगा। नए प्लान के तहत डोमिनियन रोड, सैंडरिंगम रोड और ग्रेट नॉर्थ रोड और ओनिवा रोड जैसे मेजर बस कॉरिडोर्स के पास 6-स्टोरी बिल्डिंग की परमिशन मिल सकती है। काउंसिल का मानना है कि इससे हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव होगी और ग्रोइंग पॉपुलेशंस के लिए ज़्यादा होम्स अवेलेबल होंगे। अब इस प्रपोजल पर पब्लिक सबमिशन का एक और राउंड होगा, जिसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लंच बॉक्स विद केतन।

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay।
3: राहत फतेह अली खान आ रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म करने आप सभी के बीच द ट्रस्ट एरिना में 25 जुलाई यानी कि परसों को, प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन आप सभी के लिए लेके आए हैं एक अमेजिंग शो जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक टाइमलेस हिट सुनने को मिलेगा। सोल स्टेरिंग कवाली एंड द पावरफुल वॉइस दैट हैज कैप्टिवेटेड ऑडियंस पूरी दुनिया में। जी हाँ, काफ़ी कुछ होगा एंड ऑफकोर्स वो गाने भी ये गाएंगे जो आपके सचमुच जुबान पे हैं जब भी आप राहत फतेह अली खान का नाम सुनते हैं तो वो गाना गाते हैं। डेफिनेटली यार कुछ फेवरेट्स है, जैसे कि मेरे लिए है सांसों की माला, देन आफरीन, उसके बाद और भी है यार, मतलब एक गरज बरस भी है, बट गरज बरस आई डोंट नो इफ ही विल बी सिंगिंग दिस टाइम और नॉट, बट यस द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं यहाँ पे ऑकलैंड में परफॉर्म करने द ट्रस्ट एरिना में 25 जुलाई को। टिकट ले लीजिए drytickets.com पर जाकर।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

कौन कौन से स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि एक शो हुआ था करण औजला का, जहाँ पे विराट कोहली भी आए थे। क्या अमेजिंग शो रहा होगा, जस्ट इमेजिन यार, लाइक विराट कोहली वॉज ऑन टॉप ऑफ द स्टेज टुगेदर विथ करण औजला। यानी कि लोगों ने टिकट एक के पैसे लिए होंगे, एक के पैसे दिए होंगे टिकट के, लेकिन दो सेलिब्रिटी साथ में थे, एक गाने वाला और एक बजाने वाला, बैंड नहीं, बॉल को धोने वाला क्रिकेट, यू नो व्हाट आई मीन। बट यस, ऑकलैंड आपके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया खबर है। नहीं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, विराट कोहली यहाँ नहीं आ रहे, अगर विराट कोहली आते तो शायद मैं भी सबसे पहले टिकट लेके जाता। मैंने तो ले ली वैसे टिकट, बट सबसे पहले लेता। वेल यस, ऑकलैंड आप रेडी हो जाइए, बिकॉज पंजाबी म्यूजिक के ग्लोबल सुपरस्टार करण औजला और अपने पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं 25 अगस्त को, यानी कि ठीक एक महीने बाद स्पार्क एरिना में। और एक्साइटमेंट को डबल करने के लिए उनके साथ विराट कोहली तो नहीं, लेकिन यस स्पेशल गेस्ट इक्की आ रहे हैं परफॉर्म करने यहाँ पे। अगर आप भी इस ब्लॉकबस्टर कॉन्सर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जीतिए डबल पास। बस अपने फेवरेट करण औजला सॉन्ग का नाम के एक कीवर्ड के साथ टेक्स्ट भेज दीजिए मुझे अभी हाल फिलहाल 5599 पे, ताकि आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और डबल पास जीत सकें। टिकट और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट hum.roa.nz या फिर livenation.co.nz। करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर 25 अगस्त, स्पार्क एरिना, मिस मत करना, क्योंकि ये कॉन्सर्ट साल का बिगेस्ट लाइव इवेंट्स में से एक होने वाला है। बता रहा हूं मैं। वैसे चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, वो वाला जहां पे आपको बताया था मैंने कि कौन कौन से स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं। आज है 23 जुलाई, तो हैमबर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस, ये टेनिस वुमेन हो रहा है, इसे आप देख सकते हैं। यूसीआई बीएमएक्स रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। ICF कनॉय स्लेलोम वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। फेंसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ और भी इवेंट्स हैं जो कल से शुरू हो जाएंगे, बट तब की तब बात करेंगे।

0: को.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए। स्वप्निल शाह को आप कॉल करिए, बिकॉज अगर आपको कुछ सवाल जवाब है तो आप उन्हें डायरेक्ट कॉल करिए 0224394736 पे। बट यस, ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशिक ग्रुप। आप सभी के लिए लेके आए एक अमेजिंग सा गरबा नाइट विथ सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव इन ऑकलैंड। डबल पास के लिए आप मुझे आर बोले तो राज, जी बोले तो गढ़वी, और आप अपने नाम के साथ मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि स्पेक्टेकुलर इवेंट के लिए आप ड्रॉ में शामिल हो सके और डबल पास जीत सके।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: ड्राइविंग यू होम,
4: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहां पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप दिलजीत हो?
6: आए आए बताओगे यार।
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
8: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Savers. Conditions apply.
9: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours. For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
1: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
11: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम
1: TikTok.
0: टेकटॉक के सेगमेंट में मैं बात करूंगा हमारे रो ऐप की। काफ़ी कुछ कंटेंट हम वहाँ पे डालते रहते हैं, इनफैक्ट आजकल हम आर्टिकल्स भी डालने लग गए जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट ये सभी हाल फिलहाल आप उसके थ्रू प्लेलिस्ट भी सुन सकते हैं, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट। आप हम रिवाइंड सुन सकते हैं जो कि रोवा का नंबर वन म्यूजिक स्टेशन है फॉर बॉलीवुड गोल्डन एरा 60s एंड 70s के। नंबर टू पे है हम के 80 दशक के जुकबॉक्स, 80s जुकबॉक्स, जो कि बहुत ही एक से बढ़कर एक गाने लगाते हैं 80 दशक के। फीजी भजन्स और फीजी कीर्तन भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं 24/7। दुनिया का पहला है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप स्ट्रीम कर सकते हैं। चढ़दी कला पंजाबी हिट्स भी आप एंजॉय कर सकते हैं एंड राहत फतेह अली खान के गाने भी सुन सकते हैं, यानी कि वो आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो टिकट ले लीजिए, लेकिन यस ये प्लेलिस्ट भी आप उनकी सुनना और क्या पता कुछ गाने याद आ जाए और वो वहाँ पे भी गा दे। नाउ जस्ट इमेजिन, इट्स गोना बी अमेजिंग राइट। वेल यस, डाउनलोड करें आज ही रोवा ऐप अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से।
1: दिल से

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और गाने दमदार. मौके भी आपको अच्छे खासे दिए, काफी मैसेजेस आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप बस बने रहिए कॉफी ब्रेक के लिए. सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली, बट मैं निकलता हूँ. आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3. बढ़िया सर, रो ऐप डाउनलोड तो कर ही लिया आपने, साथ में आप AI से भी फीचर हो जाओ, अच्छे से रूबरू करो, जितना हो सके सीख सकते हो सीखो, जब तक इन्फॉर्मेशन फ्री है, लेकिन जस्ट क्रॉस चेक कर लो कि क्या सही है क्या नहीं है. बट AI इज गोइंग ऑन अनदर लेवल, आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स. अगर आपने आज की तारीख में नहीं इन्वेस्ट किया अपना टाइम टू लर्न द AI, कल को सचमुच बहुत ज़्यादा पछताओगे, बिकॉज डेफिनेटली AI विल नॉट गोइंग टू यू नो win the race, it will be the person who gonna be riding the AI. जी हाँ, जो चलाएगा उसे, जिसकी गाड़ी, जो AI की गाड़ी चलाएगा वही सबसे आगे जाएगा. Same as last time, जो लोग घोड़े पे सवारी करते थे या फिर बैलगाड़ी चलाते थे, जस्ट इमेजिन अगर उन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी होती तो कितना पीछे रह गए होते, और जिन्होंने हो सकता है नहीं सीखी हो वो पीछे रह गए. And now the taxis are here. So yeah, exactly like that, evolution हमेशा आता रहता है और आपको टाइम के साथ चलते चलते खुद भी बदलना पड़ता है. सो दिस इज राइट टाइम राइट नाउ टू लर्न AI एंड गेट इन टू इट एंड जस्ट यू नो भंडारा इकट्ठा करो जितना आप नॉलेज कर सकते हो. बट यस, आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम. बाय बाय, टेक केयर, लव यू.

3:07 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड आपके सुपर सिटी में बहुत ही जल्दी राहत फतेह अली खान लाइव परफॉर्म करने के लिए पहुंचने वाले हैं और इनका शो ट्रस्ट अरीना में होने वाला है। नाउ द थिंग इज कि जो हमें जानकारी आई है, बहुत ही कम टिकट्स एक्चुअली में बाकी है इस शो के लिए। अराउंड फाइनल, एक्चुअली में फाइनल 300 टिकट्स जो है ये सिर्फ बची है इस शो की। सो हरी अप, जस्ट बाय द टिकट्स। 300 सिंगल टिकट्स एक्चुअली में बची है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे, टुडे इज थर्सडे, टुमारो इज फ्राइडे, कि कल आप जाके टिकट खरीदेंगे, यू नेवर नो, ये टिकट्स बहुत जल्दी उड़ सकती है अभी। सो बाय योर टिकट नाउ। dryTickets.com इज अ वेबसाइट जहाँ पे आपको टिकट्स मिल जाएगी। सैटरडे को 25 जुलाई को शो होने वाला है, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय जे के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शेजादा प्रोडक्शंस। राहत फतेह अली खान की आवाज़ में सुनते हैं दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: 3:17 हो चुके हैं, आप कॉफी ब्रेक यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है डेविड वार्नर, इन्होंने अभी प्लीड किया है गिल्टी टू मिड रेंज ड्रिंक ड्राइविंग चार्जेस। सिडनी कोर्ट में इन्होंने प्लीड किया है। सो ये जो ऑफेंस है ये 5 अप्रैल को हुआ था, विच वॉज ईस्टर संडे। सो ही वॉज स्टॉप्ड बाय पुलिस एक रोड साइड ब्रेथ टेस्ट में, एंड एक और ब्रेथ एनालिसिस जो है ये हुआ था, एंड जो ब्लड एल्कोहल कंसनट्रेशन था इट वॉज मोर देन डबल द लीगल लिमिट। ही डिडंट अटेंड द कोर्ट दो, बट उनके जो लॉयर है ही एंटर्ड द गिल्टी प्ले ऑन हिज बिहाफ एंड सेड कि उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, डिस्क्राइबिंग हिज डिसीजन टू ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग जो था वो एक रेकलेस एंड फुलिश डिसीजन था। वेल बैक टू सुपर सिटी भी आते हैं, तो ड्रिंक ड्राइविंग की वजह से ये पुलिस ने बहुत बार बताया है कि बहुत सारे क्रैशेज होते हैं, एंड इसीलिए जो टेस्ट है इसको लेके जो इसकी ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट अभी हो रहे हैं। अब तो ड्रग टेस्ट भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं। वेल आपसे सवाल ये है कि आपको कितनी बार, आपको याद है न्यूजीलैंड में आपको कितनी बार रोका गया होगा ब्रेथ टेस्ट के लिए, आपने कितनी बार यहाँ पर ब्रेथ टेस्ट ये दिया है, एंड यहाँ पे बता सकते हैं 5599 पर। मैं तो बहुत बार रुकी हूँ यार, मेरे को लगता है कि ओवर द वीकेंड फ्राइडे एंड स्पेशली सैटरडेज को तो बहुत सारे जगह पे जब आप मोटरवेज का एग्जिट लेने लगते हो तो वहाँ पे कई बार ब्रेथ टेस्ट के लिए आपको रोका जाता है, एंड स्पेशली सिटी से जब आप निकल रहे होते हो या फिर सिटी के लिए जब आप आ रहे होते हो। एक वीकेंड तो मैंने देखा था कि वेस्ट पे ही जब आप लिंकन रोड से भी पहले वहाँ पे एक्चुअली में वो है ना जहाँ पे यूनिवर्सल ड्राइव है उसी के पास एक्चुअली में वहाँ पे पुलिस बोथ साइड ब्रेथ टेस्ट ले रही थी। एंड अभी ड्रग टेस्ट जो है ये भी काफ़ी जगह पे रोल आउट हो चुका है, सो रैंडम वो टेस्ट भी यहाँ पे हो रहे हैं और इसके हैवी फाइंस भी होते हैं उससे भी ज़्यादा। इसकी वजह से बहुत सारे जो क्रैशेज है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स है, ये लगातार इंक्रीज हुए हैं न्यूजीलैंड में।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़गाओ या सीधा अंदर आऊं?
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
4: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम
6: हाय मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे कि क्राइंग विंडोज सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है
6: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है
5: दैट्स नॉट गुड हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111 रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: Winger Motors Manara

3:32 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड साउथ अफ्रीका पहली ऐसी कंट्री बनता है इन द वर्ल्ड जिन्होंने सक्सेसफुली परफॉर्म किया है द एडवांस यूज ऑफ 3D प्रिंटेड मिडल ईयर बोन. सो जिसे ऑसिकल्स बेसिकली कहते हैं, मिडल ईयर बोन जो है ये रीस्टोर करती है हेयरिंग इन पेशेंट्स जिनका हेयरिंग लॉस हो जाता है. इन्होंने 3D प्रिंटेड मिडल ईयर बोन एक्चुअली में यूज़ किया है. सो इसे उनके जो प्रोफेसर हैं मशूदू, इन्होंने लीड किया एंड ही फर्स्ट मेड हिस्ट्री इन 2019 दो. एंड अभी उन्होंने प्रोग्रेस किया टू क्लिनिकल ट्रायल्स जहाँ पे इस साल 2026 में पेशेंट्स के ऊपर इन्होंने सक्सेसफुली इसको परफॉर्म किया है. सो ये जो सर्जरी है बेसिकली ये क्या करता है, इस सर्जरी में 3 टाइनी बोन्स होते हैं इन द मिडल ईयर, उनको ये रिप्लेस कर देते हैं. ये जो बोन्स होते हैं मिडल ईयर में, ये हैमर एनविल एंड स्टरअप होते हैं जिसे मिलाकर ऑसिकल्स कहते हैं. तो इस ऑसिकल्स को ये जो सर्जरी है रिप्लेस करती है. एंड जो रिप्लेसमेंट बोन्स है ये 3D प्रिंटेड है टाइटेनियम से, एक ऐसा मटीरियल जो कि बायो कंपैटिबल है एंड बॉडी के लिए एकदम सेफ है. मतलब बॉडी के साथ ही वो घुल मिल जाता है कि बॉडी का पार्ट ही बन जाता है वो. सर्जन्स जो है दे यूज़ रोबोटिक असिस्टेड और बहुत ही कम इन्वेसिव टेक्निक्स जिससे जो स्कारिंग है ये वो रिड्यूस कर रहे हैं एंड जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है उसको वो लो कर रहे हैं. ये जो इम्प्लांट्स है वैसे ये कस्टम मेड है. सो पेशेंट का CT स्कैन किया जाता है एंड देन इंश्योर कि उनको एग्जैक्ट फिट होता है उनके कान के हिसाब से एंड देन उस वैसे से कस्टम मेड किया जाता है. एंड ऑल्सो ये जो प्रोसीजर है इसे डिज़ाइन किया है फॉर द पीपल विद कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, जो कि कईयों में बर्थ डिफेक्ट भी होता है या फिर इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से, डिसीज़ की वजह से. सो दिस इज़ नॉट अबाउट द हेयरिंग लॉस कॉज्ड बाय नर्व डैमेज. सो बाकी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो बेसिकली होती है उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है. इस साल में साउथ अफ्रीका ने 45 पेशेंट सेलेक्ट किए क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एंड देन फर्दर इवेल्युएट किया एंड देन ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोसीजर जो है ये इन्होंने सक्सेसफुली वहाँ पर किया है. दिस इज़ एक्चुअली सो कूल. वैसे आपको क्विक फैक्ट एक बताती हूँ यंगेस्ट डॉक्टर के बारे में. डॉक्टर्स के बारे में इतनी बात कर ही रहे हैं, यंगेस्ट डॉक्टर फिजिशियन इन द वर्ल्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो शामिल है, ही बिकेम अ डॉक्टर एट 17 ईयर्स. सो इसका नाम है बाला मुराली अम्बाती. सो ही इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क USA एंड वैसे ये तमिलनाडु के हैं, इंडिया में बॉर्न है ये तमिलनाडु से एंड देन ही मूव्ड टू USA. तो कह सकते हैं अपने देश से हैं, ऐसा हमें क्रेडिट लेने में बहुत अच्छा लगता है. देन ही मूव टू USA, देन ही ग्रेजुएटेड हाई स्कूल एट जस्ट 11 ईयर ओल्ड एंड देन बैचलर डिग्री जो थी इन्होंने ली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एट द एज ऑफ 13. ही एंटर्ड मेडिकल कॉलेज एट द एज ऑफ 14 एंड ग्रेजुएटेड एट 17, जिससे वो दुनिया के यंगेस्ट डॉक्टर बने. टुडे डॉक्टर अम्बाती वो एक आई सर्जन है, रिसर्चर भी है, एजुकेटर भी है, इन्वेंटर भी है एंड इन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है टू मैनी ट्रीटमेंट्स एंड बहुत सारे जो अवार्ड्स अपने काम के लिए ये भी इन्होंने हासिल किए हैं. यू नो मुझे हमेशा से ये क्वेश्चन होता था कि क्या एलिजिबल भी होता है कि इतनी जल्दी कोई डॉक्टर बन जाए, इतनी जल्दी कोई मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाए. लेकिन यस, क्रेडिट्स के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से ऐसी एंट्रीज जो होती है ये पॉसिबल होती है.

42 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। वैसे यहाँ पे राज गढ़वी इनके इवेंट के लिए टिकट जीतने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है। गरबा नाइट विद राज गढ़वी ये आप इंजॉय कर सकते हैं। सुपर इवेंट ये एक्चुअली में रहने वाला है, विच इज बाय लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता इन प्रांची ग्रुप। सैटरडे 1 अगस्त को महात्मा गांधी सेंटर में ये इवेंट होगा। सो अगर आप यहाँ पे टिकट जीतना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, RG विच इज राज गढ़वी। सो RG स्पेस अपना नाम लिख के आपको भेजना है 5599 पर, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे इस इवेंट के लिए टिकट आपके नाम हो सकती है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, वैसे आप स्वप्निल से बात कर सकते हैं ऑन 0224394736, जहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। टिकट्स खरीदने के लिए यू कैन गो टू eventstickets.co.nz, बट फॉर नाउ टिकट जीतने के लिए RG स्पेस अपना नाम लिख के भेजिए 5599 पर।

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
3: Good afternoon, 23rd July, and we are back. Hi, Sandy. Good afternoon.
4: Good afternoon, Rizbe. Kaise ho tum?
3: Main badhiya hu, Sandy. Aap kaise ho?
4: Ekdam first class.
3: Long time no see, yaar. Sandy, have you behaved yourself last 1 week? When I was away, tabhi hi itna sab bawal hua.
4: Mujhe ye tumse puchna chahiye. Have you behaved well, Rizbe?
3: I have tried.
4: Kyun hua ye sab? Kuch kiya kya tumne?
3: Nahi, I have tried.
4: Kya bawal kiya tumne?
3: Ab tak to kuch nahi hua na. Yahan pe to nahi hua abhi tak kuch bawal.
4: Haan, yahan pe to nahi hua.
3: Ab to hoga na, aaj ke baad.
4: Yes. Anyway. नहीं इतना भी कुछ नहीं
3: आज हम आपके साथ यहाँ पे एक टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं लेकिन
4: पब्लिक डिमांड पे ये टॉपिक आया है
3: पब्लिक डिमांड पे आया क्या
4: या
3: अच्छा
4: कितने लोगों ने इसके बारे में बोला कि यार इसके ऊपर बात नहीं करते तुम लोग तो यार ठीक है करते हैं
3: या देखो सैंडी को डर नहीं है मेरे को डर है लेकिन
4: ये भगवान ऐसा भी कुछ नहीं है रुजबेस में इट्स वेरी नॉर्मल टॉपिक है ना गाइस आप ऐसा पूरा तो नहीं मानते कोई टॉपिक करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे आप हमें प्रिविलेज तो नहीं बोलोगे ना
3: नहीं पर प्रिविलेजेस अगर है तुम्हारे तो बोलेंगे ना और हाँ। होने और यहाँ पे जो भी है सबके पास प्रिविलेजेस तो है ही इसलिए
4: मैंने
3: यहाँ पे
4: एक दिन अपनी स्टूडेंट्स को लेके फीलिंग शेयर की अ पर्सन कॉल्ड बाद में ऑफ एयर ही बात हुई थी मेरी उनसे बोला कि आप प्रिविलेज है हम तो कुछ भी शेयर करते हैं यहाँ पे अपनी फीलिंग भी शेयर करते हैं तो हम तो प्रिविलेज्ड है
3: नहीं बट मेरे को नहीं लगता प्रिविलेज नेगेटिव क्यों है सैंडी नेगेटिव नहीं है प्रिविलेज
4: इट्स वेरी नाइस या
3: प्रिविलेज तो पॉजिटिव ही है
4: 100% पॉजिटिव है
3: अगर प्रिविलेज और मेरे को लगता है कि अलग अलग टाइप के प्रिविलेजेस होते हैं ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का कोई प्रिविलेज हो
4: कॉल्स हम बाद में लेंगे लेकिन पहले रुजबे टॉपिक पहले बोलेंगे
3: टॉपिक बोलेंगे अभी से टॉपिक थोड़ी छेड़ रहे अभी क्यों
4: नहीं छेड़ना क्या
3: पहले अभी टेस्ट करते ना एनवायरमेंट हाय स्वागत है आपका
5: हेलो
3: जी नमस्कार
5: हाय गुड आफ्टरनून
3: गुड आफ्टरनून क्या नाम है आपका
5: मेरा नाम मैं अपना नाम
3: देखो आपको मेरा नाम तो पता है रुजबे ये सैंडी है
5: नेम दैट आई वांट आप मुझे मस्त कलंदर बुला सकते हैं
3: अच्छा ठीक है मस्त कलंदर
4: बताइए मस्त कलंदर जी
3: बताइए अभी आप कितने मस्त कलंदर है ये हम जानेंगे
5: जी जी जी तो अच्छा मैं बताऊं ना मैं फर्स्टली आई जस्ट वांटेड टू से अभी पिछले दो हफ्ते से मैं आई न्यू अबाउट योर स्टेशन बट माय बेस्ट फ्रेंड वाज लिसनिंग टू यू गाइस एंड आई ट्यून्ड इन व्हेन आई अराइव्ड इन न्यूजीलैंड और जब मैंने सुना ना एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग एंड देन आई रियलाइज्ड कि यू आर ट्रूली ए अनबायस्ड रेडियो स्टेशन एंड यू हैव बिकम माय फेवरेट रेडियो स्टेशन इन न्यूजीलैंड इन द लास्ट 2 weeks
4: Oh, wow.
3: क्या बात कर रहे हो यार थैंक यू सो मच मस्त
4: एंड
5: आई हैव जॉइंड योर फेसबुक ग्रुप द अनफिल्टर्ड वन
4: अरे क्या बात है सही है इसीलिए इनको नाम नहीं पता ना आपने तो फिर देख ही ली होगी वहां पे वीडियो ना
5: जी जी मैंने वीडियो देखी तो इसीलिए तो मैंने कॉल किया क्योंकि जिस टॉपिक पे क्या मैं उस पे अपना व्यूज दे सकता हूँ
4: 100%
3: दे अच्छा, सकते तो टॉपिक छेड़ना है अभी छेड़ना है टॉपिक
5: वेल अगर आप चाहो तो मैं आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट टॉपिक अगर आप इजाजत दे तो जरूर मैं कुछ बोलना चाहूंगा
3: चलो ठीक है तो
4: बिकॉज वो ग्रुप हमने प्रिविलेज्ड लोगों के लिए बनाया पे You can go and you know see the topic पहले
3: वर्ड को नहीं छोड़ेगी अभी
4: तो yeah
3: anyway topic हम यहाँ पे बता देते हैं अभी आज बहुत demand है इस topic का तो बात कर लेते हैं आज हम लोग topic जिस पे बात करना चाह रहे हैं that is about is it और हमको इसके ऊपर एक करेक्शन भी आया है एक मैसेज आया है
4: करेक्शन भी आया लेकिन या
3: बट आज का जो टॉपिक है वो है अराउंड डू वी शुड वी और इज इट ओके टू हीरो वर्शिप पॉलिटिशियंस इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत बार बात की है और मैंने बहुत ओपनली कहा है कि यार मुझे नहीं लगता है कि जब पॉलिटिशियंस यहाँ पे मैंने यहाँ के पॉलिटिशियंस की भी बात की है जब पॉलिटिशियन जाते हैं हम उनके साथ सेल्फी खरीदने लेने के लिए लाइन में रुक जाते हैं और ये सब हो जाता है इज इट एक्चुअली रिक्वायर्ड क्योंकि पॉलिटिशियंस आई बिलीव आर द सर्वेंट्स ऑफ सिटीजंस उनका काम है हमारी देखभाल करना
4: तो क्या हमें पॉलिटिशियंस को भगवान मानना चाहिए उनको भगवान या हीरो वर्शिप उन्हें करना चाहिए So,
3: तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर
4: आपका क्या टेक है
3: विदाउट नेमिंग एनीवन क्योंकि देखो हमको बहुत प्यारा है हमारा जॉब हमारा स्टेशन
5: करना चाहूंगा जी जी जी जी मैं जानता हूं कि दिस इज अ रेडियो एंड फर्स्टली आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर बीइंग न्यूट्रल बिकॉज आई नो पीपल वर सेइंग कि एक कोई बहुत कोई लीडर आया था तो आप लोगों ने उनकी वो नहीं कवर नहीं की भाई. यू नो इट्स सो गुड टू सी दैट देयर इज अ रेडियो स्टेशन जो बिके नहीं है, बिकाऊ नहीं है, जो पॉलिटिकल एजेंडेज नहीं मूव करते हैं, जो सिर्फ इंसान को इंसान की तरह देते हैं. एंड यू नो यू आर सर्विंग योर पर्पस एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन. सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप हम विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट.
3: थैंक यू सो मच. एंड आई जस्ट वांट टू से हमें कवर करना था वो एज अ मीडिया स्टेशन,
4: हमको
3: कवर
4: करना था.
3: हमने रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन हमारे रिक्वेस्ट को तूल नहीं दी, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर लाइक इट्स ओके.
4: फिर हमने उतना ही कवर किया जितना हमने आरएनजेड पे पढ़ा.
5: शायद भरा होगा. लेकिन अच्छा बहरहाल जो टॉपिक आपने छेड़ा है ना, जो एक राजनीति जो नेता होता है ना, ये कोई बादशाह या कोई एम्परर या किसी जगह का मुखिया नहीं होता ना. और इस ये नहीं होता है कि इनको हम ब्लाइंडली फॉलो करें ना. एक पॉलिटिशियन असल में ना जनता का सेवक होता है, सेवेंट होता है ना. और किस तरह से वो सेवेंट होता है, क्योंकि जब हम उनको वोट करते हम उनको असल में हाया करते. क्योंकि कोई भी नेता होता है ना, वो वोट की भीख हमसे मांगता है. तो हम जो जनता है उसको वोट करती है, ठीक है. तो और ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वो आदमी 21-22 वो तो, देखो मैं आपको बताऊं, आई हैव सेट विद वर्ल्ड लीडर्स, आई डो नॉट वांट टू टॉक अबाउट माय बैकग्राउंड, बट आई हैव सेट विद वर्ल्ड लीडर्स इन G20 मीटिंग्स. आई हैव बीन प्रिविलेज्ड टू सिट इन द रूम विद देम.
4: ओह वाओ.
5: एंड आई एम समबडी फ्रॉम द पैसिफिक. आई विल नॉट टेल यू हु आई एम.
4: That's okay.
5: But I have been working in the sector for a very long time. But this is what I will tell you. I have seen few of the leaders jo teleprompter ke bagair baat hi nahi kar pate. We were sitting in a meeting. Jab teleprompter off hua hai na, to banda hakmaka gaya. Ki wo puch raha hai, chairman sahab aap ho wahan pe? Kyunki bagair likhe hi nahi bol sakta na. So there are some natural leaders. But anyway, jo mudde ki baat ki hai na. तो जब हम अपने पॉलिटिशियंस को जब वोट करते हैं ना, तो वो और उनकी जो पे होती है वो अपने बाप की जागीर लेके नहीं हमारे पास आती. वी पे देम थ्रू आवर टैक्सेस. न्यूजीलैंड में हम GST भरते हैं 15%. ये हमारे लीडरों को जाती है. तो हम उनकी उनको हम खुदा के साथ में तोल किस तरह से कर सकते हैं. वो हमारे पैसे पे फलते हैं फूलते हैं, ठीक है. And we must have every right to question every decision they make. इसमें कोई शक की बात नहीं है. अभी हमने एक अपने आप को एक कस्टमर की तरह सोचे. हम एक शॉप में गए, हमने वहां से एक सामान लिया, पसंद नहीं आया या उसका फीडबैक देने के लिए तो हम खड़े हो जाते हैं. हम अपने लीडरों को साल भर का अपना टैक्स देते हैं, सामान जो खरीदते हैं उसमें GST देते हैं. जब सवाल करने की बात आती है, जब हम उनको सवाल करते हैं, तो लोग हमें देश का गद्दार बुलाने लगते हैं. एंड दिस इज ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड वर्शिपिंग लीडर्स. एंड देन इट मेक्स देम फील कि दे आर इमोर्टल, दे आर अनटचेबल, उनको कोई टच नहीं कर सकता. एंड दे कैन कीप ऑन डूइंग व्हाट दे वांट एंड दे एंड अप बिकमिंग डिक्टेटर्स. हमें लीडरों को ना पब्लिक सेवेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, या अदरवाइज जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातांत्रिक जो समाज है, आवर होल सोसाइटी एंड द होल एपिटोमी ऑफ डेमोक्रेसी विल डाई. तो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर इफ वी हीरो वर्शिप, वी किल द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड वी एनकरेज करप्शन, वी एनकरेज एरोगेंस, we encourage abuse of power, and these slowly and gradually start taking root and it becomes part of the fabric of our society. और history हमें बहुत अच्छा से इस चीज को teach किया है. और अभी जो हमारे कुछ हमारे जो you know our root where we come from, जो हमारे देशों में हो रहा है ना, जिस तरह से समाज बट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, youths are being killed and tortured, it's a sign of fascism, it's a sign of dictatorship. Jahan pe rich are becoming richer, poor are becoming poorer. And you know who's adding fuel to the fire? The so-called lovers of the motherland, जो यहाँ पे बैठ के जय ये जय वो करते हैं. अरे भैया, जब तुम्हारा देश इतना अच्छा है, तुम यहाँ पे आके क्यों मर रहे हो? Why are you taking citizenship and taking the oath of New Zealand? अपने देश में जब इतना अच्छा हो गया, wherever you are from, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा
4: जी.
5: आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा. वी आर इन न्यूजीलैंड, हमें न्यूजीलैंड से लॉयल्टी, हम यहाँ का दाना पानी खाते हैं, ये देश हमारा है, हमें न्यूजीलैंड की जय जयकार करनी चाहिए. अभी एक बंदा आया, अगर वो इतना अच्छा था, तुम छोड़ के आए क्यों यहाँ पे? टू सपोर्ट अ स्पोर्टिंग टीम, दैट्स फेयर, बट टू स्टार्ट सिंगिंग दिस चांट्स, आई थिंक इट्स टाइम फॉर certain people. जब तुम्हें इतना ही है, तो that means you're demonizing and you're putting lower New Zealand below any other country, which should not have happened, which should never happen. Our loyalty must always be with New Zealand, and this is a country where we have democracy, जहाँ जात पात ऊंच नीच धर्म के नाम पे किसी को मारा नहीं जाता, जहाँ पे जात के नाम पे किसी को ये नहीं बोला जाता कि तुम इस प्लेट में खाना नहीं खा सकते, या तुम वहां पे बाहर बैठो, या तो तुम उस जात के हो तो तुम्हें वॉशरूम साफ करना पड़ेगा. तो ये सब यहाँ पे नहीं होती ना. तो यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रिविलेजेस एंड राइट्स हमें मिलती है, एंड देन हम इस तरह की जो बिहेवियर करते हैं, तो क्यों नहीं यहाँ के जो बंदे हमें देख के हमसे फिर वो नफरत करने लगते हैं? क्योंकि ये बंदे आते हैं जिंदगी, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए, और फिर ये हमारे देश से एक तरह से हमारे साथ दे होल्ड ग्रज अगेंस्ट अस, एंड दे डिसलाइक आवर कंट्री, एंड दे वांट टू मेक अस लाइक दैट कंट्री वेयर दे कम फ्रॉम. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी मस्ट आंसर. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, वी मस्ट नेवर वर्शिप पॉलिटिशियंस, वी मस्ट होल्ड देम अकाउंटेबल. वो हमारे सेवक है, एंड वी दे मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज वी पे देम फॉर व्हाट दे डू. दे विल कम एंड गो, डेमोक्रेसी मस्ट रिमेन. एंड थैंक यू वेरी मच. आई होप आई हैव
3: एन. थैंक यू.
4: या थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पॉइंट.
3: थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स. आपका भी स्वागत है. आप भी आपके थॉट्स बताइए यहां पे, क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? हाय.
6: हाय. आई डोंट अंडरस्टैंड मच हिंदी, बट आई थॉट ऑफ calling you guys. Is it a topic can be discussed over the phone or not?
4: yeah.
3: Aha.
4: Please.
3: You understand Hindi or you don't? You don't understand Hindi as well. English mein baat kare hum.
6: I can little bit understand. I am from South India, so.
4: Okay. Aha. No worries. Okay. That's okay.
3: No problem. So
4: you can talk in English.
3: Did you understand today's topic? What we are talking about? We are talking about. Is it okay to hero worship politicians? That's what our topic is for today. And that could be any country. Right?
4: Any country.
6: Yeah, I do understand. This is a very heated topic going on all over India, especially. But if you don't want to take any name or party's name, that's fine.
4: Yeah.
6: But yeah, I would say this is an important topic to discuss. And nowadays, it's it's a bit. It is a little bit of as the previous person was saying, like a little bit about the fascism. Yes, it is, because even recent leaders who's traveling across different countries and they are getting more fame and stuff. It's not only because of the party-based things. It's or the ideologies. It's only because of the community-based worshipping and religious-based worshipping, which is not good for any nation.
3: I think the other thing also is if a leader is going for world tours or anywhere, it is because there are people over there of that descent who are in a good number and they are at good positions where they're contributing to the economy. Like for example, New Zealand mein dekh lo, 37 point some billion ka contribution
4: hai
3: from Indians, like in general. So that in itself makes it a point ke bhai haan yahan pe kisi ka representation aana is more like, you know, ke haan ek tie hai.
4: And also sometimes it's a diplomatic means as well to have collaboration between two countries.
3: वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी लोग आके बस गए ना. यहाँ पे आके लोग बस ही नहीं गए, इनफैक्ट बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. एक मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन भी हो गई है. सो वो भी एक फैक्टर होता ही है. तो इट इज नॉट मे बी just aligned to one person or
4: one kind of
3: a
4: thing. Yeah.
3: It's a community that has built it up, in my opinion. But aap kya share, you can share what your thoughts are.
6: So I would say, like, see, if you're talking about the business deal or a country relationship and stuff, and you won't get much transparency about the topic, okay? All you know is the person who is coming with the fame, and that person wants to increase his fame all over the world because the world is watching. And you won't get an exact transparency of what deal is making and what, because of the deal, how both countries are getting benefited. And if you think like Indian nationals are coming over and settling here in different countries like Australia and New Zealand, they are settling because you cannot settle your life well in your back and home, okay?
4: Yeah.
6: So you have to come here and you settle your life. And yes, the country where you settle is doing good for you and you doing good for the country, paying your taxes and stuff. So the country is well and good. But from here, you cannot expect or support back home leaders, you know, that is not at all right. If you're coming from the diverse nation, and here also it's a diverse nation and a lot of problems, and we are happily living here, you should not bring any religious oriented stuff or your community oriented stuff. It's not right. You cannot, you know, make it as a big fame or very boom about it and you know, making rallies and support. This is not really good. If you are very happy about your particular leader or some, you just go back, because even he or she wants to come back, you know, you come back home, you will make the country develop. Go back rather settling here if you're not if you're not happy about what's happening.
3: Cool.
6: You cannot bring everything here. You can bring your family here, okay, be here happily and respect the locals and everything. That's how it should be.
3: Thanks for sharing.
6: Worship the other leaders here, and you know, the it is leaving the way for creating all kind of communal riots, and it creates unnecessary hates. Particularly if we talk about Indians, you know, in recent time it's more unnecessary hate. Because of why? Because we are exploiting our freedom here. And you should not bring our protest or do any type of protest or whatever problems happening back in your home country. If you take about all this, most of them are having citizenship or residence, then you should tie it up with this country, right? Not like talking about your home country problems here, or bringing it up here or protest here. It's not good. And worshipping the leaders here, it's not at all right. And it's more danger for the nation also, and for the youngsters also. It guides them very bad way.
3: Thank you so much for sharing your
4: thanks,
3: thoughts.
4: Thanks for sharing.
3: Thanks for sharing your thoughts. Yeah.
4: And keep calling to share your views.
3: Yeah. Anyway, we'll get into the song now. But
4: this topic is there. आप यहाँ पे call कर सकते हैं.
3: मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा यहाँ पे. हम लोग को बस ये चीज में हम बहुत believe करते हैं. I think we agree to disagree on this platform over here.
4: Yeah.
3: And we are open for all kinds of thoughts. अगर आप कोई मतलब you know if you are for or against some,
4: it's totally okay to share
3: topic.
4: Your point of view.
3: Yeah, please feel free to share your topic. I mean, we're not going to be judging anyone here. We don't want to judge anyway.
4: Yeah.
3: But we are just doing our job and bringing some topics that you may relate to.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आया है और इन्होंने ये लिखा है, पहले एक मिनट कॉल अटेंड कर लेते हैं. हाय, आपका स्वागत है.
1: आपका स्वागत है रुस्बे एंड
2: सैंडी.
0: जो डिफिकल्ट नाम है वो आपने सही बोल दिया, जो इजी नाम है उसमें आप अटक गए. क्या बात है.
2: इट्स ओके.
0: बताइए क्या हाल है आपके.
1: Good evening for both of you. I just want to discuss about the topic you were just discussing.
0: Sure.
1: Why just a politician? Why not a movie actress, actor?
0: सही बोल रहे हो.
2: Everyone, yeah.
0: सही बोल रहे हो. Yeah.
1: Everyone, don't, right?
0: Actually,
1: yeah,
0: you know
1: same
0: what?
1: Applies.
0: There is a reason why Shah Rukh Khan said that he's the going to be the last superstar. क्योंकि इसके आगे नहीं करने वाले लोग हीरो वर्शिप और नहीं कर रहे
2: और नेक्स्ट जनरेशन करेगी भी नहीं, वो सब नहीं करने वाले.
0: मेरे को एक बात बताओ, हीरो वर्शिप बंद हो गया इसलिए तो बॉलीवुड नहीं चल रहा है ना. कौन सी लास्ट मूवी, मतलब धुरंधर चली, वो भी मेरे को लग रहा है वो उसमें एक्टर का ज्यादा काम नहीं था.
2: बोलो ज्यादा उसमें. बढ़िया है. यू गॉट अ पॉइंट, यू गॉट अ वेरी गुड पॉइंट.
0: बट सही बोल रहे हो.
1: इमोशनली आई वाज लिसनिंग टू यू गाइस ऑन माय वे बैक फ्रॉम वर्क एंड आई वाज वेरी इमोशनल बिकॉज indirectly this is I feel is pointing to the recent visit of Indian Prime Minister.
0: No, I don't think it is related to that.
1: It is, it is.
0: Okay.
1: But I don't want to say that.
0: No. Okay.
2: It's your feeling.
0: If you think it is related to that, tell us what made you feel bad about it.
1: See, the thing is, he is a great leader. It's not like making him a hero. It's like respecting him, you know, respecting and following, like celebrating a celebrity is different. That's how I feel. Okay, he is making, no, I should not say such things. There are people who make the world look at them and recognizes the change made by them. So there are so many people like that. So it's nothing wrong. And I also comment on the two people who just told that living in New Zealand, you should follow New Zealand. We are respecting New Zealand. I've been living here in this country for 18 years now. So it's like a in-laws house, right?
0: That's
1: will you
0: right.
1: forget about your parents' house?
0: Not at all.
2: No,
1: right? So they can't make such statements. You live here, you forget everything, don't support India. What logic is that?
0: No, it's not about...
1: You
0: I
1: go
0: think,
1: back so to India.
2: Country or
1: you
2: politician.
1: You go back to wherever your home country is. It's you're supporting in that
2: 100%,
1: way.
2: 100%. Now I understand why you're feeling bad. So it's not about, ma'am, it's not about country. तो उनके जो कहने का जो मुझे समझ में आया मतलब था पॉलिटिशियन के बारे में कि कंट्री मुझे लगता नहीं है कि कंट्री इज इक्वल टू पॉलिटिशियन. कंट्री के साथ फीलिंग ना एक टोटली डिफरेंट होती है. पॉलिटिशियंस तो चेंज होते रहते हैं, उनके साथ तो
1: एक्जेक्टली. हाँ, सो द बॉन्ड नेशन, द बॉन्ड वेयर एवर यू बी. ओके, सी आई लिव्ड इन सिंगापुर फॉर अबाउट 11 इयर्स. आई स्टिल फील गुड अबाउट दैट. व्हेनेवर आई गो आई फील वेरी हैप्पी because I lived there for 11 years.
0: That so, is correct. लेकिन अभी मेरे को एक बात बताओ, सिंगापुर क्या जो लीडर है मेरे को उनका नाम नहीं पता. I am not that aware. Exactly. अभी मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि you spoke about Singapore, ना? Did you speak about the leader? You spoke about Singapore. You miss Singapore.
1: Yeah.
0: Exactly.
2: Yeah, exactly.
1: So, what I am saying is, people are different. And if they are respecting someone, no one should say that you shouldn't.
0: 100%.
1: If it is a democratic world, why are you bother? Why you say such things?
0: Perfect. I think it completely makes sense. And that's why I'm saying. So the
1: exactly.
0: topic again comes
1: See,
0: back
1: I
0: to...
1: Have a
0: so the topic again comes back to here that, okay, so is that means you are saying it is okay to hero worship politicians.
2: We
0: and it is completely fine because it's a democratic world.
1: It's an individual's wish.
2: एग्जैक्टली हमने ये नहीं बोला कि आपका व्यू ये नहीं हो सकता है. हमने ये सवाल पूछा है आपका व्यू जानने के लिए कि आपका इसके ऊपर क्या टेक है.
0: आपका ऐसा व्यू है उसके लिए हम आपको जज भी नहीं करेंगे कि कुछ यू नो कोई टैग देंगे, ऐसा भी नहीं है.
1: 100% अंडरस्टैंड व्हाट यू से एंड आई अंडरस्टूड मे बी आई अंडरस्टूड इनकरेक्ट बट द टू पीपल हु स्पोक व्हाइल अगो they said, oh, you should not. Don't say such things. Mm. It is their wish, but we don't like such things. So you can say in that way, you know, oh, you should not support, you should live here. What logic is that, yaar? Maybe I am a bit...
0: नहीं नहीं आपके जैसे थॉट्स काफी लोगों के वैसे
2: हैं तो आप यू टोटली ओके सो डोंट
0: यू हैव नॉट जस्ट स्पोकन फॉर योरसेल्फ यू हैव स्पोकन फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आल्सो फील द सेम.
2: सो मुझे क्या बात अच्छी लगी ना कि आपके अंदर जो जेन्युइन फीलिंग थी आपने वो यहाँ पे कॉल करके शेयर की. वो बात हमें एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी. जो भी है आपकी फीलिंग आपकी फीलिंग है. इट्स ओके.
0: या
1: एग्जैक्टली. सी इवन इन द फैमिली. सॉरी आई एम just last point in my family, if you ask your son or a husband or whoever, oh, don't do this, they what they say immediately, it's my wish, it's how I am, you know. So people are different. So if they want to worship, let them worship. It's not going to make any bad or harm to anyone.
0: That's
1: what I want to
0: see,
1: say.
0: See, as long as it's not making any harm or bad to anyone, it is great.
2: Yeah.
1: Yes.
0: But if it starts making harm to some other people, if just because you
1: then
0: are not
1: there
0: worshipping,
1: should be some control
0: yeah,
1: on
0: because
1: that.
0: If you don't worship and then you get tagged, you are anti-national or you are that, then that is a problem.
2: Yeah.
0: That is a problem.
2: Yeah.
0: You agree with that, ma'am?
1: And Yeah. Yes.
2: वही है.
0: यही एक बात
2: और ये बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि यू नो वर्शिपिंग पॉलिटिशियन के बारे पॉलिटिशियन के बारे में हम बात कर रहे हैं. कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अबाउट कंट्री एनीथिंग. लाइक हमें एक एक्चुअली में मैसेज भी आया कंफ्यूजन में. इट्स नॉट अबाउट कंट्री. इट्स अबाउट द पॉलिटिशियन वी आर टॉकिंग अबाउट.
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कॉल. कुछ मैसेजेस अभी जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे पापी पेट को पालेंगे उसके बाद हम और भी मैसेजेस लेंगे.

0: by Sunday 2nd of August to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
2: बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
3: क्यों? क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
5: Are you ready to go home?
6: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
7: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
8: Super Se Upar, ye show ja rahi hai aapke liye aur aaj call pe call aa rahe hain hame leke. Dekho, hamare paas bhi hamari alag responsibilities hai, humko wo bhi nibhani padti hai. We are going to touch back on this topic, so hold on with your calls.
9: Hold on to your calls and messages. And also Ruzbe, isi ke saath saath hamare paas kuch competitions bhi hai. Karan Aujla ke show ke liye ticket jeetne ka mauka bhi aapko milne wala hai. उसके लिए भी stay tuned, but for now
8: it is time for this and इसके बारे में हमें थोड़ी बात करनी है आपके साथ.
7: Bollywood's most wanted.
10: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
11: मैं लाऊं अपना A game.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
8: Well, अभी ये जो गाना Bollywood's most wanted में है, इस गाने के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनी है. मुझे पता है कि अमाल मलिक ने कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं जवाब दूंगा आवारापन 2 से. के एल्बम से
9: एंड ये गाना रिलीज हो चुका है, फीचर ऑन इमरान हाशमी. अरिजीत सिंह ने गाया है. अरिजीत सिंह का मुझे लगता है कि फ्यू कुछ लास्ट सॉन्ग्स जिन्होंने कमिट किए होंगे, दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग. बॉलीवुड में उनके गाने, उन्होंने रिटायरमेंट लिया बाय द वे. सो लेकिन आई एम मोर एक्साइटेड कि इमरान हाशमी के ऊपर ये फीचर्ड है.
8: आपने देखा है वीडियो इसका?
9: मैंने वीडियो देखा है इसका.
8: ओह गॉड, ओके.
9: एंड इमरान हाशमी, यू नो, इनकी जब भी मूवी आती है, इनकी मूवीज सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है बहुत ज्यादा. म्यूजिकली हिट होती है इनकी मूवीज. म्यूजिक बहुत हिट होता है. सो दिस इज अनदर वन. इमेजिन कीजिए इमरान हाशमी पर्दे पे और ये गाना. चलो, आवारापन का
8: मैं पहली बार सुनने वाला हूँ ये गाना. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. लेट्स सी, ये गाने का नाम है ये आवारापन. And let's see if you like it. Let us know. 5599 पे message करके. What is, like, how do you find the song?
9: Yeah.
8: Drive keyword के साथ.
9: कितना rate करोगे आप?

0: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. Ye Awarapan, Arijit Singh ki awaaz mein. Awarapan.
1: It's a signature, na? Aur Arijit se lagta hai ki Arijit se better nahi koi ga paata.
0: Yeah.
1: This
0: yeah.
1: is what I feel. Like, he got this way of singing.
0: Good to see him still singing. And like, matlab, ye jo final songs hai na, I think Bollywood. They're very cherished. Well, anyway, yahan pe aapke saath, yahan pe kaafi messages bhi aaye actually. Sunando ne likha hai, 10 on 5. 10?
1: Oh, gaane ko.
0: On 5.
1: Complete package as a song, uh-huh. music and lyrics.
0: राइट एक कोई हमें ऐसे बात करना चाह रहे हैं हमारे पास बहुत कम टाइम है बाकी है यहाँ पे इस घंटे में
1: बट शॉर्ट में बात करते हैं
0: इनसे वी विल मेक श्योर दैट वी टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट आवर आल्सो बट आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं हाय आपका स्वागत है
2: हाय
0: जी
2: हाँ जी वी वर लिसनिंग टू द डिस्कशंस हैपनिंग एंड ये जो तीन लोगों ने बात किया बट सॉरी टू से इट लाइक दिस बट इट साउंडेड लाइक एन एग्जांपल ऑफ समबडी हु वाज ऑफेंडेड बाय समबडी एल्स जस्ट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स क्योंकि लाइक वी आर ऑल ट्राइंग टू से कि कंट्री के बारे में हम बात करते हैं हम बोलते हैं कि हमारा कनेक्शन अपने यू नो जन्मभूमि से है एंड स्टफ एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी वरीड और कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ नॉट द लीडर्स ओनली क्योंकि अभी तक जो भी हम देख रहे हैं या जो भी चल रहा है आजकल अगर लीडर्स ने किया होता कुछ या कुछ भी हो रहा होता अच्छा तो फिर कंट्री भी डेवलप हो रही होती राइट बट आज की डेट में ऐसा हम देखते कितना कुछ चल रहा है एंड नन ऑफ इट इज एक्चुअली प्रोग्रेसिंग एनीवेयर सो रादर देन टेकिंग ऑफेंस फॉर व्हाट समबडी एल्स इज यू नो व्हाट इफ समबडी एल्सस ओपिनियन इज आई थिंक वी शुड रादर ट्राई एंड सी कि डेमोक्रेसी हम ठीक से चलाएं कैसे कि लीडर्स को अकाउंटेबल करें कैसे क्योंकि डेमोक्रेसी तो अल्टीमेटली पीपल्स रूल ही है पर काफी टाइम होता ही नहीं वैसे स्पेशली राइट नाउ ऐसे तो हो ही नहीं रहा है सो दैट वाज माय लिटिल बिट लाइक
0: कहीं ना कहीं मतलब आई नो लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड के टाइम पे हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे हमारी प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डन थी वो टाइम पे एंड ऑनेस्टली बाद में उनको काफी ट्रोल किया गया काफी चीजें बोली गई
1: काफी चीजें
0: लेकिन मैं जब मेरे दोस्तों के किस्से सुनता हूँ जो उस टाइम पे अलग अलग देशों में थे और तब मैं सब सोचता हूँ कि यार नहीं हम लोग एक्चुअली में काफी प्रिविलेज थे वो टाइम पे and we were very taken care of
1: yeah
0: chahe baad mein economy ka jo bhi hua ho
1: yeah matlab kafi cheeze uske baad after effects bahut the uske but yeah. then wo jo time tha us time mein hum bahut bach gaye the
0: so what I'm
1: like considering the population of this country
0: what I'm trying to say is that everyone has the good and the bad and I think when we start acknowledging ke ha kisi ka good bhi hai bad bhi hai that is healthy but agar humko lagta hai ki nahi sab sahi hi hai कुछ गलत नहीं है तो तब जाके मेरे को लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है
1: तब वहाँ पे थिन लाइन आ जाती है वर्शिप करने की या फिर रिस्पेक्ट देने की सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन टू
2: आई थिंक हम मिसलीड हो रहे हैं इस बात पे स्पेशली हम जो इंडियंस हैं रिलीजियस बेसिस पे या जो भी आदमी स्पीचेस दे रहा है दैट इज फिटिंग समबडीज रिलीजियस ब्रैकेट और व्हाटएवर ब्रैकेट उस वजह से पीपल आर जस्ट गेटिंग मिसलीडेड दे आर नॉट रियली थिंकिंग कि अपना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होना चाहिए एंड रिलीजियस बेस नहीं होना चाहिए आई थिंक पीपल आर जस्ट गेटिंग मिसलेडेड इन सम डायरेक्शन नॉट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग आई फील
0: Thank you so much for sharing your thoughts and views.
1: Thank
0: I'm sorry
1: so
0: I have to cut you out because
1: अभी time थोड़ा ना कम थी है.
0: बहुत time बाकी हमारे पास. But 5 बजे के बाद फिर से बात करेंगे इसके बारे में because मेरे को नहीं चाहिए कि कोई बोले कि तुमने एक ही side की बात सुनी दूसरे side की बात नहीं सुनी. भाई तुम जो side है तुम्हारी तुम बताओ.
1: Yeah, आप call कर सकते हैं 5 बजे के बाद यहाँ पे 0800 00 हम पर. But thank you so much.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: Good evening, 5:03 and yes, Sandy and Rizvi, we are together again after a long break. Hi Sandy, good evening.
5: Hi Rizvi, a very very good evening to you. Power Drive at 5 aapke liye shuru ho chuka hai, saath hi ek competition shuru karte hain.
4: Ha, competition shuru karo, phone line shuru hone ke baad competition reh jata hai side mein.
5: Wahi na, just in case agar aapne last hour mein aap baat karna chahte the humse, aapka miss out ho gaya, now is the time to call. We are giving you a chance. 0800 00 hum is the number. Now, global sensation Karan Aujla यहाँ पे आ रहे हैं P-pop culture world tour लेके. Spark Arena में इनका शो होगा 25 अगस्त को. So, अगर आपको यहाँ पे डबल पास जीतना है, आपको करना क्या है? K-A as in Karan Aujla. K-A space. Karan Aujla का ऐसा कौन सा गाना है जो आप on loop बार बार सुन सकते हैं? लेके भेजिए 5599 पर. And you are in the draw to win a double pass. अगर आपको खरीदना है, वेट नहीं करना है, जस्ट गो टू hum.rover.nz एंड गेट द टिकट्स.
4: जी तो लाइव या फिर livenation.co.nz पे भी आपको मिल जाएंगे टिकट्स. लेकिन स्पार्क अरेना में 25 अगस्त को स्पेशल गेस्ट 21 के साथ आने वाले हैं करण औजला और धूम मचाने वाले हैं. आप अभी के अभी मैसेज भेजिए के ए स्पेस आपको कौन सा करण औजला का गाना बैक टू बैक आप सुन सकते हैं एंड मे बी यू विल बी द वन टू विन डबल पास.
5: यस, आप यहाँ पे डबल पास के विनर हो सकते हैं यहाँ पे. सो ज़रूर यहाँ पे मैसेज कीजिएगा एंड और भी कुछ टॉपिक्स भी आपके लिए रहेंगे इस आवर में भी, डिफरेंट टॉपिक्स भी आपके लिए रहेंगे एंड कुछ और इवेंट्स की जानकारी भी रहेगी. हमारा बाली एंड बैंकॉक का ट्रिप रिज़्वे, इसके बारे में भी आज और इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं.
4: जी, आज थोड़ा डिटेल में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में बाली और बैंकॉक में हमने क्या प्लान किया है, हम क्या कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं. एंड इसके अराउंड अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने एक नंबर दे देंगे आपको कॉल करने के लिए, ताकि आप कॉल करके नंबर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी.
5: या सो दिस इज अबाउट मार्च 2027, तब हम ट्रेवल करने वाले हैं बाली एंड बैंकॉक. इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन द ट्रिप, इस पैकेज को अगर आप खरीदना चाहते हैं, सो फुल इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं.
4: पिछले घंटे हमने एक टॉपिक के ऊपर बात किया था एंड आई जस्ट वांट टू राउंड इट अप. हमने यहाँ पे छेड़ा था टॉपिक अबाउट हीरो वर्शिपिंग पॉलिटिशियंस, इज दैट ओके नॉट ओके, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, और टू एंड मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, हमको दोनों टाइप के पार्टीज के कॉल आए और उन्होंने कहा कि कुछ ने कहा अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू कहा, किसी और ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा. एक कुछ मैसेज भी आए हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं अराउंड दैट. उन्होंने कहा है, हाँ एक ने विकास ने मैसेज भेजा है, आई हर्ड द लास्ट कपल ऑफ कॉलर्स, मतलब ये जो पिछले कॉलर है, आई वांट टू शेयर दैट आई सेटल डाउन इन न्यूजीलैंड एंड पीआर सिटीजनशिप इन सर्च ऑफ बेटर लाइफस्टाइल, बट दैट डज नॉट मीन आई शुड स्टॉप लविंग माई कंट्री. आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट वेन इंडिया इज डूइंग वेल एंड आई गेट कंसर्न वेन इट्स नॉट,
5: जस्ट लाइक अस.
4: न्यूजीलैंड इज माई होम बट इंडिया इज माई हार्ट. No country is perfect. Thanks, Vikas. Thank you, Vikas. I completely share the same feelings as you. Mera bhi same feeling hai.
5: अरे the reason कि हमें ये इतना कुछ दिनों में affect हो रहा था, because we got same feeling.
4: Because we got same feeling. इसलिए हम लोगों ने इतना वो सारी चीज़ों के बारे में बात की जो शायद यहाँ पे pertaining नहीं है इतना, लेकिन इंडिया में ज़्यादा pertaining है जिस चीज़ के बारे में. एक और मैसेज आया है but I don't understand ये क्या कहना चाह रहे हैं, बट मैं पढ़ने वाला हूँ ये. One thing I don't understand is why you keep repeating saying Indians contributed so and so to New Zealand. If they are so hardworking, why didn't they contribute in their homeland? You guys kind of trying to put a bad image on Kiwis for not working hard. Remember, immigrants need New Zealand dollars and not the other way around. I would like to correct you ki mujhe lagta hai as long as we also need the New Zealand dollars, but also this country also needs us. Because we have been part of this ecosystem for quite some time now.
5: And this is official data जहाँ पे around 37 billion dollars जो है,
4: मैंने नहीं बोला है,
5: ये Indians से contribute किया है into the economy in New Zealand.
4: और अगर आपको problem है ये चीज़ से, तो ये तो Christopher Luxon ने बोला था पिछले हफ्ते उनके speech में. And I think that was a very proud moment for a lot of
5: it
4: us.
5: It is like because अगर यहाँ पे आके मेहनत कर रहे हैं, businesses set up कर रहे हैं, contribute कर रहे हैं economy, it's a proud thing.
4: मैं ये इनको clarify ये भी करना चाह रहा हूँ. Indians means doesn't mean just people who have come from India. I think it includes the ethnicity. It look includes wider people. People
5: all
4: from Fiji.
5: Yeah.
4: Fiji से जो आए हैं Indian ethnicity के साथ उनको उनका भी included है इसमें. उनके बिना obviously
5: I would say South Asian communities काफी है इसमें involved.
4: Yeah.
5: So different countries तो यहाँ पे जो आती है settle होते हैं लोग. वो सब इसमें involved हैं.
4: जी तो इसमें कोई एक ऐसे community का कोई हाथ नहीं है. It is a collective effort. That has happened. Anyway, we kept the lines open. कि किसी को और कोई अपनी भड़ास निकालनी है तो यहाँ पे निकाल सकता है. 0800-004-866. But anyway, now I think we should play some
5: music.
4: It's
5: done and dusted.
4: And we are going to bring in some lighter topics. आज वैसे today is Thursday. Oh my God, it's Thursday already.
5: Confession. अगर आपको कन्फेशन करना है इस सब के बाद आप यहाँ पे ड्राइव थ्रू कन्फेशन कर सकते हैं. आपको कुछ कन्फेस करना है. इट इज योर टाइम टू कन्फेस. 5599 पर मैसेज कर सकते हैं एनोनिमस होके. कॉल करके कन्फेस कर सकते हैं एनोनिमस होके. यू डोंट हैव टू टेल योर नेम. या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप है अनफिल्टर्ड क्रू. वहां पे तो एज एनोनिमस आप पोस्ट भी कर सकते हैं. तो वहां पे भी आप बिंदास लिखिए.

0: नीति मोहन की आवाज और ये बहुत ही बढ़िया सा गाना जब तक है जान इस मूवी से आप सुन रहे थे।
1: Yes, बहुत ही अच्छा गाना लगता है
0: मेरे को भी बहुत पसंद आता है ये गाना एंड इट्स लाइक अ फीमेल लेड सॉन्ग ना। बहुत कम ऐसे गाने होते हैं जहाँ पे सिर्फ फीमेल लेड सॉन्ग्स हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आई रियली लाइक दिस वन। एनीवे हम लोग जा रहे हैं बाली बैंकॉक
1: बाली एंड बैंकॉक या ईस्टर 2027 सो 7 days basically जो है ये आपको वीकडेज की छुट्टी लेनी पड़ेगी।
0: हम जा रहे हैं 9-10 दिन के लिए ना
1: 10 दिन है तकरीबन। तो इसमें क्या है गाइस कि ईस्टर पे जब हम निकलेंगे 23 मार्च को हम सबसे पहले आपको आइटनरी यहाँ पे बता देते हैं किस वे से सेटअप है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द आइटनरी लेकिन बेसिक उसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम निकलेंगे 23 मार्च को एंड 23 मार्च को हम बाली पहुंचेंगे
0: और वहां पे हम जाएंगे ब्लू पॉइंट बीच।
1: या
0: तो ब्लू पॉइंट बीच पे जाके हम वहाँ पे जाके थोड़े बहुत ये करने वाले हैं मतलब यू नो कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वहाँ पे और कुछ ये अपने क्या बोलते हैं वो उन्होंने बोला ना वो टीम में स्प्लिट करके अनिल जी ने हमको बोला था जब यहाँ पे आए थे हमको टीम्स में डाल के वो हमको वहाँ पे बनाना बोट राइड और वो सारी चीज़ें कराने वाले हैं।
1: तुम कौन से पेज पे हो?
0: फर्स्ट पेज
1: पे है ना?
0: नहीं फर्स्ट नहीं
1: मैं सोचूं जाते ब्लू पॉइंट
0: नहीं जाते हम लोग पहले जाने वाले हैं बनाना बोट राइड जेट स्की राइड और फ्लाइंग फिश के लिए
1: ये सेकंड डे पे पहले हम वहाँ पे पहुंचेंगे रुजबे।
0: अच्छा सॉरी
1: ठीक है हम रुक जाओ थोड़ा
0: आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट वाटर स्पोर्ट्स।
1: पहले हम वहाँ पे पहुँचेंगे चेक इन करेंगे होटल में तो तब तक थोड़ा रात हो जाएगी वहाँ पे यू नो जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे इट्स अ लॉन्ग ट्रेवल यहाँ से जब हम जाते हैं
0: 7-8 घंटे लगते हैं
1: आराम से बहुत टाइम लगता है। तुम तो गए हो बाली ना?
0: मैं गया हूँ यस।
1: तो देखो ना ये गया फिर भी जाते बनाना बोट चला गया ये
0: बट मैं लास्ट टाइम जब भी गया था तो मैंने बनाना बोट और ये सब नहीं किया था तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी जेट स्कीइंग और ये सब करने के लिए।
1: तो जाते वहाँ पे आपको डिनर मिलेगा आपका चेक इन होगा वो सब चीजें ठीक है देन नेक्स्ट डे देन वी स्टार्ट वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रेकफास्ट लंच डिनर एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड गाइस
0: सब कुछ इंक्लूडेड
1: अकोमोडेशन भी 5-star में
0: 5-star अकोमोडेशन। फिर अगले दिन फिर वही दिन शाम को हम लोग जाने वाले हैं उलुवाटू टेम्पल में।
1: अरे पहले एक मिनट रुको बनाना बोट होगा
0: बोल दिया मैंने वो कितनी बार
1: जेट स्की भी होगा एंड फ्लाइंग फिश भी
0: फ्लाइंग फिश
1: या
0: मतलब वो पैरासीलिंग एडवेंचर पैरासीलिंग होता है ना वो सारी चीजें भी ऑप्शनल है
1: वो भी ऑप्शनल है
0: सकते चाहिए
1: या
0: सो या वी कैन डू ऑल ऑफ दैट एंड वहां पे ये सारी एक्टिविटीज ना बहुत मजेदार होती है मजा आता है करने के लिए
1: डिफरेंट या एंड देन या वो टेंपल के बारे में
0: बताओ पानी गर्म होता है ना वहां पे सैंडी वाटर इज वार्म
1: एंड द टेम्परेचर विल बी रियली गुड। यहाँ पे जब ईस्टर के टाइम पे आप आंधी तूफान देख रहे होंगे बिकॉज ईस्टर पे यूजली होता है वेदर खराब ये रिकॉर्ड रहा है न्यूजीलैंड में तो आप एक ऐसी जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे आप गर्मी इंजॉय कर सकते हैं
0: जी। सो वो हो गया फिर बाद में हम जाएंगे उलुवाटू टेम्पल दोपहर को
1: बताओ या फाइनली बताओ उनके बारे में।
0: और उलुवाटू टेम्पल में आपको वहाँ पे नॉटी मंकीज भी मिलेंगे और ये बहुत डेंजर होते हैं वो मंकीज अरे भाई बहुत ही मस्तीखोर होते हैं वो लोग।
1: ओ वाओ ये जो टेम्पल है इट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द क्लिफ वाओ सो या ओके तो वहाँ पे नॉटी मंकीज भी होते हैं
0: वहाँ पे यू कैन पोक सैंडी एंड शी कैन
1: या विल सी
0: एनीवे फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अगले दिन हम जाएंगे ये ब्लू पॉइंट बीच हाँ ब्लू
1: उसका पहले का तो कितना भूल गए
0: अरे यार वो पडंग बीच थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना
1: एंड देन सुलुबान बीच तो बेसिकली बहुत सारी बीच जो है ये कवर करनी है एंड देन लेट लंच होगा क्रूज में एक सनसेट डिनर क्रूज होने वाला है जहाँ पे यू नो काफी इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट वो होगा वहाँ पे डांस वगैरह वो सब चीजें
0: डीजे वीजे होने वाला है मॉडर्न डांस
1: या
0: फिर अलग अलग बेलिनीज डांस भी होने वाला है ट्रेडिशनल बेलिनीज डांस एंड इंटरनेशनल बुफे डिनर प्रोवाइड होने वाला है वहाँ पे तो बाउंटी क्रूज है ये जहाँ पे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन टू बी ऑन द क्रूज एज वेल। फिर उसके बाद हम लोग बाली में और मजे करने वाले हैं अलग अलग जगहों पे जाने वाले हैं वहाँ पे।
1: There are few different activities for the next few days, 26 के लिए, 27 के लिए।
0: एक वोल्केनो टूर है वहाँ पे, वो भी हम करने वाले हैं।
1: वो फुल डे टूर रहेगा जहाँ पे सो उसी के साथ यू विल ऑल्सो विजिट वहाँ पे एक लोकल विलेज, बिकॉज ये तो मस्ट होता है अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो वहाँ पे लोकल विलेज को विजिट करना. सो वहाँ पे ट्रेडिशनल बेटिक पेंटिंग जो होती है वो होती है वहाँ पे, अलोहा स्विंग भी है वन ऑफ द डे में.
0: हाँ, वो जिसपे आपने काफी फोटोज देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, काफी इन्फ्लुएंसर्स वो फोटो डालते हैं, तो वो फोटो भी इंक्लूडेड है इसमें.
1: फोटो भी इंक्लूडेड
0: है. और अगर आपने इस महीने में, अभी नाउ यू हैव ओनली 7 डेज लेफ्ट, बट इस महीने में अगर आप रजिस्टर करते हो विच इज
1: लाइक $500,
0: तो आपको उसका जो अटायर मिल रहता है ना, जो पहन के अटायर पहन के आप फोटो लेते हो, वो भी इंक्लूडेड है उसमें.
1: बहुत लंबा सा वो गाउन होता है लड़कियों के लिए, तो वो नाउ इफ यू वांट यू कैन डू दैट, बट या नेक्स्ट डे
0: मैं मेरी वाइफ को पहना सकता हूँ वो गाउन, और मैं यू नो मैं तो मेरे को क्या पहनने की कोई जरूरत है.
1: देन 28 मार्च को यू फ्लाई बाली टू बैंकॉक, तो बैंकॉक में हम पहुंचेंगे एंड देन बैंकॉक में हमारी जो एक्टिविटीज है वो सारी की सारी शुरू हो जाएंगी.
0: जैसे कि सफारी वर्ल्ड एंड मरीन पार्क में हम जाने वाले हैं, फिर वहाँ पे ऑथेंटिक थाई मार्केट्स को हम चेकआउट करने वाले हैं, जो फ्लोटिंग मार्केट होता है वो उसको चेकआउट करेंगे. रेलवे मार्केट है
1: वो भी है, या गोल्डन एंड मार्बल बुद्धा वो सब चीजें भी. And finally, 31st March, ko we depart Bangkok and then fly back.
0: So the point is for you to travel with us. We'll have a lot of fun together. Hum log wahan pe, you know, it's a place where you can make new friendships. Naye aap dost bana sakte ho wahan pe.
1: Aap boys group bhi saath mein leke ja sakte hain. Girls group bhi saath mein leke ja sakte hain. Aap apni family ko saath mein leke ja sakte hain. So jis bhi way se aapko basically travel karna hai.
0: And when was the last time you traveled with other friends or other people, you know, as a group? ड्राइव कीवर्ड के साथ अगर आपको आपके मतलब इसके डिटेल्स चाहिए तो देयर विल बी अ फॉर्म, जस्ट फिल इन योर डिटेल्स एंड वी विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स. या फिर ऑल्टरनेटिवली इफ यू वॉन्ट टू कॉल एंड टॉक टू समवन, आई विल गिव यू अ नंबर. आप अनिल जी को कॉल कीजिए डायरेक्टली 021-228-9185 पे, 021-228-9185 पे, एंड ही कैन प्रोवाइड यू विद ऑल द डिटेल्स इंक्लूडिंग प्राइसेस एंड ऑल द पैकेजेस. क्या
1: अगर आप गूगल में सर्च करते हैं ना 0800 सन टूर्स, यू विल गेट द नंबर, या फिर सन टूर्स ऑकलैंड अगर आप सर्च करते हैं गूगल में, यू विल गेट द नंबर.
0: तो फटाफट इंक्वायर कीजिए और आ जाइए यार, लेट्स हैव फन टुगेदर.
2: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
3: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
4: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
5: Accurate traffic.
6: Switch to AMI car insurance.
7: Clearing overnight in Auckland, a low of 9 degrees. On the northern, it's pretty heavy northbound from Spaghetti Junction to just past Esmond Road. The northwestern still slammed from the city to Rosebank. On the southern, it's heavy heading north from Luke Street to Spaghetti Junction. Slow south from Khyber Pass to Sylvia Park. Southwestern heavy heading north to Waterview and slow in both directions between the southern and Mangere Bridge.
6: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
8: It's back to school at Woolworths. Get loose navel oranges for just $3.50 a kg. Or sanitarium up and go six packs, just $8.99 a pack. Back to school at Woolworths. Tea season exclusions apply.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
13: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recoversooner.
14: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
15: क्यों, क्या हुआ?
14: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
16: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
17: क्या
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
15: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
17: Power Drive at 5.
18: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Bollywood's most wanted.
19: Kundi ghar dao, ya seedha andar aao.
20: Main laun apna A game.
18: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और सुनील चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे। देखो यार, इतनी इंटरेस्टिंग बात है, अरिजीत सिंह ने रिटायर कर लिया है बॉलीवुड से वैसे, लेकिन अभी बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में दो गाने तो मैं जानता हूँ अरिजीत सिंह ने गाए हुए हैं।
1: या अरिजीत सिंह मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ट्रेंड से हटने वाला है, वो उसके कमिटमेंट से बहुत ज्यादा है ना अभी बॉलीवुड में, सो ही गोना सिंग फ्यू मोर सॉन्ग्स एंड देन ही विल फिर उसके सिर्फ एल्बम के गाने
0: फिर
1: हम सुनेंगे।
0: सिर्फ एल्बम के गाने, ओह गॉड, दैट्स गोना बी अ ट्रिकी वन।
1: एनीवे,
0: अभी यहां पे सैंडी आपके लिए एक मैसेज आया है कि हमने जो बाली और बैंकॉक का ट्रिप पूरा अनाउंस किया है जहां पे हम जा रहे हैं घूमने के लिए, उसका पैकेज का कॉस्ट कितना है। तो ऑल इंक्लूसिव पैकेज है ये, जिसमें फाइव स्टार अकोमोडेशन, फोर टू फाइव स्टार अकोमोडेशन प्लस सारा खाना इंक्लूडेड, सारे एक्टिविटीज इंक्लूडेड
1: एंड सारी फ्लाइट्स इंक्लूडेड,
0: सारी फ्लाइट्स भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड ये पैकेज अगर आप अभी अगर लेते हो जुलाई के महीने में, सो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू $7,995।

0: तो हर एक पैसा आपको पहले से डालना पड़ता है. यहाँ पे यू हैव द लिबर्टी टू पे ऑफ इन इंस्टॉलमेंट्स.
1: एंड ऑल्सो इस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 4 to 5 की स्टार की अकोमोडेशन है, इट्स ऑल्सो एट द पीक टाइम.
0: पीक टाइम पे है वो भी.
1: वो पीक टाइम की अकोमोडेशन है वो भी. मतलब आप उसको दूसरी कोई और अकोमोडेशन से कंपेयर ना कीजिए, 4 to 5 स्टार की अकोमोडेशन से ही कंपेयर करना.
0: एंड द अदर थिंग इज, व्हेनेवर
1: यू डू योर मैथ.
0: And the other thing is also that because आप मतलब ईस्टर के टाइम पे जा रहे हो, आपको सिर्फ 7 ही दिन अवे रहना है काम से. 7 days की हॉलीडे आपको लेनी है बस. तो दैट इज़ अनदर सेविंग, क्योंकि 7 दिन की छुट्टी के से आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना का मौका बहुत कम मिलता है. इट यू हैव टू यूज लॉन्ग वीकेंड्स फॉर
1: जहाँ पे एवरीथिंग इज प्लान्ड फॉर यू.
0: या so everything is planned over here for you. So yeah, if you're interested, get in touch with Anil ji. We've got very limited seats available. तो फटाफट आप inquire कीजिए, drive लिख कर भेजिए 5599 पे, या फिर आप Sun Tours का website check out कर सकते हैं.
2: Are you ready? Shockbusters.
3: थोड़ा तो hall बना दे.
0: मिका सिंह की आवाज में गाना सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक important बात. और इम्पोर्टेंट बात यह है कि
1: राहत फतेह अली खान इसी सैटरडे को परफॉर्म करने वाले हैं ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई को, और उसमें सिर्फ 300 टिकट्स बाकी है इस शो की.
0: ओके,
1: सिर्फ फाइनल 300 टिकट्स आर लेफ्ट. सो इफ यू वांट टू बाय योर टिकट्स, dryTickets.com is a website. जल्दी से जाइए और अपनी टिकट बुक कर लीजिए.
0: हम कोशिश करने वाले कि हम वहाँ पे रहे. आप जाने वाले हो सैंडी?
1: Yes, definitely.
0: Yeah, मैं भी बहुत excited हूँ यार ये शो के लिए, because राहत फतेह अली खान, honestly, last time मैंने इनका शो मिस कर लिया था.
1: Oh yeah, and I regretted. और मैंने तुम्हें बाद में वीडियोस दिखाई थी.
0: Yeah, so this time I am going to be there. फटाफट आप भी बुक कर लीजिए dryTickets.com पे, आपको इसके टिकट मिल जाएंगे. द ट्रस्ट अरीना पे सैटरडे 25 जुलाई को ये कॉन्सर्ट आपके लिए होने वाला है.

0: थ्रोबैक में आपके लिए गाना लेकर आएंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दे यहाँ पे इवेंट्स काफी सारे हो रहे हैं। अगर आपको भी पार्ट लेना है एक ऐसे इवेंट का जो सिर्फ इवेंट नहीं है बट इट इज शोकेस ऑफ कल्चर, क्योंकि ये सीजन आता है काफी बार नहीं हर साल आता है, एंड इट इज द गरबा सीजन। यस, नवरात्रि के टाइम पे ये होता है, और ऑकलैंड में हम बहुत फॉर्चुनेट है, प्रिविलेज है कि थोड़ा जल्दी आ जाता है ये हमारे लिए।
1: मुझे भी दो बोलेंगे,
0: माइक ऑन करना पड़ता है उसके लिए।
1: वही ना। सो या राज गढ़वी ये आने वाले हैं ना यहाँ पे,
0: राज गढ़वी आ रहे हैं यहाँ पे गरबा सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ ऑन सैटरडे 1st of August एट महात्मा गांधी सेंटर। अगर आपको भी इसके टिकट्स लेने हैं, देखो महात्मा गांधी सेंटर हमें सबको पता है कि बहुत लिमिटेड कैपेसिटी वाला सेंटर है, तो अगर आपको यू वांट टू बी द लिमिटेड गाइज देन बुक द टिकट्स नाउ, eventstickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे,
1: या फिर स्वप्निल से बात कीजिए ऑन 0224394736। लेकिन अगर आप टिकट यहाँ पे जीतना चाहते हैं तो आपको आरजी, काफी लोग आरजे लिख के भेज रहे हैं, आरजी आपको नहीं लिख के भेजना है,
0: आरजे तो हम है
1: आरजी एज इन राज गढ़वी स्पेस योर नेम।
0: थैंक यू, आपने ये स्पेसिफाई कर लिया सैंडी। थैंक यू।
1: आरजी मतलब राज गढ़वी, सो आरजी स्पेस अपना नाम लिख के भेजिए, 5599 इज द नंबर, एंड यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास फॉर दिस इवेंट।
0: जी, तो डबल पास अगर आपको भी आपके नाम करना है तो फटाफट यहाँ पे मैसेज कीजिए आरजी स्पेस आपका नाम, एंड लेट्स गरबा टुगेदर। यार ये गरबा मेरे को बहुत पसंद आता है, गरबा का ये सीजन।
1: और तुम्हें आता भी है ना गरबा करना?
0: नहीं, मुझे नहीं आता सैंडी, मैं सीखता हूँ, हर साल सीखता हूँ और सोचता हूँ कि ये साल मैं 9 के 9 दिन जाऊंगा, लेकिन फिर नहीं होता, मेरे से
1: कमिट नहीं हो पाता है वो,
0: नहीं क्योंकि बहुत पैर दुखते हैं सैंडी, इजी नहीं है और बहुत कोऑर्डिनेशन में आपको करना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसा पिचक पिचक जाते हो आप हर जगह से।
1: उसके लिए पहले से डांस क्लासेस ज्वाइन करो ना।
0: अच्छा,
1: You need to learn that.
0: ज्ञान अच्छा देते हो, आप खुद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो यार?
1: क्योंकि मैंने नहीं बोला ना कि मेरे को जाना है।
0: अच्छा, आपको नहीं जाना है?
1: नहीं, I will go for this event though.
0: मुझे भी पहले बहुत पसंद आता था ये जाने क्या, अभी मैं खुश हूँ सिर्फ इसके बारे में बात करके।
1: Okay.
0: नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये इवेंट, ये इट इज अ वेरी नाइस
1: कल्चर, आई लाइक द वाइब ऑफ इट,
0: द वाइब इज अमेजिंग,
1: मेरे को वाइब बहुत अच्छी लगती है, एंड मेरे को यू नो मेरे को क्या और एक अच्छी चीज लगती है कि वहाँ पे जब हर कोई ड्रेस अप होके आता है
0: वो ही तो खास बात है ना
1: यार, मजा आ जाता है देख के।
0: आपको भी?
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: क्यों
0: नहीं? हमको तो बहुत मजा आता है। क्या?
1: Anyway.
0: नहीं, अच्छा लगता है ना यार,
1: बहुत अच्छा लगता है
0: ऐसे कल्चरल एथनिक वेयर देखने को, मतलब इट्स रियली नाइस।
1: या बाय द वे इधर न्यूजीलैंड में ना, उधर साउथ वायरप्पा में काफी एरियाज अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ वाटर सप्लाई। इशू इज कि वाटर सप्लाई पाइप जो है फीडिंग द लोकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज बीन डैमेज्ड, इसके वजह से इमरजेंसी रिपेयर्स वहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उन्होंने बोला हुआ है रेजिडेंट्स को लिमिट वाटर यूजेज के लिए। मैंने जब हेडिंग पढ़ी तो आई वाज लाइक ऑलरेडी, बिकॉज इस बार बारिश भी कम हुई है
0: लेकिन ये तो एक अलग ही सिचुएशन है जहाँ पे और मेरे को लगता है अक्सर ऐसे हालत में ना प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बहुत सेव अप करते पानी, एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई आगे खत्म हो गया तो हमारे पास रहेगा, और फिर बाद में उस पानी को भी फेंक देते हैं, तो आई होप ऐसा ना
1: यूटिलाइज इट,
0: ऐसा आई होप यूटिलाइज हो रहा है, बट एनीवे और भी बातें करेंगे आपके साथ, सुनते रहिए हम आज 6 बजे के बाद आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अरमान मलिक।
1: या अरमान मलिक ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया यस्टरडे, सो आज उनके हम गाने सेलिब्रेट करने वाले हैं 6 to 7।
0: यस्टरडे सैंडी भूल गई अरमान का बर्थडे, बोलूंगा मैं, बात करूंगा अमाल से, भाई का बर्थडे भूल गई यार।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Burgers are better at BK.
3: Clearing overnight, a low of 9 for Auckland. On the northern, reports of a crash just south of Constellation Drive. Traffic very heavy in both directions between there and the Harbour Bridge. The northwestern slow from Hazlitt Street to Rosebank. The southern is heavy northbound Highbrook Drive through to Grafton and southbound from Newmarket to Sylvia Park. Southwestern still pretty slow in both directions between the southern and Mangere Bridge.
2: From flame-grilled whoppers to crispy chicken, the burgers are better at Burger King.
4: Air New Zealand's Discover the World sale is on now, with flights to Aussie, the islands, Asia, USA and Canada. Sale ends midnight 24 July 2026. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
5: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
8: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
9: Flooring Extra. Adore your floor.
10: Okay, let's run through this. You've set up a coffee group, a mum's group, a connect group, and you've adopted group fitness like a religion. Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Friends, whānau, workmates, get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma, save lives.
11: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
12: हाँ, अच्छा?
11: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं.
12: Mrs. Singh.
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
14: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
0: हम टाइम चेक. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. A bill drawn from the ballot would make it mandatory to report known or suspected child abuse. Failure to do so would become an offence with a prison sentence of up to 3 years. Author National's Andrew Bailey says the bill does include a reasonable excuse defence, which can be used if someone fears for their safety. Police searching for missing Northland man Saxon Steadman have recovered a body. It was pulled from the Wairoa River today and is believed to be that of the 22-year-old. A Wellington church says it will close its doors for a day if two stolen icons aren't returned. The artworks were taken from St Peter's on Willis earlier this week after sitting on its altar for years. Reverend Jean Malcolm says the theft has left them feeling a deep sense of loss of the icons and their sense of security.
16: If they're not back by next week, we will take a day when we have the church closed as a sign that we mourn.
15: An expert says there's no easy fix to fog issues at airports after Auckland was hit by the problem again this morning. Aviation industry commentator Irene King says some regional aircraft can't run the complex landing tech for low visibility.
17: It's not a simple retrofit. The cost of doing that outweighs the cost of disruptions. They're not predictable, but they're not that frequent either.
15: to sport the Commonwealth Games opening ceremony in Glasgow is from 6 tomorrow morning our time. It's a fairly loose arrangement as to who qualifies for the Games. There are a couple of West African countries attending who have no historical ties with Britain. And Rugby League with Machinery House in a league of their own. The NRL weekend kicks off at 10-10 this evening. The Panthers away to the Eels. The Panthers have been going through a rocky patch. The Eels are coming off a bye.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
1: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
18: सूचित किया जाता है पोकेनो के विजेंद्र प्रसाद की पत्नी वरुण और कार्तिक की माँ एग्निया वेदा अर्जुन और मारिया के दादी पोकेनो की रत्नामला प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर 1 बजे मनुकाव मेमोरियल गार्डन्स 361 पुइनी रोड में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0272687656 पर कॉल कर सकते हैं. पोकेनो के विजेंद्र प्रसाद की पत्नी पोकेनो के वरुण और कार्तिक की माँ एग्निया वेदा अर्जुन और मारिया की दादी पोकेनो की रत्नामला प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार शुक्रवार 24 जुलाई को दोपहर 1 बजे मनुकाव मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0272687656 पर कॉल कर सकते हैं. स्वर्गीय मुरारी लाल की पत्नी सतीश चंद राकेश चंद्रा रजनेश चंद्रा और हरिनेश लाल की मां पापा टोयटोय की विद्यावती लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार शुक्रवार यानी कल दोपहर 2 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0217386788 पर कॉल कर सकते हैं. स्वर्गीय मुरारी लाल की पत्नी सतीश चंद राकेश चंद्रा रजनीश चंद्रा और हरिनेश लाल की मां पापा टोयटोय के विद्यावती लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार शुक्रवार फ्राइडे 24 जुलाई को दोपहर 2 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0217386788 पर कॉल कर सकते हैं.
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
19: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: छह बज चुके हैं एंड यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. ट्रेंड मेकर्स शुरू हो गया है आपके लिए, जहां पे हम आपके लिए एक थीम लेकर आते हैं,
5: थीम लेके आते हैं यहाँ पे, या डेडिकेशन लेके आते हैं. हम सेलिब्रेट करते हैं आर्टिस्ट को यहाँ पे जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से किसी न किसी वे से जुड़े होते हैं या फिर बॉलीवुड के साथ जुड़े होते हैं. And today we are celebrating Arman Malik because he celebrated his birthday yesterday. एंड आज हम उनके गाए हुए गाने जो है ये आपके लिए प्ले करने वाले
4: और
5: हैं,
4: उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे. वैसे हमारा फॉर्चून रहा और प्रिविलेज रहा कि हम अरमान मलिक के साथ रूबरू यहाँ पे बात कर पाए काफी समय. मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू भी लिया था,
5: यहाँ पे भी किया था.
4: आपने तो बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू किए ना,
5: बिकॉज वो अक्सर जब न्यूजीलैंड में आते हैं तो देन वी हैव कन्वर्सेशन. हाँ, ओवर द फोन भी काफी गानों के बारे में बात हुई है, काफी गानों के बारे में. बट या इन्होंने 10 लैंग्वेजेस में वैसे ओवर द टाइम गाने रिकॉर्ड किए हैं. रुजबे हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, कन्नडा, बंगाली, तमिल, मराठी एंड इवन गुजराती.
4: ओ वाओ, एक्चुअली मैं उनको ना वो है सिनेस्थेसिया, उसका मतलब ये है कि वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं साउंड को विजुअली. तो जब भी आप वो लिसन करते हैं म्यूजिक को, वो एक्सपीरियंस करते हैं अ फॉर्म ऑफ सिनेस्थेसिया. तो इंस्टेड ऑफ सीइंग एब्स्ट्रैक्ट कलर्स और शेप्स, ही विजुअलाइजेस पीपल, स्पेसिफिक प्लेसेस एंड फूड. तो हर गाना इज टाइड टू अ सेंसरी मेमोरी पर्सन और अ फिजिकल फीलिंग.
5: वाओ, दैट्स अमेजिंग. तो इसीलिए मेरे को लगता है कि उनका ये करियर बहुत जल्दी शुरू हो गया था, 8 साल की उम्र में.
4: जी, 8 साल की उम्र में इन्होंने एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह काम किया था ना, और एड जिंगल्स गाते थे वो,
5: या कमर्शियल जिंगल्स, वो सब चीजें. एंड देन ही गेन्ड नेशनल अटेंशन 2006 में सारे गामा पा लिटिल चैंप्स में, जहाँ पे वो 8वें नंबर पे आए थे.
4: ओह
5: या, ही वाज एट 8th नंबर सारे गामा पा लिटिल चैंप्स में.
4: 8th नंबर पे थे लिटिल चैंप्स में. ओह वाओ, ओके.
5: बट देन उनके गाने जो है काफ़ी चलते गए जब उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई. वो भी ईजी नहीं थी, बट इट वॉज अ क्वाइट एन एंट्री. प्रिंस ऑफ पॉप जो है उनके फैंस इन्हें बोलते हैं,
4: प्रिंस ऑफ पॉप.
5: एंड रोमांटिक सॉन्ग्स में तो इनको वैसे ऑल्सो प्रिंस बोला जाता है. मेरे को उनके रोमांटिक गाने बहुत पसंद है, हमेशा से.
4: रोमांटिक गाने इनके आई थिंक लोग बहुत पसंद करते हैं ना, इसलिए क्या अरमानिया क्या है उनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को क्या बोलते
5: हैं,
4: अरमानियंस, अरमानियंस एंड अमालियंस. या एंड अरमानियंस इसलिए बहुत दीवाने हैं इनके क्योंकि इनकी आवाज में जो रोमांटिक गाने सुनते हैं भाई, प्यार हर किसी को हो जाता है.
5: तो सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं एक गाने के साथ.

0: ट्रेंड मेकर्स में आज हम अरमान मलिक को शाउट आउट दे रहे हैं क्योंकि उनका कल बर्थडे गया और काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने शायद सेलिब्रेट भी किया. वैसे ये जो गाना आपने सुना हम नहीं सुधरेंगे, ये गाना एक उनका ऐसा गाना है जो नॉन रोमांटिक गाना है और वो भी बहुत पसंद आया लोगों को.
1: चिल्ड गाना है ये.
0: हाँ,
1: चिल वाला गाना,
0: फन सॉन्ग.
1: या सो अभी जो नेक्स्ट गाना सुनने वाले हैं ये एक मैसिव कोलैबोरेशन था देखा जाए तो, जिसमें इंडियन पॉप, तेलुगु सिनेमा, के पॉप और EDM ये सारे के सारे फैक्टर्स इनटू अ सिंगल ट्रैक एक्चुअली में इन्होंने कंबाइन किए थे और ये गाना बाद में रिलीज किया था. सो वेरियस लैंग्वेजेस एक्चुअली में इस गाने में इन्होंने इंक्लूड की थी.
0: मल्टीपल गाने सॉन्ग और मल्टीपल आर्टिस्ट भी है इस गाने में.
1: मल्टीपल आर्टिस्ट भी है इस गाने में. तो ये आप गाना सुनने वाले हैं. वैसे यू नो अरमान मलिक की फॉर्मल हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग हुई थी एट द एज ऑफ 6 बाय हिज ग्रैंडफादर सरदार मलिक.
0: ओह वाओ.
1: या एंड देन ही डिड द स्टडी अबाउट वेस्टर्न पॉप, R&B. ये एक कॉलेज ऑफ म्यूजिक में गए थे जहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी स्टडी की.
0: आपको पता है इन्होंने एक्चुअली में 2010 में इन्होंने वॉइस किया था यंग कैरेक्टर सलीम फॉर BBC रेडियो रेडियो वंस रेडियो अडेप्टेशन ऑफ स्लम डॉग मिलियनेयर.
1: वाओ.
0: सो स्लम डॉग मिलियनेयर का एक रेडियो अडेप्टेशन था उसका, उसके लिए उन्होंने वॉइस किया था कैरेक्टर सलीम कैरेक्टर का. और उन्होंने इंग्लिश डबिंग किया था फॉर माई नेम इज खान.
1: Nice.
0: So My Name Is Khan का जो इंग्लिश काफी उनको पता भी नहीं होता है ना कि अलग अलग डबिंग्स हो रही है अलग अलग
1: और वॉइस ओवर्स जाते हैं वहाँ पे.
0: So उसमें I think yeah अरमान मलिक was also involved in that. So yeah और भी डिटेल में बात करेंगे हम अरमान मलिक के बारे में. आप आज सुन रहे हैं अरमान मलिक स्पेशल 6 से 7 के बीच only on हम

0: Trend Makers.
1: Fiji is on sale now at Flight Center. Take the family to Plantation Island with 7 nights plus flights from $1,499 per person. Book in store today. Depart Auckland, fees, T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
2: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing in association with RNZ News. Change is in the air.
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
6: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
13: Are you ready to go home?
14: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
15: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग Bollywood's biggest hits और trend makers में आज Arman Malik अपना birthday कल celebrate किया उन्होंने. कितने साल की हुई ये?
16: So 95 born.
15: 95 born है तो he's almost Gen Z यार.
16: Yeah.
15: Wow.
16: Yeah, almost then.
15: तो मतलब अभी
16: 31. लेकिन एक बात उनकी देखनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने यंग एज में रुजबे गाना शुरू किया, लेकिन इवन द वेरी फर्स्ट सॉन्ग उनका जो आवाज है वो कभी कोई पहचान नहीं सकता है कि इतने यंग आर्टिस्ट ने ये गाना गाया है.
15: I think जब उनसे बात भी करते हैं हम लोग तो ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने यंग है.
16: Yes.
15: Like his soul age I think is way higher.
16: And he's a very organized person. हमने जितनी बार भी उनसे बातें की है ना, उन्होंने हमेशा लाइक यहाँ पे वो किस साल में आए थे, 2017 में शायद वो आए थे. 2017 में ही शेयर्ड फ्यू थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ यहाँ पे बातें करते समय कि वो अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें इन 5 साल में अचीव करना चाहते हैं. इन एग्जैक्टली 5 years उनके लाइफ में वो सारी की सारी चीज़ें थी जो उन्होंने बोली थी. वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन कि मुझे कब क्या चाहिए, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, बॉलीवुड में मुझे इतना ही काम करना है, मतलब मैं बॉलीवुड डिपेंडेंट नहीं रह सकता, ये उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था. And that's what he did.
15: And also I think he's been very grounded like from the start and even now. Like हमने पिछले साल I think उनका इंटरव्यू किया था. And he has been so like he was that time also so punctual. हमको जो टाइम बोला था I think he was available right at
16: dot
15: that time. So he's very punctual when it comes to and very professional also.
16: Yes.
15: Really good to work with I believe.
16: There's always smile on his face. Yeah, वो उनके बारे में नोटिस किया है.
15: अभी अगला जो गाना हम हमको सुनाने वाले हैं ये गाना इज व्हाट मेड Arman Malik Arman Malik. दिस इज फ्रॉम द मूवी धोनी, MS धोनी.
16: या एंड ब्यूटीफुल वे से इस गाने को उन्होंने गाया था. इस गाने के लिए काफी उनको नॉमिनेशंस भी हुई थी अवार्ड्स के लिए.
15: सो आपके लिए दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक ट्रैक, एंजॉय कीजिए.

0: ये सब सारी चीजें पता नहीं चलती है ना, लाइक हमें पता है लेकिन बॉलीवुड में इतना ये पॉपुलर नहीं है सारी चीजें कि ही इज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू बी फीचर्ड ऑन टाइम्स स्क्वायर. फिर
1: इवन विद एड शीरन के शो में ही वेंट ऑन द स्टेज एंड उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन की थी.
0: और ये पहले इंडियन आर्टिस्ट रहे टू हिट नंबर 1 ट्वाइस ऑन द टॉप थ्रिलर ग्लोबल बिलबोर्ड्स चार्ट. ये ट्रेलर ग्लोबल बिलबोर्ड चार्ट क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ है बढ़िया ही कुछ लग रहा है.
1: और वेम्बली अरीना में ही वाज द यंगेस्ट इंडियन ओरिजिन सिंगर टू परफॉर्म लाइव एट लंदन्स वेम्बली अरीना. सोलो टूर था इनका वहां पे.
0: क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम इन्होंने किया है. अभी इनका गाना भी सुन लेते हैं. ये गाना मुझे लग रहा है कबीर सिंह का गाना है, लेकिन कबीर सिंह का सॉन्ग बट बहुत प्यारा लगता है मुझे ये गाना. एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ दोज जिनको पहला पहला प्यार हुआ है. एंजॉय कीजिए.

0: You're listening to Humbling Bollywood's Biggest Hits. Arman Malik Special Hour आज के आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि अरमान मलिक का बर्थडे गया कल
1: और अभी जो आपने गाना सुना ये सॉन्ग एक्चुअली में दोनों भाइयों ने यहाँ पे बोला था कि उनके ग्रैंडफादर को डेडिकेटेड है दिस सॉन्ग एंड दे फील वेरी रोते हुए
0: ना ये गाना सोच के सुनने के बाद
1: फील वेरी कनेक्टेड विद दिस सॉन्ग
0: और हमने पिछली बार अमाल के साथ जब बात की थी तो उन्होंने कहा था ना कि एक लेडी आई थी जो हमेशा बाहर आती थी इनके घर के बाहर या जहाँ पे ये थे उनके बाहर और वहाँ पे बोलती थी कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती हूँ
1: और याद करती थी ये गाना
0: सुन के। सो या वेरी इमोशनल वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक बट थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए। अब यहाँ पे हमारे कल्टी मारने का टाइम आ गया है,
1: टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाते जाते ये एक ऐसा गाना जो अनदर सुपर डुपर हिट था, आई थिंक दिस वाज़ द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ अरमान मलिक जो चार्ट बस्टर हुआ था। इससे पहले उन्होंने कुछ और गाने भी गाए थे बट विद दिस मूवी मेरे को लगता है कि सलमान खान की इस मूवी में जो एक और मूवी में एंट्री इनको मिली थी बट विद दिस मूवी अलग लेवल पे चला गया था ये गाना।
0: Yeah, and I think it was a very loved song. In fact, ये गाना हमको बाद में स्टोरी इसकी पता चली थी, अभी रिसेंटली अमाल मलिक ने शेयर की थी ये स्टोरी मैं जब ब्रेकफास्ट शो कर रहा था तभी, कि ये गाना अरमान ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था और गाना काफी हिट भी हो गया था बट देन सलमान खान अगेन शॉट लाइक रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग इन हिज ओन वॉइस बिकॉज वो टाइम पे काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी अराउंड द लीड एक्टर्स सूरज पंचोली और वो सलमान खान ने
1: हीरो मूवी में थे
0: फिर सलमान खान ने बोला कि यार इनसे ध्यान हटाते मैं कुछ और देता हूँ उनको ट्रोल करने के लिए तो उन्होंने खुद ने गाना गाया फिर
1: लेकिन मेरे को उसका गाया हुआ सलमान के सारे गाने अच्छे नहीं लगते मेरे को गाया हुआ मेरे को वो लेकिन वो वर्जन अच्छा लगा
0: बहुत अच्छा है एक्चुअली
1: मेरे को बहुत अच्छा
0: लगा सलमान खान भी वही कहते हैं कि वो वर्जन आई थिंक लाइक ही सैंग सो मेनी सॉन्ग्स बट नोबडी कुड प्रोजेक्ट हिम इन दैट वे जो वो गाने में प्रोजेक्ट हुए
1: 100%
0: क्योंकि वो हैंगओवर गाना भी गाया उन्होंने पर वो तो कितना बकवास साउंड करता है।
1: हाँ मेरे को कोई और अच्छा नहीं लगा एक्चुअली मैं आज तक
0: बट ये वाला गाना अच्छा है
1: ये अच्छा था बट एनीवे इसी नोट पे यहाँ पे आपको टाटा बाय बाय कहते हैं अरमान मलिक को। आज हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया उनके गानों को सेलिब्रेट किया जिनको वैसे भी आप रेडियो पे रोज मेरे को लगता है कि अरमान मलिक के कोई ना कोई गाने तो यहाँ पे प्ले ही होते हैं देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स सो वी कंटिन्यू सेलिब्रेट दीज आर्टिस्ट। कभी आप कुछ स्पेशल सुनना चाहते हैं तो अभी हमें मैसेज करके बताइए 5599 पर
0: ड्राइव कीवर्ड के साथ 5599 पर जरूर मैसेज कीजिएगा। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग वी विल सी यू टुमारो बाय।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: मिनिस्टर तेरा यार करे जब कॉल, सुन कुर्सी छोड़े मिनिस्टर तेरा यार करे जब कॉल।
1: हैप्पी आवर ऑन हम
2: 80s के रेट्रो गाने।

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल। Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Hum Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
3: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
4: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
6: Tired of clunky FPOS and high merchant fees eating your profits? It's time to demand better. Shift4 delivers lightning fast transactions and speedy settlements that actually make sense. No confusing

हम पर, मैं हूँ अवि और ये है नाइट कैफे। जब भी मोहब्बत की बातें करते हैं तो कैसे राहत फ़तेह अली खान के बारे में बातें ना करें, जिनकी आवाज़ में ही ऐसी जादू है और ऐसा प्यार है, ऐसी मिठास है। और ये आ रहे हैं आपके लिए खास परफॉर्म करने के लिए ओकलैंड में एट द ट्रस्ट अरीना ऑन द 25th of July। इनको लेकर आ रहे हैं JK स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और साथ में शहजादा प्रोडक्शन। टिकट्स अगर जो अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो याद रहे, इनके जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो कॉन्सर्ट है, ये इसी वीक ही रहेगी। तो जल्द से जल्द जाकर dryticketsdotcom पर अपने टिकट्स अभी से ही ले लीजिए, अपने सीट्स को सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है ना, मोहब्बत की आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान की और ये परफॉर्म करने वाले हैं खास आपके लिए ऑन द 25th of July। तो ड्राई टिकट्स जाइए और टिकट्स अभी से ही परचेस कर लीजिए।

0: 104.2 FM साथ में रोवा पर, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर, हम 104.2 FM का जो फेसबुक पेज है यहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स और साथ में जो कॉम्पिटिशन्स हम लेकर आते रहते हैं इसमें आप बिल्कुल शामिल रहे। और जबकि आज है थर्सडे, तो ऐसे में रोमांस की बातें हो रही है, तो बाली एंड बैंकॉक जो गेटअवे है इसको भी आप बिल्कुल रोमांटिक बना सकते हैं। जबकि सैंडी एंड रुस्बे मार्च 2027 में आपके लिए खास लेकर आ रहे हैं बाली एंड बैंकॉक गेटअवे, जहां पर पहले आपको ये लेकर जाएंगे, बैंकॉक में घुमाएंगे, अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आपको महसूस कराएंगे। इसके बाद में फिर बाली में भी ले जाकर आपको कहीं ना कहीं जो स्टनिंग राइस टेरेसेस है, वाटरफॉल्स है, इन सभी का जो नज़ारा है ये आपको दिखवाएंगे। ये सभी कुछ इनके साथ में, अक्सर आप सोचते होंगे, देखते होंगे फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर जो बाली का फेमस स्विंग है, जहाँ पर लोग जाकर अपने अपने तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो ये सभी कुछ करने का आपके पास में मौका है। और क्यों ना इस ट्रिप को भी आप बिल्कुल एक रोमांटिक एंगल दे दे। मार्च 2027 में है, तो अभी से ही आपके पास में मौका है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, साथ में अपनी छुट्टियों की भी प्लानिंग कर सकते हैं। सिर्फ ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजिए और यहां से आपको पूरा का पूरा इंक्लूसिव टूर प्राइस मिल जाएगा।
1: इट्स पी ऑन द ट्रैक, लेट्स गो।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर नाइट कैफे का सिलसिला जारी है. इस जस्ट आफ्टर नाइन आपका खास स्वागत करते हैं. अगर जो अभी ही आपने ट्यून इन किया है, वेलकम टू द शो. अभी का साथ है और आज है रोमांटिक थर्सडे. ऐसे में आपके लिए, जैसे कि हमने वादा किया है, एक से बढ़कर एक रोमांटिक गानों को पेश करते रहेंगे और इस आवा पर भी ये सभी कुछ रहेगा. 104.2 FM और रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. मेरा तहे दिल से आपका स्वागत है इस आवा पर.

हम पर ये है नाइट कैफे और मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि आज है रोमांटिक थर्सडे। ऐसे में हमने सोचा आपके साथ में शेयर कर ले कुछ ऐसे मूवीज़ के नाम जिसे आप रिविजिट कर सकते हैं, और शायद कुछ दिन हो गए होंगे इन्हें चेकआउट किए हुए या इनको देखे हुए। तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे रोमांटिक मूवीज़ है जिसे शायद आप जितनी बार भी देखेंगे तो आपका दिल भरेगा नहीं। इनमें शामिल है परदेस, एक ऐसी मूवी जहां पर शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया था, और इसके साथ में कुछ और मूवीज़ है जिनमें शामिल है जब वी मेट। जी हां, शाहिद और करीना की ये मूवी है, ये भी काफ़ी अच्छी एक रोमांटिक फिल्म थी। इसके साथ में दी ओल्ड टाइम ग्रेट 1990s में आई थी साजन, जहां पर आप संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित को एक साथ में देख सकेंगे, और इस फिल्म में एक से एक बढ़कर गीत थे, म्यूजिकल हिट्स थे। और इसके साथ अगर जो आप एक और एक फिल्म का नाम चाहते तो मैं आपको जल्द से बता दूं कि रोमांटिक मूवीज़ में अगर जो बात इसकी ना हो तो फिर क्या बात है, DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 की ये आई हुई फिल्म, जहां पर काजोल और शाहरुख खान ने हंगामा ही मचा दिया था। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं।

0: Murphy on Hum.
1: हम पर यह है नाइट कैफे और मैं हूं अभी आपके साथ में कम्युनिटी न्यूज में न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो कि रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल. आपको एनकरेज किया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए और रजिस्ट्रेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज पर या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को 021-090-850-67 पर कॉल कर सकते हैं.

हम पर ये है नाइट कैफे और गरबा नाइट लेकर आ रहे हैं राज गढ़वी लाइव इन ओकलैंड। आपके पास में मौका है जहां पर आप इनको जाकर देख सकते हैं और साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं, धूम मचा सकते हैं, नाच सकते हैं। ये सभी कुछ रहेगा सैटरडे 1st ऑफ अगस्त को यदि महात्मा गांधी सेंटर इन ओकलैंड, जो टिकट्स है काफ़ी फास्ट बिक रहे हैं। तो अभी आपके पास में मौका है events.tickets.co.nz पर जाकर आप अपने टिकट्स ले सकते हैं। लोटस प्रोडक्शन साथ में श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप लेकर आए हैं गरबा विद राज गढ़वी लाइव इन ओकलैंड। जिन लोगों ने बहुत दिन से गरबा खेला नहीं अच्छी तरीके से, ये पूरा का पूरा मौका है आपके पास में। और सैटरडे 1st अगस्त को ही रहेगा महात्मा गांधी सेंटर ओकलैंड में। और जैसा कि मैंने कहा है, टिकट्स अभी से ही आप ले सकते हैं events.tickets.co.nz पर। और साथ ही साथ में हमारे जो शो होस्ट होते हैं अपने अपने शो में आपको डबल पास जीतने का मौका भी दे सकते हैं। और जब ये कहें अपने शो पर, तो आपको सिर्फ टेक्स्ट करना होगा RG लिखकर अपने नाम के साथ में 5999 पर। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपके नाम को डबल पास के लिए ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। बस इतना ही करना होगा आपको।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Air New Zealand's Discover the World sale is on now, with flights to Aussie, the islands, Asia, USA and Canada. Sale ends midnight 24 July 2026. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
5: Own the game, own the gear. It's sale time at Rebel Sport. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store wide. Here in Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest, Sarah.
7: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
8: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
9: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
10: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
1: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. A polar blast sweeping into the South Island is expected to make road conditions hazardous over the next few days. Snow is expected in many places on Saturday, giving way to severe frosts from Sunday. An expert says there's no easy fix to fog issues at airports. Auckland hit by the problem again this morning, impacting dozens of flights. Aviation industry commentator Irene King says some regional aircraft can't run the complex landing tech for low visibility. A Central Otago community group fighting the proposed fast-tracked gold mine near Cromwell has received more than $20,000 in donations since the death of Sir Sam Neill. Sir Sam was a prominent and vocal opponent of the scheme. In sport, the Black Caps have been confirmed for a return to England next year for a five-match ODI series and three T20s in September, ahead of the World Cup in Southern Africa. In rugby league, with Machinery House in a league of their own, Warriors coach Andrew Webster has shut down any speculation about the club chasing either rugby convert Joey Manu or Panthers superstar Nathan Cleary.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Night Cafe.
13: Yo.
1: You're listening to Avineet.
14: मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है नाइट कैफे और लेकर आया हूं आपके लिए रोमांटिक थर्सडे जबकि 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमारा यानी कि हम का साथ दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026 यह मौका आपके पास में है जहां पर फिजी गिरमिट फाउंडेशन साथ में एम्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइड क्रिमेशंस आपके लिए आपके हेल्थ को ध्यान में रखकर लेकर आए हैं ये एक्सपो। यहाँ पर सभी के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है और आपको सिर्फ जाना होगा A1 इवेंट सेंटर एट 731 ग्रेट साउथ रोड पापटोई सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक ऑन संडे 26th of July। यहाँ पर आपके लिए फ्री स्क्रीनिंग भी रहेगी, इसके साथ में आपको इजी योगा पोस्चर्स भी सिखाया जाएगा और किसी को वक्त आने पर कैसे आप CPR भी दे सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। आपके मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी बातें यहाँ पर रहेंगी। ये सभी कुछ ऑन संडे 26th of July एट 731 ग्रेट साउथ रोड पापड़ टोई A1 इवेंट सेंटर सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक।

हम पर नाइट कैफे में अगला जो गाना है राहत फतेह अली खान की आवाज़ में सुनवाने जा रहे हैं आपको, और ये जो फनकार हैं ये खुद आपके लिए परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं द ट्रस्ट अरीना ओकलैंड में, जबकि इनकी जो कॉन्सर्ट है 25 जुलाई को ही रहेगी, तो बहुत समय नहीं बाकी है और इट्स जस्ट अराउंड द कोना। तो अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो आपको जाना होगा dryticketscom और अपने टिकट्स आप परचेज कर सकते हैं, जबकि जब भी ये स्टेज पर आते हैं एक अलग तरीके से माहौल बांध देते हैं, एक अलग इनकी जादू होती है और साथ में इनका एक मैजिकल टच होता है। तो ये सभी कुछ फेस्ट हैंड एक्सपीरियंस करने वाली बात है, जबकि इनको ला रहे हैं जेके स्टार प्रोडक्शंस, गाउट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन। तो याद रहे 25 जुलाई को इनका जो कॉन्सर्ट है ये रहेगा एट दी ट्रस्ट अरीना इन ओकलैंड, और टिकट्स ले सकते हैं आप dryticketscom से।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द

0: off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
1: It's Carpet Court's massive 3-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Night Cafe.
4: हम पर आपके लिए एक कम्युनिटी न्यूज़ भी है. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में है और ये लेकर आ रहे हैं अखंड रामायण पाठ जो रहेगा 1st और 2nd ऑफ अगस्त को. याद रहे सैटरडे 1 तारीख अगस्त, साथ में संडे 2 तारीख अगस्त को ये प्रोग्राम रहेगा. सैटरडे को रोड पूजा के साथ में ये पाठ आरंभ होगी सुबह 7 बजे और उसके बाद में संडे 10 बजे सुबह जो रामायण पाठ है, अखंड रामायण पाठ है, ये समाप्त होगी. इसके बाद में हवन एंड आरती भी रहेगी और थ्रू आउट द प्रोग्राम आपके लिए महाप्रसाद भी दिया जाएगा. और जानकारी के लिए आप 09836464647 पर कॉल कर सकते हैं.

हम पर नाइट कैफे में मैं हूँ अभी आपके साथ में। आपके साथ में अक्सर हम हंसी मजाक की बातें भी करते हैं और इसके अलावा आपसे गपशप भी करते हैं, लेकिन समय आने पर आपके साथ में ज़रूरी बातें भी करते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। तो सैंडी और रुजबे ने बातें की हैं शनील लाल के साथ में इन द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, और शनील ने बड़े खुले दिल से LGBTQ के बारे में बात किया है, उनके राइट्स के बारे में बात किया है और कैसे उनको टारगेट किया जाता है इसके बारे में भी काफ़ी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इन सब ऑब्स्टिकल्स को वो ओवरकम करते हैं। तो ये सभी कुछ बातें जानने के लिए, सुनने के लिए आपको सिर्फ ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजना होगा और यहाँ से आपको पूरा का पूरा जो ऑडियो है ये मिल जाएगा। इसके साथ में जो ब्रेकफास्ट कैचअप है, जहाँ पर विजय और पूजा अक्सर कुछ हार्ट हीटिंग टॉपिक्स को लेकर आते हैं, आपके साथ में डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इम्पैक्ट करती है, तो ये सभी कुछ बातें विजय और पूजा के साथ में ब्रेकफास्ट शो पर होती रहती है। इसके कैचअप के लिए आप BF लिखकर 5599 पर भेजें और यहाँ से आपको जो पॉडकास्ट है ये मिल जाएगा।

0: Coffee on Hum. You're listening to Avineet.
1: मैं हूं अभी आपके साथ में और आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर, जबकि ये सिलसिला है नाइट कैफे का ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। ऐसे में ये है फाइनल आवर और आपका खास स्वागत करते हैं इस आवर पर भी, और गीत का सिलसिला चलता रहेगा जो रोमांटिक नंबर्स आपके लिए प्रेजेंट करते रहें, इसे इस आवर भी आपके लिए बजाते रहेंगे।

आप सुन रहे हैं रोमांटिक थेसरे ओनली ऑन नाइट कैफे, और हम पर आपके लिए ये भी बता दें कि हम म्यूजिक स्टेशन जो हमारे रोवा प्लेटफॉर्म पर आपके लिए तैयार किया गया है, जहां पर 60s और 70s के गाने आप हम रिवाइंड में सुन सकते हैं, उसके अलावा 80s के गाने आप हम 80s जुग बॉक्स में सुन सकते हैं, उसके साथ ही साथ फिजी के भी जितने भजन्स हैं ये भी आपके लिए स्टोर किया गया है, शर्दी कला फॉर ऑल योर पंजाबी हिट्स ये भी आप सुन सकते हैं, और इसके साथ साथ में फिजी कीर्तन संग्रह, फिजी के पॉपुलर और प्रमुख कीर्तन आर्टिस्ट के आवाज़ों में जो कीर्तन यहाँ पर है स्टोर किए गए हैं, इसके साथ साथ राहत फ़तेह अली खान, इनकी अलग फैन फॉलोइंग है, सूफ़ी और कव्वालियाँ आप इनके पसंद करते हैं, तो आपके चॉइसेस को ध्यान में रखकर ये सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल किया गया है हम म्यूज़िक स्टेशंस रोवा पर।

0: Murphy on Hum.
1: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि थोड़ी देर तक और ये कारवा चलता रहेगा, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ है।

हम पर आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। 8 बजे से आपने हमें सुना, हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अब मुलाकात होगी सैटरडे मॉर्निंग को, लेकर आएंगे सैटरडे ब्रेकफास्ट शो। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए नाइट कैफे में बिल्कुल मज़ा आया, जो रोमांटिक नंबर्स हमने आपके लिए बजाया, हमको भी सुनकर उतना ही अच्छा लगा और होप करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा। अब निकलते हैं यहाँ से और सैटरडे मॉर्निंग को मुलाकात होगी, लेकिन इन द मीन टाइम आप खुद का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। डू टेक केयर, बाय।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे। हम सांप।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
2: अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह,
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: What if your next holiday wasn't just a holiday,
4: but the adventure everyone talks about?
5: Imagine chasing waterfalls,
4: wandering lush rice terraces,
5: catching unforgettable sunsets,
4: and relaxing at iconic beach clubs.
5: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
4: discovering incredible temples,
5: tasting world-famous street food.
4: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best. Hamari koi branch nahi hai.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वी आर कंट्रोलिंग ट्रांसमिशन

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz.
5: For 30 years, Avana Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: show with VJ and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Media Works complaints. How can I help?
2: My kids won't shut up.
1: I'm not sure that's our problem.
2: They keep reciting lines from one of your radio ads.
1: Aw, cute.
2: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
3: What do you want, son?
4: I want me some of that real southern chicken.
2: 28 times.
1: So where are you now?
2: Eating chicken.
5: Advertise with
6: Media Works.
5: New Zealand listens to us.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
10: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best. Hamari good brands nahi hai.

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m. For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
2: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना.
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
1: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
9: Kogan Mobile, true Aussie value.
8: Terms and conditions apply.
10: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
11: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
12: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
1: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The man who killed Nelson police officer Lynn Fleming will be sentenced today. Hayden Tasker was found guilty of several offences, including murder, after driving his car at officers on New Year's Day 2025. Fleming was the country's first female officer to be killed in the line of duty. An impassioned plea for politicians to band together and tackle child poverty. A bleak report found 170,000 live in material hardship, a 10-year high. Outgoing Children's Commissioner Claire Achmed says it's time for unity.
14: I want to see leaders across the political spectrum commit once and for all this year to ending child poverty.
13: Another fuel spike is looming just as petrol prices were on their way down. Brent crude has hit $100 a barrel for the first time since May amid renewed fighting in the Middle East. President Trump says he is considering a massive attack on Iran. Job ads on Seek have risen more than 10%. Mining, resources and energy saw the fastest growth in June, with Taranaki and Canterbury the strongest performing regions. References to AI have also more than doubled since the same time last year. The platform has now seen 19 consecutive months of growth. In sport, a winning start for New Zealand's lawn bowlers at the Commonwealth Games in Glasgow. Shannon McElroy comfortably won his opening match in the men's singles, while the women's pair needed a tiebreak against Kenya. And to rugby league with the Machinery House in a league of their own. The Panthers came back to beat the Eels 24-18 in the NRL last night. Coach Ivan Cleary.
15: Yeah, like we got away with the win. Some good resilience shown, so that'll help us.
13: Penrith are 4 points clear of the Warriors, who face the Bulldogs in Sydney tomorrow.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
17: सूचित किया जाता है कि पोकेनो के विजेंद्र प्रसाद की पत्नी यानी वरुण और कार्तिक की मां और अग्निया वेदा अर्जुन और मारिया की दादी रत्ना माला प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे मेनकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02726876656 पर संपर्क कर सकते हैं। पोकेनो के विजेंद्र प्रसाद की पत्नी यानी वरुण और कार्तिक की मां और अग्निया वेदा अर्जुन और मारिया की दादी पोकेनो की रत्नमाला प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे मेनकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02726876656 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वर्गीय मुरारी लाल की पत्नी यानी सतीश चंद राकेश चंद्रा रजनेश चंद्रा और हरिनेश लाल की मां पापा टोय टोय की विद्यावती लाल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 2 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डआउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 02173867878 पर संपर्क कर सकते हैं। स्वर्गीय मुरारी लाल की पत्नी यानी सतीश चंद राकेश चंद्रा रजनेश चंद्रा और हरिनेश लाल की मां पापा टोय टोय की विद्यावती लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 2 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डआउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 02173867878 पर संपर्क कर सकते हैं। वेसारुम्बा के स्वर्गीय नगैया नायडू के पुत्र यानी सदा पिल्ले केशवन चिनैया और चंद्रकांता के भाई और मनोज कुमार तथा INZ की पूनम सिंह के पिता सेगा रियलिटी के कृष्णमूर्ति की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार रविवार को 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डआउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। वेसारुम्बा के स्वर्गीय नगैया नायडू के पुत्र यानी सदा पिल्ले केशवन चिनैया और चंद्रकांता के भाई तथा मनोज कुमार और INZ की पूनम सिंह के पिता सेगा रियल्टी के कृष्णमूर्ति की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार रविवार को 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डआउट प्लेस वीरी में किया जाएगा।
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: जबरदस्त हिट्स
18: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
18: हम।
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: 10 डिग्रीज टेम्परेचर ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं आज का हाई 16 ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज। आज बदली रहेगी शुरू में कहीं कहीं पर फॉग भी होगा और बाद में शाम से आज बारिश होगी रहकर गंभीर बारिश हो सकती है। सनराइज 7:25 AM पर सनसेट 5:31 PM पर होगा।
0: Brought
19: to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast catch up. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
20: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
21: Hello, Kira. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Friday 24th of July की ये सुबह और आपके लिए आ गए हैं as promised. आज का हमारा The Breakfast Show with Vijay and Pooja का ये सफर लेकर. Good morning.
22: Good morning. Good morning. कैसी हैं आप?
21: मैं तो ठीक हूँ. आप कैसे हो?
22: I am good.
21: And all ready for Friday? All ready for today?
22: Yeah, final day in the office. बहुत सारे लोगों के लिए तो काफी excited होंगे आप भी और look forward कर रहे होंगे कि ये दिन आज आपका आखिरी होगा दफ्तर में. एंड आफ्टर दैट यू विल चिल आउट फॉर द वीकेंड.
21: तो प्लान्स तो सभी बना रहे हैं डेफिनेटली, ऐसा कोई नहीं होता कि बिना प्लान के ही वीकेंड को लुक फॉरवर्ड करता है. बट अगर आपके पास ज्यादा आइडियाज है नहीं कि चलो फ्री तो है लेकिन करे क्या इस वीकेंड, तो डेफिनेटली आज के सफर में आपके लिए हम कुछ ऑप्शंस या सजेशंस ये लेकर आएंगे एंड इट माइट वर्क आउट फॉर यू और इट माइट वर्क आउट फॉर योर ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आप शायद अपना वीकेंड स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं. पर फिलहाल आज की सुबह वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच आप सबके साथ के लिए. नॉट टू फॉरगेट कि आज हम आपके लिए ब्रेकफास्ट कैचअप लेकर आ रहे हैं जिससे कर रहे हैं इस घंटे की शुरुआत
22: थोड़ी देर में. आज का सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए हम लेकर आएंगे.

0: Sunnyside Up.
1: वक्त है आज का सनी साइड अप स्टोरी जो है ये हम आपको सुनाएं। ये कहानी दरअसल एक्स पर से लोगों को पता चली और दुनिया भर में एक डॉक्टर जो है ये काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और डॉक्टर जो है इनका नाम है प्रशांत मिश्रा, उन्होंने एक कहानी जो है ये शेयर की और उन्होंने बताया कि उनके पास एक पेशेंट आया था जो एक ड्राइवर की नौकरी करता था। तो उन्होंने आकर डॉक्टर से कहा कि उन्हें बाईपास सर्जरी जो है ये करवानी है, और क्योंकि डॉक्टर प्रशांत मिश्रा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ पर इनकी सर्जरी का कॉस्ट अराउंड 4.2 लाख रुपीज आता, 4 लाख से ज़्यादा। और शुरू में उन्होंने ड्राइवर को बताया कि आप कंसीडर करो कि आप सरकार रन सिविक हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर आपकी सर्जरी जो है फ्री हो सकती है पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम के तहत। उस दिन बाद में उस ड्राइवर का बेटा जो है उसने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और उनसे मांग की कि सर्जरी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ही की जाए, और उनसे ये भी पूछा कि सर क्या इसका खर्च थोड़ा कम हो सकता है, आप घटा सकते हो। तो डॉक्टर प्रशांत ने उनको बताया कि उनसे जो भी हो सकेगा वो करेंगे। अगले दिन जो ड्राइवर था उनके एम्प्लॉयर जो थे, जो मालिक थे जिनकी गाड़ी वो चलाते थे, उन्होंने पूरे के पूरे 4.2 लाख रुपीस जो है ये डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिए बैंक हॉस्पिटल के बैंक अकाउंट में।
2: बेसिकली उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे भर दिए
1: सारे पैसे, ताकि उनकी सर्जरी जो है की हो जाए। और सर्जरी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। डॉक्टर ने उसके मालिक को फिर कॉल किया और अच्छी खबर भी सुनाई, और कन्वर्सेशन के दौरान एम्प्लॉयर रिफर्ड टू द पेशेंट नॉट एज हिज ड्राइवर लेकिन एज अ कोलीग।
2: देयर इज सो स्वीट यार, यू नो ये एक चीज़ होती है जहाँ पर सर्टन टाइप ऑफ जॉब अगर लोग करते हैं स्पेशली फॉर समवन, तो उनको उस तरह से देखा नहीं जाता है और उनको ऐसे ही देखा जाता है कि तो यू नो रिप्लेसेबल है बेसिकली, उतनी वैल्यू नहीं ऐड करते, समथिंग लाइक दैट ना, उस तरीके से। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उनको एक तो इंसानियत के नाते अगर देखा जाए, दे नो कि समवन हु वर्क्स एज अ ड्राइवर तो उनकी इनकम उतनी नहीं होती है, उतना फंड फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो, बट इट्स नीडेड, द मेडिकल यू नो सर्जरी इज नीडेड। एंड ऑन द अदर हैंड रिस्पेक्ट भी दिया, पे भी किया, एंड इट्स सच अ स्वीट जेस्चर।
1: एम्प्लॉयर ने ये भी कहा कि वो 15 सालों से मेरे साथ है,
2: वाओ,
1: एंड मैं उसको एज अ ड्राइवर नहीं देखता हूँ, मैं काम करता हूँ वो काम करता है, बस फर्क इतना है कि निजी जिंदगी में हम लोगों का रोल अलग है,
2: अलग अलग है,
1: लेकिन हम दोनों साथ में काम करते हैं, उसका काम मुझसे अलग है, बट वी आर कॉलीग्स।
2: देयर इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम एज वेल। आज का सनी साइड अप स्टोरी डेफिनेटली मेड मी हैप्पी एंड आई होप कि आपके लिए भी कुछ पॉजिटिव वाइब इस स्टोरी ने छोड़े होंगे। कमिंग अप वेरी शॉर्टली आज के ग्लोबल हेडलाइंस।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao. Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
4: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.

0: બ્રાંચી ગ્રુપ ફ્રી ઇવેન્ટ ન્યુઝીલેન્ડ અને અરોહા ઓટોઝ સાથે મળીને પ્રસ્તુત કરે છે રાજગઢવી લાઈવ ઇન ઓકલેન્ડ. તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે, જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજગઢવી સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
1: Spending more time indoors this winter? Freshen up with the Rosine Winter Sale. 50% off test pots, 20% off Rosine interior paints. Shop online or in store. Ends 19 August. Rosine, the paint the professionals use. T's and C's apply.
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
2: Imagine winning $40 million this Saturday. Play in store or online.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: Global headlines.
7: सुबह के मुख्य समाचारों में, भारत में पेपर लीक्स पर हुए मैसिव प्रोटेस्ट के बीच गवर्नमेंट ने कदम उठाते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री के टॉप ब्यूरोक्रेट को रिप्लेस कर दिया है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी को उनके पद से हटाकर पंचायती राज मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया है. उनकी जगह 1994 बैच के ऑफिसर नरेश पाल गंगवार को नया एजुकेशन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, जो इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे. सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौती रेबल्स ने रेड सी में दो सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला करने का दावा किया है, जिसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ईरान पर हौती ग्रुप को उकसाने का आरोप लगाया है. इस रीजनल टेंशन और क्रूड ऑयल सप्लाई रुकने के डर से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 पे बैरल तक पहुंच गए हैं, जबकि यूएस हाउस ने बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के ईरान कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वोट किया है. फिजी में फिजियन होल्डिंग्स लिमिटेड के भूतपूर्व सीईओ नोजाब फरीद, जिन्हें अपनी एम्प्लॉई के साथ दो काउंट्स पर इंडिसेंट असोल्ट का दोषी पाया गया है, ने सेंटेंस से पहले फ्रेश बेल एप्लीकेशन दाखिल की है और उनका नेम सप्रेशन अब हटा दिया गया है. फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वलीन जॉर्ज ने फरीद को 2019 में दो अलग अलग इंसिडेंट्स में दोषी पाया है, जिसमें विक्टिम ने ऑफिशियल अपॉइंटमेंट और नौकरी के दौरान गले लगाने और नेक स्निफ करने जैसे अपराधों के सबूत दिए. इस केस में सेंटेंस हियरिंग अगले महीने की 12 तारीख को होगी. इससे पहले उन्हें एक और इंडिसेंट असोल्ट केस में भी कॉन्विक्शन मिला था, जिसे उन्होंने अपील करके अलाउ करवाया था. भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मैच कल रात खेला गया. इस मैच में जिम्बाब्वे ने 7 खिलाड़ी खोकर 125 रन बनाए. जवाब में भारत ने अपने इनिंग्स में 13.2 ओवर्स में 3 खिलाड़ी खोकर 126 रन बनाकर इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया है. और इस मैच में अगर देखें तो भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने हाफ सेंचुरी स्कोर किया था और उन्होंने ये 19 बॉल्स पर बनाया था. इसके अलावा श्रेयस अय्यर, जो कैप्टन हैं, उन्होंने 24 बॉल्स पर 28 रन बनाए थे. कॉमनवेल्थ गेम्स आज से शुरू हो चुका है और अभी तक कई मैचेस खेले जा चुके हैं. ऑफिशियल ओपनिंग और अन्य चीजों पर लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बारी बारी से हम लेकर आते रहेंगे.
4: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
8: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
9: मैं लाऊं अपना ए गेम.
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: सो बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, चलिए ये भी चेकआउट कर लेते हैं। अपेरेंटली अमाल मलिक तैयारी कर रहे हैं अपने अगले कॉम्पोजिशन रिलीज की। इनफैक्ट गाना रिलीज हो भी चुका है और आप हम पर सुन भी रहे हैं। एंड द सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट इज ये आवारापन। आवारापन 2 जो फिल्म आने वाली है ये उसका गाना है जो इन्होंने, आई थिंक यू कैन कॉल इट द टाइटल ट्रैक ऑब्वियसली, उसको इन्होंने कंपोज किया है। और अभी गाना रिलीज हुआ है, हाइप अप हो रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग इट। आप भी जब सुने इसे हम पर, तो आप भी अपना फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये गाना। बट टॉकिंग अबाउट द मूवी आवारापन, इसके बहुत सारे कमाल के गाने जो ये आए थे व्हेन इट इनिशियली रिलीज, आई थिंक 2002 में ये फिल्म आई थी, नहीं किसी भी साल में आई थी, आई ट्राई एंड फाइंड आउट। बट इमरान हाशमी ये इसी फिल्म में थे और इमरान हाशमी के साथ इस फिल्म में मेरे ख्याल से हु वाज द लीड एक्ट्रेस, आई थिंक इट वाज श्रिया सरन, हाँ श्रिया सरन, इन्होंने काम किया था। तो आवारापन के गाने वो एब्सोल्युटली लव, प्रीतम ने इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजिशन बेसिकली ये किया था। आवारापन 2 के गाने रिलीज हो चुके हैं, अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग इसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन अमाल मलिक हैज कम फॉरवर्ड एंड ही हैज गिवन अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट एंड ही सेड कि वो इस बात को मानते हैं कि आवारापन 2 को या जो इसके गाने को जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, ये दरअसल एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के थ्रू हो रही है फ्रॉम राइवल्स इन द फिल्म इंडस्ट्री।
1: ओके।
0: ऑल्दो उन्होंने कोई एविडेंस तो नहीं शेयर किया है फॉर हिज क्लेम, लेकिन एट दिस टाइम ही इज सेइंग कि आप ना अपने पैसे किसी और प्रोजेक्ट में लगाने को रेडी रहो। ही इज टॉकिंग अबाउट द पीपल जिन्होंने नेगेटिव पीआर के लिए पैसे वगैरह डालकर यू नो इसको डिफेम करने की कोशिश की है, इस पर्टिकुलर म्यूजिक एल्बम को। एंड इज आस्किंग फैंस टू जज द न्यू साउंड ट्रैक ऑन देयर ओन मेरिट्स रादर देन आप ओरिजिनल फिल्म के जो कंपोजिशन को कंपेयर कर मत कीजिए। एंड इट्स वेरी राइटली सेड, हाउ कैन यू कंपेयर समथिंग फ्रॉम 2007, क्योंकि उस जमाने में वो हिट था, वो चलता था, वो डिफरेंट टेस्ट था उस टाइम पे। अभी थिंग्स आर चेंजिंग, सो यू कांट कंपेयर द टू ईयर्स ना, तो वो एक चीज जरूर है। आई थिंक 19 ईयर्स तो हो ही चुके हैं आवारापन को आए हुए।
1: एग्जैक्टली। दूसरी तरफ ये जो वीकेंड है, आज से कई फिल्में रिलीज होने को हैं। श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल लीड रोल प्ले कर रहे हैं चेतन डीके की फिल्म द इंडिया स्टोरी में। ये फिल्म जो है इस अबाउट एक कंट्रोवर्सीज के बारे में है इन द वर्ल्ड ऑफ पेस्टिसाइड कंपनीज, और जो मेजर स्कैंडल्स उनसे एसोसिएटेड थे उनके बारे में ये फिल्म है। ये आज रिलीज होने को है। राजकुमार राव, कीर्ति सुरेश ये एक साथ आ रहे हैं फिल्म रफ्तार में, और ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये एक ड्रामा है बिजनेस रिलेटेड, जिसमें आई बिलीव वो तो कमाल का काम करेंगे ही। और साथ में इंद्रजाल, महेश निकम, शनाया त्रिपाठी इसमें काम कर रहे हैं, और महेश मंजरेकर आ रहे हैं कॉमेडी मूवी में जो आज रिलीज होने को है, खुशाली कुमार के साथ दुल्हनिया ले आएगी।
0: अच्छा, दुल्हनिया ले आएगी, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी हाउ दीज मूवीज टर्न आउट टू बी वंस दे रिलीज, ऑडियंस तक पहुंचती है तो इसे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। पर कमिंग अप वेरी शॉर्टली आज का हमारा पहला सवाल, ऑफ कोर्स इट्स अ बॉलीवुड रिलेटेड क्वेश्चन, सो तैयार रहिएगा इसके लिए।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो हम आ गए।
2: हम Accurate Traffic.
4: Spend a day in Mission Bay. Food, flicks, fun.
5: A cloudy day. Showers or rain from the afternoon. 16-hour high into the city. Not a drama whatsoever. We're really quick. Just slowing on the southern around Manurewa, but 22 minutes in from Mataco isn't a drama at all. Southwestern, very fast. Northwestern, just slowing close to the city. And northern, little patchy around Albany. But overall, motorways, roads and public transport, all fine.
4: New arrivals, familiar favourites. Iconic waterfront location. missionbay.co.nz.
6: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
7: Now I'm here.
6: Back here now.
7: Here I am.
6: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
8: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
9: Dash! When hard work calls from dawn's first light, Tianli Tractor Tires keep you rolling right. Premium performance at a price that's fair, with a comprehensive range for every job out there. For farmers and contractors tried and true, built for the tough demands you put them through. For value, grip and reliability all day and night, see your local dealer for Tianli Tires with a lifetime warranty. That's peace of mind done right. T's and C's apply. Tianli Ag Tires, lifetime warranty.
3: It's the final days of Big Save Stock Liquidation Whiteware Clearout. We're massively overstocked and everything must go. We've got washing machines, dryers, fridges and dishwashers from only $2.98. Get a Panasonic 7kg washing machine only $7.99. Or a Robinhood 197-litre fridge only $4.99. Plus, need it now? Take it home today. Only at Big Save.
10: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest FlowMate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
2: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Breakfast Catch-Up.
0: Let's hope कि आप सब तैयार हैं आज के हमारे पहले बॉलीवुड क्विज के लिए. और अभी हमने शुरू भी किया था इस हफ्ते पहले बेसिक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एकदम सिंपल सिंपल बट बहुत वेग डिस्क्रिप्शन आई विद से हम आपको देते हैं. यू हैव टू लिसन टू इट एंड आइडेंटिफाई किस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो आज का डिस्क्रिप्शन, अ फॉरेनर गेट्स अबडक्टेड बाय द लोकल गून्स एंड इज टेकन टू अ मेडिकल कॉलेज वेयर ही सडनली वेक्स अप एंड इज नाउ मिस्टेकन फॉर अ ghost. Like it's not a description but probably ek scene humne describe kiya hai from the movie.
1: Okay,
0: a very popular scene.
1: I have no idea.
0: Acha nahi, koi idea nahi hai.
1: Ha,
0: ek foreigner hai, kidnap ho jate hain.
1: Ha, wo to pata hai,
0: local gundo dwara.
1: Ha, medical college le jata
0: hai, medical college unko le jaya jata hai aur wahan par wo achanak se
1: भूत बन जाते हैं.
0: नहीं, भूत नहीं बन जाते, वो जाग जाते हैं.
1: हाँ,
0: और जो लोग उनको जब देखते हैं कि अरे ये है, तो उनको लगता है कि ये भूत है.
1: हाँ,
0: क्योंकि इनको ले जाया गया था उस मेडिकल कॉलेज तक कुछ और बोलकर, लाइक ही इज अ डेड बॉडी बेसिकली उस हिसाब से.
1: अच्छा अच्छा. हाँ, तो लोगों का लगा कि ये तो
0: डेड बॉडी है. हाँ, अब डेड बॉडी उठ के कैसे बैठ गई,
1: डेड बॉडी उठा भूत हो गया.
0: हाँ, तो ये एक बेसिक सीन का एक डिस्क्रिप्शन है और ऑफ अ वेरी पॉपुलर फिल्म. लेट्स सी क्या आपने पता किया ये कौन सी फिल्म है. अगर आपको पता है तो हमारे पास जवाब भेजे. BF लिखे सबसे पहले, फिर अपना आंसर और अपना नाम लिखकर 5599 पर आपको हमारे पास सेंड करना है. रिमेंबर, the description is a foreigner gets abducted by the local goons and is taken to a medical college where he suddenly wakes up and is now mistaken for a ghost.
1: So BF apna answer aur naam 5599 par aap hame bheje.

से PMI। कुछ लोगों ने अपने जवाब बड़ी तेजी से हमारे पास भेज दिया है, लेकिन अब उससे पहले गुड मॉर्निंग के आपके मैसेजेस वो भी देख लेते हैं। राम राम, जय माता दी, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, हैव अ गुड डे मिस्टर माता माता, गुड मॉर्निंग टू ऑल, विश यू आर ब्लेस्ड एंड अ वंडरफुल डे, विमलेश एंड प्रिया, विनीता, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे आपने कहा है। गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, हैप्पी फ्राइडे एंड हैव एन ऑसम वीकेंड, ढेर सारा प्यार, जय श्री, जया है, हाँ गुड मॉर्निंग आपको। उसके अलावा गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैप्पी फ्राइडे, होप यू गाइस हैव अ फैंटेस्टिक डे एंड अ ग्रेट वीकेंड। कोमल, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आप सभी को भी इस दिन और इस वीकेंड की बहुत सारी शुभकामनाएं। आंसर्स की ओर अगर देखें तो अभी तक दिवनेश आपका जो जवाब है ये आया है, और उसके साथ गुंजन और सनी आप लोगों ने अपने आंसर्स जो है ये भेजे हैं। आप भी कोशिश करें, देखें क्या आपने फिल्म को आइडेंटिफाई किया है या नहीं। बी एफ आंसर और

12 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में और रोनल हैं, सनी हैं, वानी हैं, आपके भी आंसर्स आए हैं. थैंक यू सो मच परमा महाराज जी, आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. तो थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आज कौन सी फिल्म है इसका अनुमान आपको लगाना है और अपना जवाब 5599 पर हमारे पास भेजना है. अभी तक कुछ सही कुछ गलत आंसर्स आए हैं.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Switch to AMI car insurance.
2: A high of 16, mostly cloudy today and getting wet from the afternoon. Coming into the city, motorways are still absolutely flying into the CBD. At Northern, just 16 minutes, Constellation Drive to town, 32 minutes in from Silverdale, maybe slowing down a bit around Albany. Northwestern speedy, just a bit slow close to the CBD. And Southern, fine, just slowing at Manurewa and Remuera.
1: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
3: Winger Motors.

0: चीज चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम रेंज कम फ्यूल बिना फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किए विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन मानुको और पोकेकोई या winger.co.nz ऑफर 31 जुलाई तक टीज एंड सीज अप्लाई
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
3: डिब्बा खुल गया
4: भरत भाई टिफिन खुल गयो छे संजना का डिब्बा खुल गया
5: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
4: डिब्बा खुल गया
5: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
6: Throwback.
8: थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में अगले घंटे आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे भी विश करना है अगर आपने अपने मैसेजेस नहीं भेजे हैं तो 5599 पर अपने मैसेजेस समय से पहले प्लीज हमें जरूर भेज दें
9: सवाल भी हमने आपसे किया है रिमेम्बर हमने आपको एक बहुत पॉपुलर फिल्म का एक सीन का डिस्क्रिप्शन बताया है और उसके बेसिस पर आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सी फिल्म है और जवाब अपना हमारे पास आपको सेंड करना है 5599 पर तो द डिस्क्रिप्शन इज कि एक फॉरेनर है ये किडनैप हो जाते हैं लोकल गुंडों द्वारा और फिर उन्हें एक मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है जहाँ पर वो अचानक से जाग कर उठ बैठते हैं और जब वो वहाँ पर उठते हैं मतलब जागते हैं तो लोगों को थोड़ा डाउट हो जाता है ये मिस्टेक कर लेते कि एक भूत है बिकॉज उनको ले जाया गया आफ्टर किडनैपिंग टू दिस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज आइडेंटिफाइंग एज अ डेड बॉडी तो कौन सी फिल्म है इफ़ यू हैव द आंसर अब आप हमारे पास ज़रूर भेजिएगा बिकॉज कुछ ही मिनट बाकी हैं आफ्टर दैट विल रिवील द करेक्ट आंसर 5599 पर BF लिखना है आपको सबसे पहले फिर आंसर फिर नाम और हमारे पास भेज देना है
8: फिलहाल ये भी याद रखें कि आज फ्राइडे हो गया कल रात द ट्रस्ट अरीना जो है ये खचाखच भरा रहेगा लोगों से क्योंकि उस्ताद राहत फतेह अली खान ये परफॉर्म करेंगे और इनका बहुत ही शानदार जानदार परफॉर्मेंस जेके स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और कल तक मुझे पता है 300 टिकट्स जो है ये बाकी थे अभी का तो पता नहीं
9: हमें पता अभी हमें पता करना पड़ेगा एंड इफ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट तो आपका हो गया नुकसान बट अगर नहीं देन यू कैन डेफिनेटली विजिट drytickets.com एंड ग्रैब योर टिकट्स एट द अर्लीस्ट
8: यस नो एक्स्ट्रा शोज नो सेकंड चांस अभी आप वेट नहीं कर सकते ग्रैब योर टिकट्स नाउ इफ यू स्टिल हैवंट

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning Madness. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
3: 7 बज चुके हैं. उम्मीद है कि आप अभी भी हमारे साथ बने हुए. इफ यू जॉइंड अस लास्ट आवर एंड इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस नाउ, मॉर्निंग मैडनेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम या रोवर ऐप पर अगर आप हमें सुन रहे हैं. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो.
4: इस घंटे आपको एक बहुत ही शानदार इनाम जीतने का मौका जो है कि हम देने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. उसके अलावा 7:30 न्यूज हेडलाइंस ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे.
3: सो इसके लिए तो तैयार रहना ही रहना है. टॉकिंग अबाउट आज का दिन कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू योर राशि यानी आपके हॉरोस्कोप्स, राशि वाइब्स में आप पता कर सकते हैं जो कि बस थोड़ी देर बाद आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं. बट बिफोर वी डू ऑल दैट और बिफोर वी मूव ऑन विद ऑल दिस, हमने आपसे पिछले घंटे सवाल भी पूछा था. कई लोगों ने अपने आंसर्स भी भेजे, कुछ सही तो लाइक ऑलवेज कुछ गलत आंसर्स भी आए. पर अब समय है जो करेक्ट आंसर ये रिवील करने का. तो हमने आपसे कहा था कि एक फॉरेनर है जो अबडक्ट हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं बाय द लोकल गून्स, गुंडों के द्वारा, और उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है ये बोलते हुए कि इट्स अ डेड बॉडी. और जब वहां पर ये उठकर बैठते हैं तो लोग डर जाते कि अरे ये तो भूत है. तो कौन सी ये फिल्म हो सकती है? एक बहुत पॉपुलर सीन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मूवी एंड दैट्स हाउ यू हैड टू आइडेंटिफाई द मूवी. सो द करेक्ट आंसर इज मुन्ना भाई MBBS. 2003 में ये फिल्म आई थी. सो हाँ,
4: किसको लेकर गए थे बॉडी में? अरे मेडिकल कॉलेज
3: जो इंट्रो सीन नहीं है बट ऐसे थोड़ा जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं मुन्ना भाई तो वो सर्किट को फोन करके बोलते हैं ना मेरे को डेड बॉडी चाहिए.
4: ओ हाँ हाँ हाँ.
3: तो एक फॉरेनर को लेकर
4: बस्ते में भर के
3: हाँ उसको बोलते हैं यू वांट टू सी हंग्री पीपल पुअर पीपल, हाँ एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं.
4: Yes, yes,
3: so
4: yes.
3: It was a very funny scene, a bit racist at the same time, but थोड़ा funny था. But वो आप जरूर जाकर देख सकते हैं अगर आपने फिल्म नहीं देखी है. A very interesting movie at this, like it's filled with all sorts of emotions. Funny भी है, drama भी है, थोड़ा बहुत sadness भी है. You know, you can experience a lot of things in this movie. So 2003 में आई थी मुन्ना भाई MBBS. That's the movie we were talking about today, and that's the correct answer.
4: So thank you so much आप सभी के आंसर्स के लिए. और इस घंटे और भी कई दिलचस्प बातें जरूर होंगी थोड़ी देर बाद. Your Rashi Vibes.

0: राशि वाइब्स।
1: तो चलिए आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स, आपके राशि वाइब्स में ये जान लेते हैं।
2: सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आप किसी तरह के फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है हो सके मिड डे से पहले ना करें तो अच्छा होगा। आज झगड़ा झंझट आर्गुमेंट से दूर रहें, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें और सिंपल होम कुक मील जो है ये आज आपके लिए बढ़िया होगा रादर देन ईटिंग आउट। और शाम को हो सके तो जस्ट हैव अ क्वाइट चिल्ड इवनिंग एट होम।
1: वैसे वृषिनी टॉरस के लिए आज बताया गया है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है इनके पास कुछ बहुत ज़रूरी है आपके साथ शेयर करने के लिए, तो इसीलिए ध्यान से उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझे। और आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज का दिन आपके लिए कॉपरेट करना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन आप अगर चाहते कि सब कुछ आप खुद ब खुद ही करें, सब कुछ खुद ही मैनेज करें, दैट माइट नॉट वर्क आउट फॉर यू। सो इफ़ यू कॉपरेट विद योर लव्ड वंस और विद योर कलीग्स टू गेट अ गुड रिजल्ट, ये आपके लिए पॉसिबल है। एंड ऑल्सो बहुत अच्छा दिन माना गया है आज आपके लिए जहाँ पर आप अपने पुरानी जो गलत फहमियाँ हैं इन्हें सॉर्ट आउट करते अपने रिश्ते पर काम अगर कर सकें तो।
2: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज आपको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन ऑफिस, साथ ही में ऑफिस में अगर कोई यू नो ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है तो आज उससे भी आप छुटकारा पा लेंगे। आप हेल्थ जो है आपका बहुत बढ़िया रहेगा और अगर आपको किसी को पैसे चुकाने हैं या फिर किसी से पैसे लेने हैं तो मेक श्योर यू गेट इट डन टुडे।
1: वैसे कैंसर करके ने कैंसरियंस आपके लिए कहा गया है कि घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं या यंग फैमिली मेंबर्स हैं वो शायद आज आपका ध्यान आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ही मांगेंगे। दे विल टेस्ट योर पेशेंस टुडे। और आज का दिन इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, मतलब अ गुड डे अ ग्रेट डे इनफैक्ट प्लानिंग करने के लिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इस पर काम करने के लिए और साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप पर भी आज आप काम कर सकते हैं अपना।
2: सिंह यानी लियो, आज आपका फोकस जो है ये आपके घर पर होना चाहिए। इवन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो भी अपना ध्यान जो है अपने घर से ना हटाएं, हो सके तो यू नो अपनी माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, फिक्स अप योर लिविंग स्पेस। अगर कुछ अनईजी फील कर रहे हैं तो ख्याल रखें कि ये टेम्प्ररी है और ये गुजर जाएगा। और यू नो आज कोई ज़रूरी डिसीशन जल्दबाजी में ना ले।
1: कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए बताया गया है कि आज का दिन बहुत ही बिजी रहने वाला है। यू'd बी बिजी विद मीटिंग्स, विद फोन कॉल्स, विद यू नो कैचिंग अप विद अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स एज वेल। सो आज आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए लुक आफ्टर योर सेल्फ। आपके जो सिबलिंग्स हैं या फिर कुछ बहुत ही करीबी लोग हैं दे विल एक्चुअली रीच आउट टू यू एज वेल आपके एडवाइस के लिए और दे विल टेक अप गुड अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल आज के इस दिन। सो मेक श्योर आप अपने दिन को अच्छे से प्लान करें ताकि समय की बर्बादी ना हो और नुकसान ना हो आपका।
2: तुला यानी लिब्रा, आज आपके लिए कहा गया है कि अपनी जुबान पर काबू रखना बहुत ही जरूरी होगा वरना अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं। और उसके अलावा आज अपने घर के बजट का भी आप ख्याल रखें वरना थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। इम्पल्सिव बाइंग जो है ये ना करें और आज फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने का मौका मिलेगा।
1: वैसे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए बताया गया है कि आज अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, उन्हें ओन करने का दिन है। यू माइट फील हाईली सेंसिटिव आज वट बेसिकली लोग कहेंगे आपको, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली ना ले, अपने पर्सनल वेलबींग पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा आज आपके लिए कहा गया है।
2: धन यानी सेजिटेरियस, आज आप थोड़ा शायद लो फील करेंगे, इसका मतलब ये है कि आज थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, रेस्ट कर लें, आराम कर लें। कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो है ये सामने आएंगे तो अपने वॉलेट पर खास ध्यान बनाए रखें। कोई नया प्रोजेक्ट जो है ये ना शुरू करें, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ना शुरू करें आज आपके लिए तो बेहतर होगा।
1: मकर यानी कैप्रिकॉन, आपके लिए कहा गया है कि आज कुछ बहुत अच्छी खबर मिल सकती है आपको। इनफैक्ट इट्स अ गुड डे जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, खास तौर पर आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और फाइनेंशियल ग्रोथ जो है ये भी आज आप देख सकते हैं अपने लिए, ऐसा आपके लिए कहा गया है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान लेगा, आपसे बहुत डिमांड करेगा क्योंकि आपको काम की बहुत ज़रूरत होगी या काम पूरा करने की बहुत ज़रूरत होगी एंड वो भी अपने टाइम पर। इसके अलावा अपनी निजी ज़िंदगी अपने प्रोफेशनल लाइफ को जहाँ तक हो सके आप अलग रखें। आपका हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आज आपका जो काम है ये आप समय पर पूरा करें।
1: और आखिर में मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि गुड लक, आज आपको काफी ज्यादा मिलेगा एक्सपीरियंस करने को और आज का दिन बहुत अच्छा है. अगर कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स पर आप काम करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, आज के इस दिन को भरपूर इस्तेमाल कीजिए. कुछ रिश्ते हैं आपकी जिंदगी में जो बहुत वैल्यू करते हैं आप जिन्हें, जैसे कि आपका और आपके पिता का रिश्ता, इन्हें आज और भी मजबूत बनाने का मौका आपको जरूर मिलेगा. तो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे. तैयार रहिएगा थोड़ी देर बाद आज का सेलिब्रिटी अलार्म.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ.
0: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.

0: Idea.
1: Streaming on Rover.
2: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
3: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: My Titan Club members, ye aapke liye. Is July, shop kijiye aur scan kijiye apna club card and you're in the draw to win 10,000 air points plus weekly air points prizes bhi. T's and C's apply. Get amongst it at My Titan Mega Westgate or Henderson.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsarras, Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Celebrity Alarm.
8: Hit it.
9: तो चलिए, हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए हम लेकर आएंगे।
10: तैयार हैं, आज इंटरेस्टिंग होगा।
9: ओके, लेट्स सी आप में से कितने लोग आज के हमारे सेलिब्रिटी को पहचानते हैं या पहचान पाते हैं। और आफ्टर द रिजल्ट टुडे वी'ल सी हाउ इट गोज। और क्या यही आवाज कल एक बार फिर आपके लिए, कल नहीं मंडे को फिर आपके लिए रहेगी या नहीं। बट वी'ल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट नॉट नाउ, बट पहले सुनते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी की आवाज फॉर सेलिब्रिटी अलार्म।
11: Real food, you know, I try to eat things that's real, you know, with less ingredients as possible. You got so much processed things in this world right now, so I think that's the thing, to eat real and quality, of course, the best.
9: तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म की आवाज़, मतलब सेलिब्रिटी की आवाज़ इन सेलिब्रिटी अलार्म। बट डोंट रियली नो कितने लोग इनको पहचान पाएंगे यार, आई डोंट नो।
10: अभी ये बहुत गर्म है, is hot
9: is hot garam
10: ye kafi popular bhi hai
9: to ye garam the isliye aapne hathoda maar diya
10: ha to jo log shayad inko nahi bhi jante the wo shayad abhi aasani se pehchan le
9: janne lagenge
10: ha
9: matlab itna jante hain
10: jaan chuke honge already
9: matlab itna jaan chuke hain ki inki awaz bhi pehchan lenge
10: ha pehchan lenge shayad suna do ek baar
9: phir theek hai ek baar phir se sunate hain aur dekhte hain ki text platform par kya anjaam hota hai na tabhi to pata chalega ki kitna jaan chuke hain log inko
11: Real food, you know, I try to eat things that's real, you know, with less ingredients as possible. You got so much processed things in this world right now, so I think that's the thing, to eat real and quality, of course. The better food you put it.
9: तो ये कौन है? अगर आपने इनकी आवाज पहचान ली है, हमारे पास अपना जवाब आपको सेंड करना है on 5599 BF लिखे सबसे पहले, फिर अपना आंसर और भेज दीजिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप में से क्या किसी ने इनकी आवाज पहचानी है या नहीं।
1: Most wanted.
12: Gundi khad gao. Ya seedha andar aao.
13: Main laun apna A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में खबर आ रही है कि वेस्ट ऑकलैंड में घटी एक घटना के बाद पुलिस काफी सक्रिय रूप से कई चीजों को लेकर काम कर रही है। पुलिस एक महिला की तलाश में लगी हुई थी और इस तलाश के चलते पुलिस को एक शव जो है ये मिला है, जिसको लेकर अब और तहकीकात जो है ये की जा रही है। ऑकलैंड पुलिस को वेस्ट ऑकलैंड के स्वानसन एरिया से एक बॉडी मिली है, जहां वो पिछले कुछ दिनों से 20 साल की इस महिला की तलाश कर रही थी। हालांकि अभी तक फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन इस महिला को आखिरी बार 17 जुलाई को स्वानसन के बेडवुड रोड पर पैदल चलते हुए देखा गया था। न्यूजीलैंड फेस्ट ने नेपिया सीट पर स्टुअर्ट नैश की जगह सिटिंग सिटी काउंसिलर टेकीरा लॉरेंस को अपना नया कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, जो अब नवंबर इलेक्शन में नेशनल की केटी नायमन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। पहले ईस्ट केप सीट से सिलेक्ट हुई लॉरेंस अभी एनजेड फेस्ट लीडर के ऑफिस में आउटरीच एडवाइजर के रूप में काम करती हैं और पिछले साल ही नेपियर सिटी काउंसिल में इलेक्ट हुई है। स्पोर्ट्स में अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला मैच जो है ये जीत लिया है। बॉलिंग में शैनन मैकलरॉय की जीत टोंगा के खिलाफ हुई। इसके अलावा और मैचेस भी खेले जा रहे हैं, जिन पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो आ गए।
2: Accurate traffic.
4: Shower dome, shower tops.
5: Cloudy most of the day and wet from the afternoon. Got a high of 16 degrees. No issues driving into the city for sure. Southern motorway, slowest patches are East Tāmaki to Mount Wellington. It's pretty quick overall. Maybe a bit slow at Remuera. 25 minutes Manukau to the CBD. Northwestern 21 in from Massey. Slow at St. Luke's, then Greyland to the city. Northern 20 in from Constellation. Slow Esmond to Oniwa.
4: Eliminate shower steam by simply fitting a shower dome. Showerdome.co.nz.
6: Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
7: TradeDepot.co.nz.
8: Freedom's flash sale is on now. Get 25% off store-wide. Shop sofas, furniture, outdoor mattresses and homewares and get 25% off. Hurry, sale ends Monday. Only at Freedom.
9: Whatever your morning looks like, own it with Up & Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave. Battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
10: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
11: Lots.
10: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
11: Probably.
10: Am I paying for this free coffee?
11: Definitely.
10: Will they talk me into an upgrade?
11: Oh.
10: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
12: True Midas.
13: It's double points week with Everyday Rewards. Boost, spend and scan your Everyday Rewards card at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas and Milk Run by Sunday 2nd of August to get 2x points on your total spend. See everydayrewards.co.nz for T's and C's.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: Birthday greetings.
16: Iska birthday bhai?
17: Mera birthday hai, chalo line mein aa jao.
18: Happy birthday to you.
1: दिन आज का आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं। सबसे पहले यतीश वधेरा जी हैं हिल्सबरे में, आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज खुशी के इस मौके पर आपके सभी परिवार वालों की ओर से शुभकामनाएं और बधाइयां मिली है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको। वर्षा कुलकर्णी लिनफील्ड में, आपको भी इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह से दूर और करीब सभी जगह से आपके चाहने वालों के संदेश आपके लिए आ रहे हैं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और पुके कोही में आज उपेंद्र सकलानी जी हैं, आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी के इस मौके पर तमाम परिवार वालों ने आज आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना की है। हम की पूरी टीम की ओर से भी आपको ये खास दिन अनेकों बार शुभ और मुबारक हो। आपके साथ आज स्पेशल डे पर और भी जितने लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, आपको इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हम दे रहे हैं।
0: मॉर्निंग मैडनेस। तो आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म है, इसका हाल हम देख रहे थे, एंड आई मस्ट से कि आपने जो बोला था उसका एकदम अभी ऑपोजिट चल रहा है। एज इन लोग शायद इनको बाय फेस जानते होंगे, शायद आवाज में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ रॉन्ग आंसर्स। हमारे पास राहुल का मैसेज आया है, साथ में जैन ने मैसेज किया है, रवनील ने मैसेज किया, शानिया का मैसेज आया है, पूर्वी का मैसेज आया, अश्नील का मैसेज आया है। इन सभी ने हमारे पास कुछ अलग ही आंसर भेजा है, तो आई मीन जो हमारा जवाब है वो नहीं भेजा है। तो आई एम थिंकिंग लाइक कि शायद लोग इनको यू नो फेस से ज्यादा पहचानते, आवाज से नहीं।
1: ओके, तो आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम हम आपको और देते हैं।
0: इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं, लोगों ने गॉर्डन रैम्सी का नाम भी लिखकर भेजा, बट वो नहीं है, इट्स नॉट गॉर्डन रैम्सी। आप क्या कीजिए, आप एक बार फिर से सुनिए और फिर अपना आंसर भेज सकते हैं ना।
7: या real food, you know, I try to eat things that's real, you know, with less ingredients as possible. You got so much processed things in this world right now, so I think that's the thing, to eat real and quality, of course.
0: बहुत अच्छा एडवाइस भी दे रहे हैं वैसे के, लेकिन कौन है ये? गॉर्डन रैम्सी नहीं है, इतना आपको बता दे। आपको आइडेंटिफाई करना है इनकी
1: आवाज। He's
0: not a chef. Yeah, that would be a better thing to say. तो कौन है ये? 5599 पर भेजना है BF space answer your name. I think another 4-5 minutes है आपके पास, जिसके बाद we'll reveal the answer. But before that, before we move on, एक खबर जो ये सामने आई है, Daily Mail ने इसे रिपोर्ट किया है। Apparently एक व्यक्ति है, एक शख्स है, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है फ्रॉम 2045 into 2026. और उन्होंने कहा है
1: पीछे आए हैं।
0: हाँ, फ्यूचर से आए हैं वो।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो फ्यूचर से आए हैं और उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस किए हैं कि भी फ्यूचर में जाकर ये सारी चीजें होंगी। तो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड विल गेन डेफिनेट प्रूफ कि एलियंस जो है ये होते हैं, एलियंस डू एग्जिस्ट, और पैसा ही पैसा होगा मतलब इतना सारा कैश होगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। कैश विल पैसा नहीं होगा। इन्होंने कहा कैश विल बी एक्सटिंक्ट, पैसा खत्म हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा, कैशलेस,
0: कैशलेस दुनिया हो जाएगी। अभी ऑलरेडी ना पीपल आर यूजिंग कार्ड, बट द वैल्यू इज स्टिल देयर ना, हर चीज का पैसे से एक वैल्यू तो जुड़ा ही है। बट एनीवेज, तो कैश विल बी एक्सटिंक्ट, ये उन्होंने कहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, US विल नो लॉन्गर बी अ कंट्री, ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया है।
1: अच्छा, 2045 में US won't be a country?
0: नहीं, इन्होंने कहा है US will no longer be a country within the next 4 years, 4 सालों में।
1: अरे
0: इनके इनके इनके बारे में बताया गया कि इनका नाम है एडम आर्चन, और ये एक मिस्टीरियस मैन है जिन्होंने ये सारे क्लेम्स किए हैं। इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी टू ट्रेवल इन टाइम विल बिकम पब्लिकली एक्सेसिबल अभी से 2 सालों में, यानी 2028 में। और द सेम या इन्होंने ये भी कहा है कि जो एलियंस की बातें हम कर रहे थे, दे विल लैंड ऑन अर्थ, और वो जो गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड सीक्रेसी बनाए रखे हैं, किस तरह से वो सीक्रेट्स बनाते हैं कि ये नहीं है ये नहीं है, वो सब पर्दाफाश कर देंगे उनका।
1: अच्छा।
0: वो सीक्रेसी खत्म कर देंगे, डेकेड्स ऑफ सीक्रेसी खत्म हो जाएगी।
1: पर बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड दिया उन्होंने ना, अमेरिका 4 सालों में नहीं रहेगा।
0: मुझे को पता है सरप्राइजिंग चीज क्या लग रही है
1: ना?
0: इन्होंने ये कहा है, ही वॉज बोर्न ऑन 6th December 2019 विदाउट एनी प्रूफ। उन्होंने रिकॉर्ड किया है अपना ये सपोज्ड नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, और आई थिंक 2019 मार्च महीने में उन्होंने ये वीडियो जो है कि रिलीज किया था। बट ये रिसेंटली ऑनलाइन में अभी ज़्यादा, अभी मतलब ऑनलाइन में, ऑनलाइन ज़्यादा पब्लिकली लोगों को एक्सेसिबल हुआ है, लोगों ने इसे देखना शुरू किया है। एंड आई एम जस्ट क्वाइट इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि यार ये इतना इन्होंने बोला है एडम आर्चन ने, कहीं ये सच में तो नहीं हो गया लाइक सच में हो गया तो
1: नहीं, नहीं, नहीं बस इनके फॉलोअर्स और वो सारे बढ़ गए होंगे
0: हाँ बट अभी भी मिस्टीरियस है ये एनीवेज हाँ बोलिएगा मत स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अभी हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं लेकिन हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए कंपटीशन इज स्टिल ऑन यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेलिब्रिटी फॉर टुडे

0: उस्ताद राहत फतेह अली खान को आप सुन रहे थे इस प्रोग्राम में, जो कल रहेंगे द ट्रस्ट एरिना में, और इनका परफॉर्मेंस जो है आपको देखने का मौका मिलेगा। अगर टिकट्स आपने अभी तक नहीं लिए हैं, dryticket.com विजिट करते हुए जल्द से जल्द अपने टिकट्स आप ले लें। अभी 7:45 बज रहे हैं, समय देख लें अपना। और आज का जो हमारा सेलिब्रिटी अलार्म है, हमने नहीं सोचा था कि इतनी बुरी तरह से ये पिटेगा, क्योंकि दो ही लोगों ने सही जवाब जो है ये हमारे पास भेजा है। इनफैक्ट कोशिश चार ही लोगों ने की है आज, और उनमें से दो का सही दो का गलत जवाब आया है। रवि, आपने कहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है। किसी और ने 5225 नोवाक जोकोविच आपने कहा है, वो भी नहीं है ये। और इसके अलावा अंशु हैं, और साथ में शैलेश हैं, और एक और सही जवाब है 3028, आपने भी करेक्ट आंसर जो हमारे पास भेजा। ये जो आवाज़ थी आज के हमारे जो सेलिब्रिटी थे, नॉर्वे के सॉकर प्लेयर अर्लिंग हालैंड, और ये अभी फीफा वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। जिन लोगों को इनके बारे में शायद उतना पता नहीं भी था, वो भी इनको अच्छी तरह से जान गए, तो आज उनकी आवाज़ हम आपके लिए लेकर आए थे। तो कुछ सही जवाब हमारे पास आ गए हैं, इसीलिए अब नेक्स्ट वीक मंडे को एक नए सेलिब्रिटी की आवाज़ जो है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फिलहाल किसी ने जानना चाहा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में जो गाना था वो किसकी सौजन्य से हमने आपके लिए पेश किया, तो इट वॉज NZPMI, पी फॉर पापा, BMI नहीं बल्कि P है। एंड होपफुली अब आपको ये सपोर्ट मिल गया होगा या आपको पता चल गया होगा NZPMI। 13 मिनट रह गए हैं 8 बजने में इनाम जीतने के, कुछ और भी बहुत ही लाजवाब मौके ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम आपको देते रहेंगे अगले घंटे। आज का हमारा व्हाट्स योर टेक भी रहेगा, तो इस के लिए भी आज आपको तैयार रहना है इस प्रोग्राम में। फिलहाल कुछ देर बाद आज का हमारा अगला थ्रोबैक भी हम आपकी खातिर इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे।
1: Mornings made better.
2: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: BYD South Auckland now open.
5: Cloudy all day today. Showers or rain in the afternoon. 16-hour high. Decent drive into the city all morning so far. Very quick everywhere. Northern just 20 minutes in from Constellation Drive to the CBD. We're slow Esmond to Oniwa. That's about it. Northwestern 21 minutes in from Massey. Slow patches from St. Luke's to the CBD. And Southern 25 in from Manukau. Very fast too. Slow patches East Tāmaki to Mount Wellington.
4: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Manukau Supersite on Great South Road.
6: Keen to score 15 cents per litre off your fuel? From Friday to Sunday, scan your Club Plus card when you spend $100 at Pack and Save, New World or Foursquare. That's some smart shopping. T's and C's and exclusions apply.
7: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
8: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
7: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
8: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
9: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आप

0: को भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
2: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
3: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: Throwback.
5: थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट। अगले घंटे व्हाट्सएप टेक में भी हिस्सा लेने का मौका हम आपको देंगे, बट राइट नाउ अपॉर्चुनिटी, हमने कहा था कि आपको एक बहुत ही शानदार इनाम जीतने का मौका हम देंगे, क्योंकि करण औजला ला रहे हैं अपना पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर ऑकलैंड। 25th of August को स्पार्क एरिना में ये परफॉर्म करेंगे। अकेले नहीं होंगे, इक्की भी एज अ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ, जिसके लिए टिकट्स और अन्य जानकारियों की खातिर हम rover.nz आप विजिट करें या livenation.co.nz, यहां से आप टिकट्स और डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम पर आपको एक डबल पास जीतने का मौका हम दे रहे हैं,
6: तो ये बहुत आसान है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अपनी किस्मत आजमानी की क्या आप ये डबल पास जीत पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको एक मैसेज भेजना है हमारे पास। और आपका जो मैसेज हमारे पास आएगा, इट्स बेसिकली यू टेलिंग अस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन विनिंग द पास एंड विल पुट योर नेम इन द ड्रॉ। मैसेज कैसे भेजना है, सबसे पहले आपको लिखना है के ए यानी करण औजला, इनके नाम का शॉर्ट फॉर्म के फॉर करण, ए फॉर औजला, के ए लिखे फिर अपना नाम लिखे और हमारे पास 5599 पर आप सेंड कर दें। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स जितने लोगों की एंट्रीज आएंगी उनका नाम हम ड्रॉ में शामिल करेंगे और फिर उनमें से किसी एक को एक डबल पास जीतने का मौका जो है ये मिलेगा जब ड्रॉ होगा। तो मौका आपके पास है, अपनी अपनी एंट्रीज हमारे पास सेंड कीजिए एंड इफ यू आर द विनर यू विल गेट टू विटनेस नन अदर देन द ग्लोबल सेंसेशन द करण औजला इनके पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के तहत। बट इफ यू गॉट अ बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु विश टू अटेंड द इवेंट, तो आप अपने टिकट समय पर जरूर ले लीजिएगा, बिकॉज दिस इज हैपनिंग नेक्स्ट मंथ 25th of August को। हम rover.nz एंड livenation.co.nz ये आप विजिट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए एंड टिकट्स ग्रैब करने के लिए भी।

0: accurate traffic.
1: KFC's Gimme 5.
2: A high of 16, a cloudy day with showers of rain from the afternoon. Well, I almost haven't needed to do traffic reports this morning because motorways and roads have been really calm. Southern, slowest of a very quick bunch of motorways. 27 minutes Manukau to the city. Got slow patches east Tāmaki to Remuera. Northwestern, 21 in from Massey. We're slow from Grey Lynn. And northern, just slow around Esmond, 20 in from Constellation Drive.
1: 5 pieces of secret recipe chicken plus chips for $11.99. Conditions apply.
3: Woolworths has savings in every aisle. Our fresh whole chicken, 1.9 kg, $12.90 each. Or Tegel takeout strips or nuggets, 500 gram to 1 kg, just $9.80 each. Woolworths weekly specials. Now that feels good. T's and C's apply.
4: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their 3 Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
5: So, you and the boys have that mildly inappropriate, actually very inappropriate group chat. Maybe it's time to balance it out with a more appropriate group, like Blood Buddies, a group that donates blood and plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever. Yours could save lots of lives. No joke, it gives you that warm feeling inside. And you get free biscuits. The boys love biscuits. Get your Blood Buddies together and book now at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma, save lives.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
9: क्यों? क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
10: टाइम चेक.
11: गुड मॉर्निंग, समय ठीक 8 बज रहे हैं.
10: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. The man who killed Nelson police officer Lynn Fleming will be sentenced today. Hayden Tasker was found guilty of several offences, including murder, after driving his car at police on New Year's Day 2025. Fleming was the country's first female officer to be killed in the line of duty. Heavy rain has swamped parts of Greymouth on the west coast. Some homes have been flooded, roads are impassable, and State Highway 7 towards Stillwater is closed. There are reports of a tree down on Taylorville Road. Met Service warns more heavy rain is on the way. A grim report is shining light on the country's national shame around child poverty. The latest figures show it has reached a 10-year high. Outgoing Children's Commissioner Claire Ahmed says that they are excluded from regular society.
13: We do not want to be a country where that is the case for 170,000 of our children. We've actually got enough to go around in New Zealand.
12: The EU has fined Google $1 billion for illegally undercutting competition. Regulators say the search engine unfairly boosts its own services, putting it at the top of the page while relegating rivals. The ruling is likely to infuriate President Trump, who has in the past threatened to hike trade tariffs. To sport, Ryan Fox has arrived home with the claret jug. He touched down at Auckland Airport this morning after winning the Open Championship on Monday. Fox told reporters it's great to be back.
14: We made kind of a little bit of a last minute decision to come home and celebrate with friends and family while it's still fresh.
12: And to rugby league with Machinery House in a league of their own, an ugly 24-18 win for the Panthers over the Eels in the NRL last night.
10: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari good brands nahi hai.
10: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: 10.8 degrees temperature, Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 16, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज होने वाला है। आज बदली रहेगी और बाद में शाम से बारिश शुरू हो जाएगी। गंभीर बारिश भी रहकर हो सकती है और आज का सनसेट जो है ये 5:31 PM पर होगा।
10: विद वीजे एंड पूजा
7: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग।
10: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
0: Good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए The Breakfast Show with Vijay and Pooja हम लेकर आ रहे हैं और शुरू हो चुका है हमारा आज के Breakfast Show का ये सफर, which we call The Rush Hour.
11: नरशावा में सबसे पहले ट्रेन पेट्रोल। आज आइए हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते इंडिया में कौन कौन सी अलग सी चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया।
0: ओके।
11: उनमें से एक है आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट विच बैट इज इजियर टू यूज अगेंस्ट स्पिन द लाइट वन और द हैवी वन।
0: ये क्रिकेट के बैट के बारे में बोल रहे हैं।
11: हाँ।
0: अच्छा ओके।
11: 3000% से ज्यादा लोगों ने ये जो सर्च है ये किया है इसके बारे में। और फिर उसके बाद अगर देखें और कौन कौन सी चीजें जो हैं जो सर्च की गई हैं, दूसरी जो चीज जिसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च किया गया दिस वीक इन इंडिया, और उसमें कहा गया है कि बस वस का हो गया।
0: क्या हो गया?
11: बस हो गया यार, बस का स्कूटी खरीदने का टाइम आ गया।
0: तो ये गूगल के क्यों बोल रहा है खुद, मतलब क्यों बोल रहे हैं?
11: लोगों ने जाकर गूगल पे
0: ये सर्च किया।
11: हाँ, सर्च किया तो स्कूटर्स खरीदने की शायद कोशिश जो है ये कर रहे थे। इसके अलावा एक और फनी चीज जिसके बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च की, आधी सैलरी में शॉपिंग जो है ये चली गई, अब 10,000 में पूरे महीने का बजट कैसे मैनेज करूं।
0: अच्छा, आधी सैलरी चली गई।
11: हाँ, शॉपिंग में
0: 10,000 में पूरा महीना।
11: हाँ, अब 10,000 में पूरा महीने का बजट कैसे
0: मैनेज होगा। अच्छा, वाह वाह।
11: सो दीस वर सम ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स जिसके बारे में इंडिया में लोगों ने इस हफ्ते।
0: वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आई वुड से, बट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि न्यूजीलैंड में क्या कुछ लोग सर्च कर रहे हैं। प्रोबब्ली वी शुड डू दैट ऑन मंडे, वी विल फाइंड आउट ना। वीकेंड भी रहेगा हमारे पास सैटरडे संडे के बाद, सो वी कैन सी व्हाट पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग इन द वीकेंड न्यूजीलैंड में। पर फिलहाल आज का ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए लेकर आ रहे थे, जहां पर क्या ट्रेंड कर रहा है ऑनलाइन, इस पर हमने आपके साथ डिस्कशन किया। थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक जो है ये आपके लिए लेकर आएंगे। 0800 004866 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और चाहे तो टेक्स्ट करना हो टॉपिक सुनने के बाद, बिकॉज यू डोंट फील लाइक कॉलिंग बिकॉज यू टू शाई टू टॉक टू अस लाइव ऑन एयर, तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं 5599 यानी 5599 पर।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
2: IKEA.
3: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
5: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
6: क्यों क्या हुआ
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रिस्पांस फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
9: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
8: सोना संसार पापा टोटो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो
10: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो सोना संसार यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Gold.
11: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: What's your take?
14: 14 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर और व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और आज का जो टॉपिक है इसमें आप का टेक जानना काफ़ी ज़रूरी है हो सकता है कि आप जो सोचते हो उससे किसी और को कुछ सहायता जो है ये मिल जाए तो अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट कहीं पर जहाँ पर एक पेरेंट जो हैं उन्होंने अपने बच्चे को $50 कैश जो है ये दिया एज अ रिवॉर्ड क्योंकि उनके रिपोर्ट कार्ड पर या जो स्कूल रिपोर्ट में उनको आई मिला था कुछ लोगों ने इसको बहुत ही ब्रिलियंट मोटिवेशन कहा है और कुछ लोग कहा है और कुछ का कहना है कि ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये पेरेंट जो है इज सेटिंग अप हिज और हर किड फॉर फेलियर इन द रियल वर्ल्ड तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं हाउ डू यू रिवॉर्ड योर किड्स और कहां पर एक सीमा जो है या एक लाइन जो है ये आप ड्रॉ करते हैं कि इससे ज्यादा या ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरह का रिवॉर्ड बच्चों को नहीं मिलना चाहिए और खासतौर पर छोटे बच्चों के बारे में हम बातें कर रहे हैं जिनकी उम्र शायद यू नो फ्रॉम अ ईयर टू से सिक्स सेवन ईयर्स एट ईयर्स के बच्चे जो होते हैं उनके लिए किस तरह से आप उनको रिवॉर्ड करते हैं जब वो शायद अच्छी तरह से रिवॉर्ड्स और फिर प्रैक्टिकलिटी के बारे में समझते भी नहीं हैं जो छोटे बच्चे हाउ डू यू एक्चुअली रिवॉर्ड देम ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं और क्या बच्चों को रिवॉर्ड करना सही है ये भी एक सवाल है या फिर रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए क्या क्या आपकी राय है ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं जब आप बड़े हो रहे थे उस समय पर आपके साथ सिचुएशन कैसा था गुड मॉर्निंग परविंदर
6: गुड मॉर्निंग,
14: कैसी हैं आप?
6: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
14: मैं भी अच्छा ही हूँ।
6: ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बताऊंगी आपको मेरे उससे एक्सपीरियंस से।
14: जी।
6: जैसे हम, मैं काइंड ऑफ अबव एवरेज स्टूडेंट रही हूँ।
14: हाँ।
6: अच्छे मेरे स्कोर्स आए हैं पूरे मेरी एजुकेशन टाइम पे, पर कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला घर से।
14: अच्छा।
6: तो पर हाँ, जब हम छोटे थे ना, जब मैं छोटी थी तो मैं वन ऑफ द टॉपर थी।
14: हाँ।
6: तो उस टाइम पे जैसे अगर इंडिया में तो 100 में से आउट ऑफ 100 होता था ना एग्जाम्स।
14: हाँ।
6: तो अगर मेरे 95 या 92 या 94 भी आया, वो इन 90s वाला एरिया ना, कि मेरे अबव 90s ही जाते थे।
14: हाँ।
6: मुझे तब भी मार पड़ती थी कि बाकी के नंबर कहाँ गए।
14: अच्छा।
6: हाँ। तो अब क्योंकि बचपन से कभी ऐसे रिवॉर्ड टाइप कभी ऐसे मिला नहीं, बोला नहीं, तो अभी इन रियल लाइफ आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई मुझे रिवॉर्ड दे।
14: ओके।
6: है ना, कमिंग टू द टॉपिक कि वो ऐसे रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो मेरी बच्चों की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी आगे जाके कि वो कुछ भी करेंगे उनको रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में।
14: ओके। तो आप सोचती हैं कि ये सही नहीं है?
6: पता नहीं, क्या पता वो अपने बच्चों को सिखाएंगे भी कि डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एवरीवन।
14: हाँ हाँ, हो सकता है, वो भी हो सकता है।
6: तो ये मिक्स्ड व्यूज है मेरे तो। जैसे हमें कभी रिवॉर्ड नहीं मिला तो जैसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, ना ही मैं उस लेवल की कोशिश करूंगी अब कभी लाइफ में कि मैं इतना करती हूँ कि मुझे कोई अप्रिशिएट कर दे।
14: ओके। सो क्या आप ये कह सकती हैं कि इट वॉज
6: डीमोटिवेशन भी हो सकता है?
14: हाँ, डीमोटिवेशन जिस तरह से आप बोल रही हैं, सुनने में वही लग रहा है कि यू गॉट डीमोटिवेटेड कि अप्रिसिएशन कभी मिला ही नहीं आपने इतनी मेहनत की। ओके।
6: बट अगर मुझे कोई चीज मेरी खुशी से या मेरी मर्जी से करनी है, फिर तो मैं उस पे पूरा ऐसे 100% लगाती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट अप्रिसिएशन। जैसे मुझे डांसिंग जैसे बहुत पसंद है, तो उसमें अगर मुझे कोई अप्रिशिएट करे ना करे, आई डोंट डू इट फॉर अप्रिसिएशन, आई डू इट फॉर माय फ्री विल। मुझे अच्छा लगता है ना।
14: ओके। थैंक यू परविंदर, आपके कॉल के लिए, आपके टाइम के लिए। हैव अ वंडरफुल डे। आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हेलो।
13: मॉर्निंग, कैसे हो?
14: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
13: मैं ठीक हूँ।
14: क्या नाम है आपका?
13: इशिका।
14: इशिका, ओके। इशिका, सुबह सुबह आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहती हैं आप?
13: मैं बोलना चाहती हूँ कि मम्मा पापा मुझे रिवॉर्ड क्या देते हैं?
14: बताइए, क्या रिवॉर्ड मिलता है आपको और कब मिलता है रिवॉर्ड?
13: जब मैं कुछ लाइक अचीव कर लूँ या कराते में कुछ ऐसा हो जाता है जो अच्छा रहता है।
14: हाँ।
13: और वो मुझे डोनट देते हैं, और हम लोग जब शॉपिंग जाते हैं तो हम एक लाइक $10 का बजट या $20 का बजट रहता है।
14: हाँ। तो आपको क्या लगता है, मम्मी पापा हमेशा आपको इस तरह से रिवॉर्ड करते रहेंगे जब भी आप कुछ अच्छा अचीव करोगे? ओके, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच इशिका, कॉल करने के लिए और शेयर करने के लिए। यू हैव अ वंडरफुल डे एंड हैव अ गुड डे एट स्कूल।
13: थैंक यू।
14: थैंक यू, बाय बाय। तो एक बाय बाय। तो एक बच्चे का नजरिया जो है, ये भी आपने सुन लिया कि उनको रिवॉर्ड मिलता है जब भी वो कुछ अच्छा अचीव करते हैं या लाइफ में कुछ प्रॉमिसिंग करते हैं, तो मम्मी पापा उनको रिवॉर्ड देते हैं, और यू नो बजट जो है ये होता है। तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी राय है इस बारे में, बच्चों को अगर रिवॉर्ड करना है तो कैसे रिवॉर्ड करना चाहिए? एंड वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट द लिटिल वंस, यू नो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। क्या उनको टाइम एंड अगेन रिवॉर्ड देने से उनको ये आदत लग जाती है? उसे आप जो रिवॉर्ड आप देते हो उसे ऑफसेट कैसे करते हो, या फिर जब कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो आप उनको रिवॉर्ड करते हो, जब शायद कुछ शरारत करते हैं उस समय पर आप कैसे डील करते हो अपने बच्चे के साथ, वो भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। कहीं कहीं पर तो शायद ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा घर के काम में कोई हेल्प कर दे तो आप उसको एक गोल्ड कॉइन दे देते हैं, क्या वो सही है, वो करना सही है? कुछ का कहना होगा कि मनी मैनेजमेंट बच्चों को छोटे से सिखाना ज़रूरी है, ये भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग, हेलो।
15: Hello, good morning, Vijay bhai. It's not keyword good, gold coin, but if my daughter does something jo usko nahi karna hai. She gets up in the morning, she tidies her bed, yeah. But then sometimes she will go and she'll empty uske room mein ek bin hai and she's got her own jisme uske gande kapde hote hain, wo khud ja ke dal degi and there will be she'll empty my bin as well. So I do reward her, but then that money is in my bag. जो कोई उसको कॉइन मिलता है ना
14: जी,
15: एंड आई टेल यू शी डजंट गेट आईपैड मंडे टू फ्राइडे, ही इज अ चाइल्ड तो वो नॉटी भी करती है, देन आई विल टेल हर दैट ओके फ्राइडे इवनिंग अगर तुम ही इज बीन नॉटी फॉर द होल वीक द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग इट ऑन फ्राइडे नाइट विल बी टेकन ऑफ, आई मीन दैट्स मी पर्सनली, मैं नहीं देती हूँ, देन आई गिव इट टू हर, आई मीन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, आई मीन ही हैव बीन, शी इज स्टिल यंग, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, आई मीन लास्ट ईयर शी गॉट She is a student leader and so she got some gift from school and because she did so well then we also ask her what she wants. Bahut to bolegi mummy I want, she's into small things, kuch mehenga nahi hai. One thing I'll tell you is every week or whenever it's a birthday or some visit, chacha chachi mama mami aayenge, they give her money. So I've got a bank tin which she puts it in and at the end of the year I take it out. And I'll give you an example. I mean, she's 10 now. When she was 8, everyone, she doesn't have a phone or anything. She said, I want an iPad. We opened the tin. Usme pure iPad ke paise the. So we bought that and I only had to put $10 to buy the case for it.
14: Okay.
15: Last year, she opened the bank. There was $500 in there. She took 50 off and she gave me the 450. She said, Mommy, use this to buy groceries. Because, you know, I don't know. The love and the care, she gets what she wants. But in I say as a learning lesson as well ki kya consequence ho sakte hain, main aapko batau, my mother in law stays with us, so I mean they give her achhi achhi baatein sikhate hain and she knows how to save money and use it wisely as well, kyunki she gives wo shiksha dete na and tells them ki she had a really hard life when we were growing as kids in Fiji, meaning ek chappal hota tha, ek school bag hota tha, jab tak wo phatta nahi tha, toota nahi tha to aapko dusra milega nahi, to I mean yeah, I mean small things, and she gets spoiled by a lot of my cousins, my sisters. I don't spoil her.
14: That's nice. Thank you so much, ma'am. Aapke time ke liye and call ke liye. You have a wonderful day, and good morning. Hello.
16: Good morning, Vijay. Kaise ho?
14: Main theek hoon. Aap kaisi hain?
16: Main bhi bilkul theek hoon.
14: Ji.
16: मेरा नाम प्रीति है. एक्चुअली थोड़ी देर पहले मेरी बेटी इशिका ने कॉल किया था.
14: जी जी.
16: तो वो तो स्कूल चली गई फिलहाल. तो मैं बस यही बोलना चाहती थी कि फ्रॉम द एज ऑफ 5 हमने उसको वो किया कि अगर आप, क्योंकि वो बहुत जिद करती थी, कंसंट्रेशन में थोड़ा होता था, तो फिर हमने बोला कि ठीक है अगर आप कुछ कंसंट्रेशन अपना ठीक रखोगे, कुछ अच्छा करोगे और ये करोगे तो हम लोग आपको गोल्डन कॉइन देंगे. तो उससे हमने उसको इनकरेज किया. तो फिर अभी क्या करते हैं कि वो, हमने इसको बताया रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यू डू वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू, लेकिन अगर कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया है, जो आपने एक गोल किया है और वो अचीव किया है, तो हम लोग आपको एक बजट देंगे और ये पैसे से आप अपना जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो. हम लोग नहीं बोलेंगे कि आप ये नहीं ले सकते वो, बट हाँ एक बजट होता है, जैसे कि उसने बोला $10 का बजट होता है. और उसको हमने बताया कि ऐसा नहीं कि जब भी आप अचीव करोगे तब भी मिलेगा, अगर कुछ स्कूल में भी अचीव नहीं किया लेकिन अगर कुछ अच्छा किया, किसी के लिए किया, किसी को हेल्प किया, तो उससे भी हम आपको ऐसे एनकरेज करने के लिए उसको वो करते हैं.
14: That's really sweet. Thank you so much, ma'am. You have a wonderful day.
16: You too, Vijay. Bye.
14: Bye-bye. तो जी देखिए भाई, अलग अलग राय जो है ये आए हैं. हाय सुख एंड वक, हाय सुख जो है, एक और नाम भी आपने सुखी लिख दिया, फ्रॉम फेयरबर्न स्कूल ऑटाहू मेरे ख्याल से. येस, माई मम एंड डैड गेव अस रिवॉर्ड, वी ऑलवेज हेल्प माई मम पुट सम मनी इन आवर बैंक अकाउंट, मी एंड माई ब्रदर सेविंग, ये उन्होंने कहा है। तो अब आप चाहें तो 5599 पर टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं खासतौर पर किस तरह का रिवॉर्ड सिस्टम जो है ये आप यूज करते हैं अपने बच्चों के लिए।
11: Bollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
18: मैं लाऊं अपना A game.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Accurate traffic.
3: Elite Bathroom Wear's midwinter Reno sale.
4: A high of 16, cloudy all day and getting wet from the afternoon. Coming into the city, motorways are far faster than other weekdays. Southern, 30 minutes, Manukau to town, fine to East Tāmaki. Slow from there with heavy spots to Ellerslie. Heavy on the southwestern northbound at Wiri, fine the other way. Northern, 20 minutes in from Constellation, just slowing close to the bridge. And northwestern, 21 in from Massey, slow from Greyland.
3: Elite Bathroom Wear's midwinter Reno sale on now finishes Sunday, Allens Road, East Tāmaki.
5: And Pete, Mrs. Singh se maine puchha. And now, अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली बस मेरा फोकस है.
6: अच्छा
5: बताओ तो अंडा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह.
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
9: Dash!
10: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
11: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
11: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
12: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
11: Available at selected branches. T's and C's apply.
0: Non-stop Bollywood.
13: पूछो क्या करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
15: तो चलिए भाई आपको इतने सारे मौके सुबह से हम देते आ रहे हैं हमारे साथ विजेता बनने की. एक और एक मौका देते हैं और आपको खुश कर देते हैं. आज फ्राइडे है, वीकेंड आपका बहुत अच्छा बीतेगा अगर आप भी विजेता हो जाते हैं. या एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नहीं पार्टिसिपेट इन इट बिकॉज वी हैव गॉट एक कपल पास, डबल पास आपको देने के लिए फॉर एन अमेजिंग इवेंट जो होने जा रहा है ऑन द 1st of August, Saturday 1st of August, next week Saturday को ये रहेगा. So it's happening next week Saturday at महात्मा गांधी सेंटर, गरबा नाइट विद राज गढ़वी, लाइव इन ऑकलैंड ये होने जा रहा है. दिस इज योर चांस, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बने. लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशंस ऑफ दिस ईयर. गरबा जो किस्म का मतलब ये वाइब होता है ना इसमें, ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इसका हिस्सा बने हैं. यू एक्सपीरियंस दिस समटाइम इन योर लाइफ, बट अगर आपको पहले से इसकी वैल्यू पता है, इसका मजा पता है, तो यू नो कि यू डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड यू नो बाय योर टिकट्स, यू विल पार्टिसिपेट टू विन योर पासेस. बट अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, माय एडवाइस, गो फॉर इट, ट्राई इट आउट. अच्छा चलो आप यू नो डबल पास जीतने के लिए कोशिश कर देखो. अगर जीत गए तो उसमें क्या नुकसान आपका, फ्री में आ गए पासेस और आपने गरबा जो है विद राज गढ़वी ये भी एक्सपीरियंस कर लिया, उसका पूरा वाइब जो ये एक्सपीरियंस कर लिया. सो दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी फॉर यू जहां पर आपको मौका मिल रहा है हमारे साथ शामिल होकर सैटरडे 1st of August को महात्मा गांधी सेंटर में, जबकि ये होने जा रहा है. टिकट्स आर सेलिंग क्वाइट फास्ट, इवेंट स्टिक्स eventstickets.co.nz eventstickets.co.nz आप विजिट करें एंड टिकट्स ग्रैब कर लीजिए. और डिटेल्स के लिए आप स्वप्निल शाह से 022-439-4736 पर भी बातें कर सकते हैं.
2: बट राइट नाउ एक डबल पास जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. आर जी राज गढ़वी का शॉर्ट फॉर्म आर जी लिखें, अपना नाम लिखें और 5599 पर हमारे पास भेज दें. सही तरीके से अगर आप अपनी एंट्री भेजेंगे आपका नाम हम ड्रॉ में शामिल करेंगे और किस्मत अच्छी रही तो ये डबल पास आपका हो सकता है.
15: तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए, मतलब अपनी अपनी एंट्रीज हमारे पास भेज दीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दिस एज वेल. एंड वंस यू सेंड इन योर एंट्री आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए आपका नाम ड्रॉ का हिस्सा बन जाएगा. बट वंस यू विन विल गेट इन टच विद यू एंड विल लेट यू नो कि कैसे आप अपने पासेस जो है ये क्लेम कर सकते हैं. फिलहाल एंट्रीज जरूर भेजते रहिए.
9: Let's go.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

0: Own the gear. It's sale time at Rebel Sport. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store-wide. Here Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
2: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश natural yogurt से जिसका हर spoon है एकदम delightful 100% vegetarian gelatin and gluten free perfect है smoothies बनाने के लिए tangy dips बनाने के लिए पनीर या chicken marinate करने के लिए या बस सीधा कप से खाने के लिए क्योंकि ये है naturally delicious always desi available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand bring home the taste of tradition kashish natural yogurt
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
3: Throwback.
5: The Rush Hour on the Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं a very very interesting topic जिस पर topic नहीं एक article है जिस पर हम बातें करना चाहेंगे.
6: हाँ बताइए.
5: A lot of people have this habit ना उनके लिए उनके घर में एक hiding spot होता है, me time spend करने का एक मौका होता है जब
6: comfort zone होता है.
5: Comfort zone होता है. उनका private office होता है ये basically. हाँ. जब वो loo visit करते हैं, आराम से बैठे रहते. They take their time because
6: they just refuse to come out.
5: हाँ, because they feel like कि यार यही वो time है जब उनको चैन से बैठने का मौका मिलता है. मतलब आराम से शांति से बिना डिस्टर्बेंस के, क्योंकि वॉशरूम में कौन ही आकर आपको डिस्टर्ब करेगा. Who would take that risk, isn't it?
6: नहीं, बट आप बाहर कितने लोगों को डिस्टर्ब कर देते हो ना.
5: वो बात अलग है. जिनके घर में दो तीन टॉयलेट्स हैं उनको तो फायदा है ही. इट डजंट डिस्टर्ब अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट एक आर्टिकल जो है ये आया है सामने, एंड अपेरेंटली देयर आर सम हेल्थ एक्सपर्ट्स, सम डॉक्टर्स जिन्होंने इस पर कुछ बातें जो है ये की है, कुछ जरूरी बातें की हैं. एंड दे रिवील्ड कि सम पीपल सडनली हैव अ लाइक अ डिजायर कि इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग उनको वॉशरूम जाना होता है. दे हैव दैट थिंग. एंड व्हाइल अदर्स एक्सप्लेन्ड कि कैसे आप कितना समय टॉयलेट में स्पेंड करते हैं ये आपके हेल्थ पर कितना असर करता है या कैसा असर करता है.
6: अच्छा.
5: हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है दैट यू शुड स्पेंड जस्ट अ फ्यू मिनट्स ऑन द लू. वाइल जो NHS है, NHS है, इनका ये कहना है कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर यू शुड नॉट स्पेंड एंडलेस टाइम ऑन टॉयलेट स्ट्रेनिंग योर सेल्फ. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेलिसा हर्शमन, इन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम जो आपको स्पेंड करना चाहिए ऑन द टॉयलेट इज नो मोर देन 3 मिनट्स एट अ टाइम. एक बार आप जा रहे हो, 3 मिनट इज इनफ, उससे ज्यादा नहीं. और दूसरी ओर
6: अगर किसी की दुकान में सेल लगी हो तो
5: 2-3 मिनट में क्या ही होगा,
6: तो उसका तो टाइम लगेगा ना, भीड़ होगी, बहुत
5: मेजर डिस्काउंट चलेगा. और दूसरी ओर ये कहा है कि डॉक्टर मेलिसा हर्शमन के बारे में हमने आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर है मेडिसिन एट ओरेगन हेल्थ सर्विस साइंस यूनिवर्सिटी के. इन्होंने ये कही है कि यू रियली शुडंट बी स्पेंडिंग ऑल डे इन देयर. अगर कोई ओल्ड दिन मतलब पूरा का पूरा दिन स्पेंड कर रहा है तो कुछ
6: नहीं,
5: तो
6: मतलब बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं.
5: हाँ, एंड यू शुड बी क्वाइट क्विक विद द होल प्रोसेस. इट डजंट हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग.
6: या आई नो इट डज नॉट.
5: और डॉक्टर ह्यूस्टन या फिर ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर वैलेंटाइन मिलियन है, इन्होंने रेकन किया है कि समवट अराउंड द 5 मिनट मार्क इज आइडियल. आप 5 मिनट मैक्सिमम जो है ये स्पेंड कर सकते हैं सिटिंग ऑन द लू इफ़ यू हैव टू अटेंड टू द बिजनेस. और ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है बिकॉज बहुत ज़्यादा देर तक जब आप बैठते हो तो इट एक्चुअली इज समथिंग जो आपको काफ़ी पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस तक लीड कर सकता है. अच्छा. लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है इसकी वजह से. एंड डॉक्टर्स वॉन्ट दैट सिटिंग ऑन द टॉयलेट फॉर इवन 10 मिनट्स ये आपके चांसेस ऑफ इंटीमेट मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है ये बढ़ाता है. सो इफ़ यू डोंट वॉन्ट दैट, you really have to consider the time you are actually spending on the loo.
6: Ah, bhai.
5: इन द लू ऑन द पॉटी.
6: काम खत्म करो, दुकान बंद कर दो.
5: शटर्स गिरा दो.
6: शटर्स गिरा दो, सब बंद कर दो. आपके घर में सबसे ज्यादा टाइम कितना लेता है कोई एक शख्स, आप हमें बताइए.

0: आई नो ऑफ समवन,
1: आई ऑल्सो नो ऑफ समवन
0: जो एक बार 2 घंटे के लिए थे यार. उनको रेस्क्यू करने के लिए
1: दरवाजा
0: तोड़ना पड़ा. सनी देओल ने अपनी एक फिल्म में हैंडपंप उखाड़ा था. यहाँ पर लोग टॉयलेट के दरवाजे उखाड़ रहे ताकि रेस्क्यू कर सके अंदर सो रहे लोगों को. बट वो तो खैर हमारी कुछ पर्सनल चीजें जो नहीं बोलनी चाहिए फिर भी बोल रहे, कीपिंग द आइडेंटिटी सीक्रेट यू नो. बट आप हमें बताइए 5599 पर मैसेज करते हुए कि क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई शख्स है जो यू नो मैक्सिमम चलिए बातें करते हैं 30 मिनट से ऊपर लू में स्पेंड करते हैं.
1: 10 से ऊपर.
0: अच्छा 10. हाँ 10 इन्होंने बताया ना.
1: नहीं उन्होंने 5 बोला, हम उसको डबल कर रहे हैं कि 10 मिनट भी. 10 मिनट से ज्यादा क्या आपके घर पर कोई गुजारता है
0: वॉशरूम में?
1: अगर हाँ तो आप हमें बताइए.
0: राइट 5599 पर अपने नाम के साथ आप जरूर मैसेज कीजिए.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 12.5 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज होगा. बादल छाए रहेंगे और बाद में चलकर आज बारिश होगी, रहकर गंभीर बारिश भी हो सकती है. सनसेट आज का 5:31 PM पर होने को है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: What's going on? Kya bakte ho?
4: Are kehna kya chahte ho?
5: The Breakfast Show पर अब बारी है आपके लिए, हम लेकर आए क्या बकते हो, मतलब ऐसी कुछ खबरें which will definitely make you say कि यार क्या बक क्या रहे हो आप सब, ये क्या बोल रहे हो. So apparently ये खबर जो है ये आई है from USA if I'm not mistaken, Los Angeles में एक न्यूज चैनल है जहाँ की एक जर्नलिस्ट है, she has gone viral क्योंकि वो इतनी काम थी, इतनी शांत थी जब वो अपना पर्टिकुलर सेगमेंट जो ये रिपोर्ट कर रही थी लाइव, एंड उनके ऊपर एक कॉकरोच जो है ये चल रहा था. And she very casually said it. एक कॉकरोच चल रहा है मेरे ऊपर, लाइक नॉट हिंदी में अपनी भाषा में, बट उन्होंने ये बताया. तो रिपोर्टर का नाम है रेचल मैनिटॉफ एंड शी वेंट वायरल आई थिंक ऑन वेंसडे लेट नाइट रिपोर्टिंग करते समय जब एक अनवांटेड कॉकरोच उनके कंधे पर चल रहा था. एंड शी लुक्ड वेरी काम, इनफैक्ट उन्होंने अपने हाथ में भी लेकर उसको लोगों को दिखाया कि ये देखो मेरे ऊपर ये कॉकरोच चल रहा है.
6: क्या बात है यहाँ तो, अगर यू नो अगर आपके ऊपर एक चींटी भी चलने लगे तो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है ना.
5: हाँ, यू सेंसेशन होते हैं ना बॉडी में. बट आई पर्सनली आई वुड से कि मुझे कॉकरोचेस से कोई दिक्कत नहीं है.
6: वो चल सकते हैं,
5: चल अगर कभी ऐसे दिख जाते हैं या कुछ, मेरे को उनसे डर नहीं लगता. बट अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक वेरी स्केयर्ड, लाइक बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको होगा उसका डर. मुझे लाइक दो चीजें दैट आई कांट स्टैंड. नाउ देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक लिविंग इन फिजी, तो जो आउटडोर फ्रॉग्स नहीं होते,
6: अच्छा
5: बड़े बड़े छोटे छोटे
6: फ्रॉग्स कैसे होते हैं,
5: अरे फिजी में जो मेंढक होते हैं उनको मैं बोलूं, बड़ा डिफरेंट डिफरेंट
6: दिखते हैं. तो फिजी में इंडोर फ्रॉग्स कैसे
5: होते हैं? इंडोर तो नहीं होते. अपने घर के किसी मेंबर को लोग बोलते होंगे मेंढक वगैरह, वो अलग बात है. बट आई एम जस्ट लाइक सेइंग कि वो
6: अच्छा अपने घर की बात बता रही
5: हूं. नहीं, आई एम सेइंग लाइक कि वो कितना डरावना दिखते हैं ना. तो मुझे उनसे डर नहीं लगता था व्हेन आई वाज इन फिजी, बिकॉज वो एवरीडे एनकाउंटर टाइप होता था उनके साथ.
6: तो आपको तो जान पहचान हो गई होगी.
5: रिश्तेदार है ना, मेरे ससुराल वाले में क्या करूं. Oh my God, what did I just say? Anyways, तो वो मेंढक से मुझे को डर नहीं लगता था. अभी when I see them, I can go crazy.
6: Okay, good.
5: अब बहुत डर लगता है. शादी हो गई ना इसीलिए. अरे इतना अच्छा जोक मारा यार मैंने.
6: मैंने हंसा
5: मेरे को दिख रहा है. बट नहीं नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक मुझे को सबसे ज्यादा जो कोई एक चीज है दैट आई कांट, व्हेन आई टॉक अबाउट इंसेक्ट्स एंड क्रॉलीज एंड स्टफ, इज लाइक सेंटीपेड. इतने सारे उनके वो जो पैर है, हाथ है, जो भी है, वो देखकर मैं घबरा जाती हूं. एक बार मेरे को काटा भी है ना उन्होंने, तो मेरे को उसका दर्द पता है. सेंटीपेड, मिलीपीड, क्या बोलते हैं उसको,
6: कुछ होगा.
5: हम तो गोजर बोलते हैं, बट आई थिंक मिलीपीड बोलते हैं.
6: हाँ, कुछ भी होगा.
5: हाँ यार, वो like
6: चिपकली से नहीं डरती यार.
5: नहीं नहीं, चिपकली से क्या डरना,
6: पता नहीं,
5: चिट चिट चिट करते रहते हैं और क्या करते वो बस.
6: अच्छा हो गया, चलो आगे बढ़ो.
5: तो बात क्या कर रहे थे हम,
6: अरे कि उनके ऊपर कॉकरोच चल रहा था एंड शी वाज सो काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं,
5: कुछ
6: ऐसे
5: नहीं.
6: हाथ पे लेकर दिखा रही है, लो भाई देखो दिस इज द कॉकरोच. आज मैं कॉकरोच को लाइव रिपोर्ट पर लेकर आई हूँ.
5: आपको डर लगता है किसी क्रीपी क्रॉली से?
6: हाँ, मुझे मेंढक से डर लगता है.
5: मेंढक से घबराते हैं आप?
6: घबराते नहीं,
5: लेकिन यू कांट स्टैंड देम एनीमोर.
6: एनीमोर मतलब
5: पहले? अच्छा नहीं, शुरू से. ओके, और
6: हाँ बस ऐसे कुछ जीव होंगे, ऐसे ही कुछ होंगे ना जो ऐसे दिख जाए तो फिर. ऐसा नहीं कि डर लगता, नहीं डर नहीं लगता.
5: हाँ, वो करते भी नहीं है कुछ. आई वंडर व्हाई पीपल गेट स्केयर्ड ऑफ देम. बट या एनीवेज, सो ये था आज का हमारा क्या बकते हो. थोड़ी देर बाद आपके लिए व्हाट्सएप ऑकलैंड हम लेकर आएंगे.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: चलिए देखें क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट 22nd और 23rd अगस्त को बेकनहेड स्काउट्स हॉल पर रहेगा. आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारियों के लिए न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज आप विजिट कर सकते हैं या प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 02109085067 पर.
4: और याद रहे कि इसी संडे को फिजी गिरमिट फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद एंस फ्यूनरल होम एंड अनसेट क्रिमेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो. और ये एब्सोल्युटली फ्री है फॉर एवरीवन टू अटेंड. इट्स हैपनिंग एट इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापाटोइटोई 10 AM से 3 PM के बीच. और बहुत जरूरी है ये एक्सपो आप इसे अटेंड करें बिकॉज इतनी सारी सर्विसेज एक तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही है, जैसे कि फ्री में आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी ECG या आई टेस्ट, बेसिकली स्क्रीनिंग वगैरह जो ये होगी. और बहुत सारी बीमारियों पर आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा दैट कैसे आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं. समवन यू नो इफ दे हैव गॉट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डाइटिशियन एडवाइस अगर आपको चाहिए, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट केयर, स्ट्रोक, एल्डर केयर, एलर्जीज या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन जुगे दिया जाएगा. इनफैक्ट यू कैन ग्रैब सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन कैंसर स्क्रीनिंग, अर्ली सिम्टम्स वगैरह जैसे प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेप्समिया या फिर ब्लड कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं. एंड वी ऑलवेज से ना कि फिजिकल हेल्थ तो ज़रूरी है ही. And people very easily notice if something is not right with their physical health. लेकिन mental health भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अक्सर शायद unnoticed जाता है. And अगर आप ऐसे एक situation में है where you know of someone, if you are someone who needs all sorts of information on mental health and well-being, तो यहाँ पर self-care and stress management, gambling and alcohol addiction, ये सब कुछ कैसे आप इसे deal कर सकते हैं इस पर भी details रहेंगे. एंड आपके पास opportunity होगी health psychologists और counselors से मुलाकात करने की. सो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं. अगर अपने future में career के लिए भी कोई information चाहिए तो education program के तहत आप यहाँ पर वो भी पता कर सकते हैं. और पूरी family के साथ आप जा सकते हैं because there are so many fun activities happening for young kids and kids, face painting, light refreshments वगैरह, hampers and giveaways जो है ये भी आपको मिल सकता है. Zumba classes होगा, yoga classes होंगे जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं and some live performances भी रहेंगे आपको दिन भर entertain रखने के लिए. So remember, अगर details चाहिए तो आप बातें कर सकते हैं शनीला महाराज के साथ, उनको email कर सकते हैं shanilafgfnz@gmail.com पर.
3: इसके अलावा श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में अखंड रामायण पाठ सैटरडे फेस्ट और संडे 2nd अगस्त को रहेगा. शनिवार की सुबह 7 बजे रोट पूजा, उसके बाद 8:15 बजे आरती, 9:15 बजे रामायण पाठ शुरू होगा जो रविवार की सुबह 10 बजे तक चलेगा, जिसके बाद हवन और आरती होगी. और प्रोग्राम के दौरान आपके लिए यहाँ पर भोजन का भी प्रबंध रहेगा.
4: और उसके साथ साथ आपको याद दिला रहे हैं न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री रामलीला. अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह के बारे में तो आप मास्टर शोक को 02117954 पर कॉल कर सकते हैं. इट्स हैपनिंग ऑन द 8th of August और ये बहुत ही अमेजिंग डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर की ओर से आप कर सकते या न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप कर सकते हैं. और आने वाले दिनों में और भी डिटेल्स हम आपको जरूर देंगे.
3: ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की मासिक रामायण कथा अगले शुक्रवार को 7:15 PM से IRST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में होगी. आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
4: याद रहे आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कोई इवेंट्स हो रहे हैं फॉर द कम्युनिटी आउट देयर, डिटेल्स हमारे पास आप सेंड कर सकते हैं buzz@hamfm.com पर, buzz@hamfm.com पर. और व्हाट्सएप ऑकलैंड में आपके लिए इसे हम जरूर लेकर आएंगे.
2: Mornings made better.
5: Do frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
6: Driving you home.
7: The drive show with Sandy and Rusby.
8: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
9: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
10: वो भी आई लव यू वाला.
9: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ से किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा.
10: अच्छा तो
9: आए आए बताओगे.
7: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
0: VG is on sale now at Flight Center. Take the family to Plantation Island with 7 nights plus flights from $1,499 per person. Book in store today. Depart Auckland, feast T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
6: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
11: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
12: क्यों, क्या हुआ?
11: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
13: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
14: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
15: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
16: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
17: अच्छा,
16: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
17: मिसेस सिंह.
18: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
7: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 0928130500 और विजिट focuskitchens.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: What's going on?
4: सुबह हमने आपको बताया था, पर अगर आपने मिस आउट कर दिया बिकॉज यू वर नॉट लिसनिंग टू अस एट दैट टाइम, यू जस्ट जॉइंड अस, तो आपको हम याद दिला दें कि राहत फतेह अली खान ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड. इसी सैटरडे को परफॉर्मेंस रहेगा, यानी कि कल आने में. आई एम बिल्डिंग अप यार. आज फ्राइडे है 24th of July, एंड टुमारो इज सैटरडे 25th of July एट द ट्रस्ट एरिना. इनका परफॉर्मेंस रहेगा. आई थिंक ऑलरेडी आ चुके होंगे ना अभी तक तो. आई मीन हाँ, आज फ्राइडे, अभी मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी. आपने अगर इनके लिए शो, मतलब शो के लिए टिकट्स नहीं लिए हैं, वी रियली हैव टू चेक कि अभी कितने टिकट्स बाकी, बिकॉज अंटिल यस्टरडे वी वर इन्फॉर्म्ड फाइनल 300 टिकट्स वर लेफ्ट. सो अगर आपका किस्मत, मतलब आपकी किस्मत आपके साथ है और आपको इस इवेंट का हिस्सा बनना है, तो शायद टिकट्स होंगे जो आप dryTickets.com विजिट करते हुए चेकआउट कर सकते हैं. एंड वहाँ पर अगर अवेलेबल हो तो आप उन्हें तुरंत ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि कल 25th of July को एट द ट्रस्ट एरिना लाइव रहेगा एक बहुत ही अमेजिंग म्यूजिकल नाइट, अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन इनके साथ, राहत फतेह अली खान के साथ, जिसका हिस्सा बन सकते हैं. ऑल थैंक्स टू जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन. सो रिमेंबर, अब ये इकलौता शो होने वाला है, कल इसके अलावा कोई और शो नहीं होगा. सो डोंट एक्सपेक्ट कि अगर कल का शो फिनिश हुआ तो आपको दोबारा किसी और शो को या किसी और जगह पर किसी और टाइम पर इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा. नो, देयर इज ओनली वन शो हैपनिंग एंड दैट्स हैपनिंग टुमारो.
2: Hollywood's most wanted.
19: Gundi khad gao. Ya seedha andar aao.
20: Main laun apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, फिलहाल 27 मिनट रह गए हैं अब 10 बजने में और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। सनी देओल की आने वाली फिल्म जो है, जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, बटवारा 1947, ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसके बारे में हमने पहले भी बातें की हैं। और इस फिल्म को जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उसने क्लियर कर दिया है विदाउट एनी कट्स। और ये फिल्म है जो है, इट्स सेट अराउंड पार्टीशन और लाहौर में एक मुसलमान परिवार जो है उनकी कहानी है। जब ये इनका आमना सामना होता है एक महिला से जो उनकी उनके फैमिली होम को छोड़ने से मना कर देती है। और जो INI की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट जो है ये मिल चुका है बोर्ड की ओर से विद ज़ीरो कट्स। और अब जबकि सेंसर सर्टिफिकेशन मिल चुका है और राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार होगी 14 अगस्त को। सो लेट्स सी हाउ डज इट गो। और इसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट जो है ये बना हुआ है। इन्होंने जो मेकर्स हैं इन्होंने फिल्म का नया पोस्टर जो है ये भी लॉन्च किया है। और इसमें इंडिया 1947 में उस पर सेट किया गया ये पोस्टर जो है ये रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा भी बैक किया गया है। सनी देओल, शबाना आज़मी के अलावा प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यू सिंह, खुशी हजारे, कनिका कपूर जैसे कलाकार जो है ये काम कर रहे हैं। और इस फिल्म का म्यूज़िक जो है अय्यार रहमान कंपोज कर रहे हैं और गाने जावेद अख्तर साहब ने लिखे हुए हैं।
1: Breakfast show with

0: चाहे आप हम की दिनचर्या 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Please use your imagination for the following ad.
2: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
1: Imagine winning $40 million this Saturday. Play in store or online.
3: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats. Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
4: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
6: What's going on?
7: डेली राउंड अप आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा आपके लिए हम जबकि लेकर आ रहे हैं, तो आज एक ऐसी खबर जिसके बारे में कल से भी काफ़ी बातें हो रही हैं। दिस इज़ बेसिकली द हेड ऑफ न्यू कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फाउंडेशन। इन्होंने कहा है कि अगला जो भी सरकार पावर में रहेगा, द गवर्नमेंट, नेक्स्ट गवर्नमेंट बेसिकली, कि वो लंग एंड कैंसर स्क्रीनिंग जो है ये फंड करें। चार कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी चैरिटीज जो है ये एक साथ एकजुट हुई हैं, जिनमें एस्थमा एंड रेस्पिरेटरी फाउंडेशन, द हार्ट ऑफ आउथियरोआ, द लंग फाउंडेशन और ब्रोंकियाइटिस फाउंडेशन जो है ये मर्ज हुए हैं और इन्होंने एक सिंगल वॉइस रेज किया है फॉर हार्ट एंड लंग हेल्थ चैलेंजेस। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इनके लेटिटिया हार्डिंग और इन्होंने कहा है कि इट मेक्स मोर सेंस कि वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ना कि चार अलग अलग। एंड दिस इज समथिंग दैट दे हैव ब्रॉट टुगेदर बिकॉज दे हैव बीन हियरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशनल्स बट ऑल्सो पेशेंट्स, जिन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इन दिस स्पेस, ब्रिंगिंग फोर इशूज जो अभी ये प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं टुगेदर। कंसिडरिंग कि न्यूजीलैंड हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट चैरिटी पर पॉपुलेशन रेट्स इन द वर्ल्ड, वी हैव गॉट ओवर 29,000 चैरिटीज, फ्रॉम द परस्पेक्टिव इट एक्चुअली डज मेक सेंस कि अगर चार जो डोनर्स हैं एक साथ जुड़ जाए एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। वैसे लेटिटिया का कहना है कि वन ऑफ द फाउंडेशन्स मेन प्रायोरिटीज वुड बी टू एडवोकेट फॉर अ नेशनली फंडेड लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम एंड शी इज ऑल्सो सेड कि वी आर होपिंग इट इज इन द बजट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड इट गेट्स रोल्ड आउट। There is a lot of work that has been done by the Lung Foundation, which of course इन्होंने observe किया है, but health professionals or researchers ने कहा है कि space में they have been many years जहाँ पर it's a no-brainer that we need to be looking at a lung cancer screening and targeted screening, ताकि लोगों को ज़्यादा एक्सपेंसिव ना लगे और उनकी समय पर हेल्प जो है ये हो सके। शी सेड दैट देयर अदर इमीडिएट फोकस एज वेल और वो रहेगा जैसे कि आरएसवी पब्लिकली फंडेड हो, आरएसवी जो यो रेस्पिरेटरी डिजीज है बेसिकली, इसे भी पब्लिकली फंड किया जाए एंड द फाउंडेशन विल बी ऑफिशियली ओपन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा और ये होगा आई थिंक ये कल हो चुका है बाय द वे, द ओपनिंग हैज हैपेंड ऑलरेडी। सो डेली राउंड अप में और भी चीज़ें आपके लिए,
8: जैसे कि उधर सेंट्रल वेस्ट कोस्ट में कई जगहों पर बाढ़ चढ़ने की रिपोर्ट जो है ये आई है। गंभीर बारिश की वजह से जो स्टोम वाटर सिस्टम्स है इस पर काफ़ी असर पड़ा है। ग्रेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कहना है कि 6 घंटों में 54 मिलीमीटर रेन रिकॉर्ड किया गया और उसके अलावा जिसकी वजह से कई मुसीबतों का सामना किया जा रहा है। न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा है कि स्टेट हाईवे 7 ग्रेमाउथ और स्टिल वोटा के बीच बाढ़ की वजह से बंद किया गया है और रोड यूजर्स को बताया गया है कि जहां तक हो सके इस रास्ते को अवॉइड करें और जो डीटीओज है उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी मुसीबतों का सामना जो है ये किया जा रहा है। इसके अलावा और जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि गंभीर बारिश के चांसेस जो है कि आ रहे हैं, कंटिन्यूस स्ट्रीम रेन बैंड का ये आ रहा है थ्रू न्यूजीलैंड। मेट सर्विस के जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं ही तकी, इन्होंने वन न्यूज़ को आज बताया कि उन्हें इतने सारे जो नंबर फ्रंट्स हैं ये आ रहे हैं देश की तरफ, और सबसे ज़्यादा गंभीर बारिश न्यूजीलैंड के वेस्टर्न इलाकों में होगी। और इट्स इंटरेस्टिंग विथ थंडर स्टॉर्म्स बिकॉज क्योंकि एंटायर वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है न्यूजीलैंड का, राइट फ्रॉम नॉर्थलैंड जो है वहाँ पर इस स्टॉर्म की एनर्जी जो है ये दिख रही है। तो लोगों से बहुत सावधान रहने की मांग जो है ये की गई है। और उसके अलावा यहाँ अन्य खबरों में कहा जा रहा है, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो कहना है कि दुनिया में जिस तरह से क्रैश पॉलिटिक्स चल रहा है वो अब धीरे धीरे न्यूजीलैंड में भी देखने को मिल रहा है। कई जो एग्जांपल्स हैं इन्होंने दिए हैं, जैसे कि एक्ट पार्टी जो कैंडिडेट है पॉल हेनरी, उन्होंने क्रिस जो लेबर पार्टी लीडर हैं क्रिस हिपकिंस उनके बारे में जो कमेंट किया था। उधर प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये सवाल उठा रहे हैं न्यूजीलैंड फेस्ट के मिनिस्टर शेन जोन्स के कुछ कमेंट्स को लेकर जो उन्होंने अपनी पार्टी के कन्वेंशन के दौरान किए थे, जो कमेंट्स वगैरह जो है ये उन्होंने किए थे। इससे पहले आपको याद होगा स्टुअर्ट नैश, और उन्होंने जो कमेंट किया था उसकी वजह से उन्हें न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी कैंडिडेट के रूप में अपने पद से इस्तीफा जो है ये भी देना पड़ा था। और इन सभी के चलते एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है कि ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो है दुनिया के अन्य जगहों में काफ़ी चलती है और ये अब धीरे धीरे न्यूजीलैंड तक पहुंच गई है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोफेसर एरन डेविस ने वन न्यूज़ को बताया कि ये जो क्रूडनेस है पॉलिटिकल लैंग्वेज का, इसे डायरेक्टली इम्पोर्ट किया गया है ट्रंप प्लेबुक से, और जहाँ जहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह के पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि RSV जो है ये नाम शायद कोविड जैसा पॉपुलर ना हो, लेकिन इसकी वजह से विंटर में ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। न्यूजीलैंड हैज़ गॉट सम ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सीरियस इलनेसेस कोस्ट बाय द वायरस, और हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं ये मांग कर रहे हैं नेशनल चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है इसे इंस्टीट्यूट किया जाए। पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन सेंटर ने इस हफ्ते एक ब्रीफिंग जो है ये की है जिसमें सरकार से मांग की गई है कि वो ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किए जाने वाले RSV वैक्सीन्स को यहाँ न्यूजीलैंड में भी अप्रूव करे। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अन्य कंट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है, और कम्युनिकेशन सेंटर का कहना है कि अगर ये अप्रूव कर दिया जाता है तो यहाँ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर विंटर के दौरान जो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो कम हो जाएगा। और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के जो पेडियाट्रिक एंड यूथ हेल्थ के प्रोफेसर हैं एमा बेस्ट, उन्होंने बताया है कि बच्चे जो है सांस लेने तक में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जो रेस्पिरेटरी सिंटेलियस वायरस है ये बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पर विंटर महीने के दौरान, मई और अक्टूबर के बीच, जिस दौरान लोग बहुत मुसीबतों का यहाँ पर सामना करते हैं। डॉक्टर हसन भली जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर हैं नॉर्थ शोर हॉस्पिटल में, उन्होंने रेडियो न्यूजीलैंड को बताया कि RSV की वजह से एक्चुअली मोर केसेस हो रहे हैं देन COVID-19 और इन्फ्लुएंजा, जो रिसेंट डाटा सामने आया है उसके मुताबिक। RSV is the most common of those troublesome three, with about 45% versus 25% for COVID or 30% for influenza. तो RSV से ज़्यादा लोग जो है ये पीड़ित हो रहे हैं। अभी भी विंटर का असर पड़ रहा है, बहुत सारे लोग जो है ये बीमार हो रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे मौसम में अपना ख्याल जो है ये आप ज़रूर रखें। इसके अलावा आपको तो पता ही है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये शुरू हो चुका है, और न्यूजीलैंड ने पहली जीत जो है बॉलिंग में हासिल कर ली है। और इसके अलावा और जब जब जैसे जैसे कॉम्पिटिशन आगे बढ़ेगा अपडेट्स हम पर आपको हम देते रहेंगे।

0: दो बातें आज की जाने से पहले। कहते हैं कि हुनर होगा तो दुनिया कद्र करेगी।
1: ओके।
0: हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचा नहीं उठता।
1: वेरी नाइस।
0: और दूसरी बात
1: जी,
0: ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बाज बने।
1: क्या बने?
0: बाज,
1: ईगल।
0: बाज, हाँ।
1: ओके।
0: ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बाज बने, धोखेबाज नहीं।
1: वेरी ट्रू। उम्मीद है कि आज की ये दो बातें आपको याद रहेंगी, इस पर कुछ अमल करेंगे लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, सही डिसीजंस लेने के लिए और खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात ये तो होगी अब कल एक बार, नहीं मंडे को एक बार फिर ठीक सुबह 6 बजे।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
7: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
0: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 10. Patient ratios are being called into question by picketers at Auckland's Waitakere Hospital. Stroke ward nurses walked off the job this morning, concerned that fall risk has increased and people are being left in pain for too long. Neil Warrington of the Nurses Union says there's not enough staff.
12: We're burnt out and we're tired. We want to be able to come to work and nurse our patients the way that we were trained to nurse our patients.
11: State Highway 7's reopened on the South Island's west coast. It was closed between Greymouth and Stillwater earlier this morning due to flooding. Shoppers are being urged to think twice before buying dishwashing detergent at the supermarket. Consumer New Zealand has tested several brands to determine their value for money. Spokesperson Joe Slater says buyers don't need to pay top dollar.
13: Price didn't really affect the quality of the wash. So the average was about 19 cents per wash, and our top few were actually at or below that price.
11: Nigel Farage has posted video of a woman who wound down her car window to hurl abuse at him before crashing moments later.
14: What'd you say?
15: She won't be doing that again, another day.
11: The Reform UK leader called it instant karma. In sport, the Commonwealth Games is officially underway with the opening ceremony complete. Glasgow 2026 chair George Black is proud of his city stepping up on Sky Sport after the Australian state of Victoria pulled out.
16: When the future of these games was uncertain, Glasgow didn't ask, can we asked, when do we get started?
11: And the Hawke's Bay Hawks have finished the National Basketball League season in last place, losing 107-82 to the Wellington Saints last night.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update, brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
17: The highs of 16 overnight, temperature of 9 आज का फॉरकास्ट बताया जा रहा है. पार्टली क्लाउडी डे, दोपहर के बाद बारिश पड़ सकती है. हैवी रेनफॉल की संभावना. थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट. इट फील्स लाइक 13 डिग्रीज, 531 पर सनसेट बताया गया है.

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? फ्राइडे का दिन है, 24 जुलाई है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. वैसे एक बात तो है, फ्राइडे का दिन आ गया, आपका मूड तो चेंज हो जाता है, मेरी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि फ्राइडे की खनक ही कुछ और होती है कि नहीं, आवाज़ के अंदर डेफिनेटली. और ऑफकोर्स चाल ढाल में भी हमारे काफ़ी फ़र्क आने लगता है, अलग सा एंथुजियाज्म बिल्डअप हो जाता है. वीकेंड पे ये करेंगे, वीकेंड पर ये करेंगे, वीकेंड पर वो करेंगे, बट हॉल्ट, रुको रुको रुको, क्योंकि समय कहता है मैं दोबारा नहीं आऊँगा. कौन जानता है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा. जीना है तो इस पल के लिए जियो, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा. तो भाई आपको याद रहना चाहिए कि वीकेंड तो आ गया है, और ऐसे में आपको आपकी रिमाइंडर क्लॉक बताना चाहती है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है कि नहीं भाई? ये तो मेरा काम ही है ना, मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक, अच्छा मैं काशिका आपकी रिमाइंडर क्लॉक आपको बताना चाहती हूँ. कशिश फूड्स के सौजन्य से मैं आपका साथ निभाती हूँ मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 बजे के दरमियान. और ऐसे समय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं आपके साथ बातें ज़रूर करती हूँ, कुछ बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमें पता हों लेकिन भूल जाते हों या याद नहीं रहता. और ऐसे में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम जब किसी होटल में जाते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, छोटी सी एक मैंने ऑब्जर्वेशन की है, मैंने सोचा आपके साथ वो भी मैं शेयर करती हूँ. फिर उसके बाद आप कहेंगे ओ यस आई कैन रिलेट टू दिस डेफिनेटली. कशिश फूड्स की ओर से वेलकम ऑन माय टाइम, मेरे साथ 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. गाना बजा रही हूँ ऑफिस शाउट आउट, याद रखना ओके 5599 पे या 0800 हम पर.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो मैं एक्सपर्ट अड्डा में आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हम किसी भी होटल के बाथरूम में जाते हैं, ये हमेशा एक बड़ा सेटअप हमें हमेशा वहां पे मिलता है, और सेटअप होता है एक लार्ज साइज का मिरर, और उसके पास में एक छोटा सा सर्कुलर मिरर होता है जिसका एडजस्टेबल आर्म होता है। काफी सारे गेस्ट जो होते हैं वो सोचते हैं कि बाथरूम का एक एक्सेसरी है, और सोचते हैं कि वाई डिड दे पुट अ सेकंड मिरर देयर, बट ये एक छोटा सा मिरर बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। द बिगेस्ट डिफरेंस एक रेगुलर मिरर और मैग्नीफाइंग मिरर में है इज द लेवल ऑफ डिटेल्स इट शोज। एक नॉर्मल मिरर जनरल रिफ्लेक्शन रखता है, और एक मैग्नीफाइंग मिरर जो है वो इनलार्ज करता है छोटे एरियाज ऑफ द फेस। और कभी कभी एक्यूरेसी मैटर्स, खास तौर पे जब आईलाइनर लगाना होता है, आई तो डेफिनेटली ब्रिंग इट फॉरवर्ड, या फिर शेविंग के टाइम हो बॉयज़ के लिए, या फिर शेपिंग ऑफ आईब्रोज, या कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह लगाने हो, या स्किन के डिटेल्स या फाउंडेशन को आपको बराबर मर्ज करना हो। ट्रैवलर्स जिनको नई जगह की आदत होती है उन्हें एक लाइटिंग के साथ वो थोड़े अनफेमिलियर होते हैं, तो यूजली दे ट्राई टू एडजस्ट, मोस्टली कहा यह जाता है। होटल रूम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बट डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड डिफरेंट एबिलिटीज़। ओल्डर गेस्ट की आईसाइट थोड़ी लिमिटेड होती है, और मैग्नीफाइंग ग्लास उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और जब कुछ छोटे छोटे लेबल्स पढ़ने होते हैं टॉयलेट्रीज के, वो ईजी हो जाता है। कुछ होटल्स इल्यूमिनेटेड वर्जन भी रखते हैं बाथरूम में लाइटिंग के साथ में, ताकि वो डिटेल्स जो हैं नज़र आने लग जाए। एक्स्ट्रा लाइट जो है ये शेडोज़ को रिड्यूस करती है, और एक क्लियर रिव्यू मिल जाता है। ओके, तो एक मूवेबल आर्म क्यों लगाते हैं फिर? ये डिज़ाइन इट्स नॉट रैंडम एक्चुअली, ये देखा जाए तो ये फिक्स्ड मिरर ओनली वर्क्स इन वन पोजीशन, लेकिन एक माउंटेड मिरर जिसका एडजस्टेबल आर्म होता है ये गेस्ट को अलाउ कर देता है टू मूव क्लोजर और पुश इट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ये सूटेबल होता है फॉर डिफरेंट हाइट, और ख़ास तौर पर बाथरूम का जो काउंटर होता है जो होटल में होता है वो क्राउडेड होने लगता है विद अनदर स्टैंडिंग मिरर, है ना। तो छोटे जो बाथरूम्स होते हैं उनके अंदर गेस्ट किस तरह से ये इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम प्रॉपर्टीज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी जब इन फीचर्स की बात होती है, और उनको लगता है, लोगों को लगता है क्यों लगाया है ये मिरर, बट उनका कम्फर्ट जोन जो होता है उनको लगता है कि क्यों ये हटा क्यों नहीं सकते। बेसिकली बेटर लाइटिंग, अपग्रेडेड टॉयलेटरीज, कन्वीनियंट चार्जिंग पॉइंट्स, मैग्नीफाइंग ग्लास एक लार्जर एक्सपीरियंस आपको देता है, और गेस्ट को बताता है कि वो डिटेलिंग जो है बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये जो मिरर है बाथरूम में ही क्यों लगाया जाता है, व्हाई डोंट दे पुट इट एवरीवेयर। तो ये जो मिरर है वैसे हर रूम में नहीं लगाया जाता, इट्स रिक्वायरिंग एडिशनल फिटिंग्स मेंटेनेंस के लिए और क्लीनिंग के लिए। कुछ बजट होटल्स जो होते हैं जो प्रेफर करते हैं बाथरूम को सिंपल रखने के लिए, लग्जरी और बिजनेस होटल जो है उसमें इसे इंक्लूड करते हैं जस्ट टू एड एज एन एक्स्ट्रा कन्वीनियंस। ये नेक्स्ट टाइम जब आप किसी होटल के बाथरूम में जाते हैं यू माइट नोटिस इट डिफरेंटली नाउ, क्योंकि ये एक डेकोरेटिव पीस नहीं है, इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल कि किस तरह से होटल्स डिज़ाइन करते हैं स्पेसिस को, और हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट जो है अपने रूटीन में एवरीडे नीड में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा सर्कुलर सा मिरर, या फिर वो जो भी आप छोटे से वॉल स्पेस में आपकी जगह ली हुई है, इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ योर्स विच कैन बी सॉल्व्ड, है ना। अब आप उस मिरर को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, तो चलो ठीक है। मैं ऑफिस शाउट आउट के बारे में बातचीत करने वाली हूँ, कोई है जो ऑफिस शाउट आउट चाहता है 5599 पे टेक्स्ट करें, या 800 हम पर कॉल करें।
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़ न

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office shout out.
2: तो जब मैं ऑफिस शाउट आउट की बात करती हूँ तो मेरे पास आया है बियॉन्ड हॉलीडेज से मैसेज एंड थैंक यू सो मच. आप मुझे इस समय सुन रहे हैं एंड हेमल थैंक्स फॉर दिस एंड हेतल थैंक यू सो मच. आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये ऑफिस शाउट आउट आपकी ओर से आ रहा है. अभी हेलो हेलो टू ऑल द टीम मेम्बर्स देयर. और साथ साथ जब मैं बात कर ही रही हूँ तो मुझे आपको याद दिलाना है अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग जो कल होने वाला है. अब आप सोच रहे होंगे कि कल तो राहत फतेह अली खान होने वाला है, तो बिल्कुल आपको उसी के बारे में बता रही हूँ. वेल वी आर जस्ट गोइंग टू इन्फॉर्म यू दैट दे आर नियरली सोल्ड आउट. तो आपको बस क्या करना है, drytickets.com पे टिकट खरीदनी है और ये कल ट्रस्ट अरीना में आप राहत फतेह अली खान जी का जलवा ज़रूर देखने वाले हैं. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए ये लेकर आने वाले हैं.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Eat better, live better.
1: लिव बेटर ईट बेटर इतना ही कह सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, कुछ नए फिगर्स जो हैं जो बता चल रहा है, जो ओवरसीज़ अप्लाई करें फॉर यूनाइटेड किंगडम्स सिटीजनशिप्स एंड पासपोर्ट, ये एक रूल जो है ये जब चेंज हुआ फॉर डुअल सिटीजनशिप, न्यूजीलैंडर्स विद ब्रिटिश हेरिटेज या फैमिलीज दे वर कॉट इन विद द सरप्राइज इस साल की शुरुआत में दैट दे कुड नॉट ट्रैवल बैक टू यूके ऑन देयर न्यूजीलैंड पासपोर्ट. अब लेट फरवरी में ब्रिटेन एंड आयरलैंड को सिटीजन्स के लिए ये रिक्वायर्ड है, जब उनकी कंट्रीज में आप आ रहे हैं तो $1,300 का के करीब का, आई थिंक इट वॉज अ सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट टू यूज़ देयर न्यूजीलैंड पासपोर्ट. अब यूके होम जो ऑफिस के जो फिगर्स हैं, ओवरसीज़ पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो ट्रिपल तक बढ़ गई, 300,000 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026. ब्रिटिश पासपोर्ट ऑफिस के पास 500,000 एप्लीकेशन आई इन टोटल इन इट्स सिस्टम, द हाईएस्ट ऑन द रिकॉर्ड. कुछ न्यूजीलैंडर्स के लिए फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने डिस्कवर किया कि दे वर क्लास्ड एज ब्रिटिश सिटीजन्स और प्रीवियसली उनके पास ये यूके का पासपोर्ट था भी नहीं. अब ये जो है, आरएनजेड ने इसके डुअल नेशनल के बारे में पता लगाया, हु ट्रैवल टू यूके विदाउट अ ब्रिटिश एंड आयरिश पासपोर्ट, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो चल रही थी प्रॉब्लम, कई इंक्वायरीज भी की गई कि वेदर बॉर्डर ऑफिशल्स को यू नो इन एनी वे बॉर्डर स्टाफ को चेकिंग करने का मौका मिला या नहीं मिला न्यूजीलैंड पासपोर्ट होल्डर्स को, ऑल दीज थिंग्स. तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ जो निकल के आ रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट जो है ऑफ अ शॉर्ट टर्म ट्रांजिशनल मेजर, इट्स नॉट वेरी क्लियर. और एक आर्टिकल जो था, एक इमिग्रेशन लॉयर ने जो था वो पोस्ट किया कि ऑनलाइन चार्जेस वर मेड वैलिड एंड दे रिमेन वैलिड. अब रिसर्च हुई इसके ऊपर, बहुत कुछ हुआ, तो अगर आप ये होल्ड कर रहे हैं, आप ये पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, तो जो EU के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बताया कि $39 में वीज़ा वेवर है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ETIAS, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग. और इससे एक जो डिले हो रहा था लास्ट क्वार्टर में, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन बढ़ गया था, लेकिन अब अथॉरिटीज़ ने प्रॉमिस किया है एक लॉन्च डेट अनाउंस की जाएगी सेवरल मंथ्स इन एडवांस, और उसके बाद ही फिर बाकी बातें होंगी. तो हमारे साथ साथ जुड़े रहिएगा, इट इज़ रियली कंफ्यूजिंग. बट जिनके पास यूके के पासपोर्ट्स हैं और वो यूके ट्रैवल भी करने वाले हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू विजिट देयर वेबसाइट.

0: time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better. आपका टेक्स्ट थोड़ा लेट आया मेरे दोस्त, लेकिन वेरी हैप्पी. और समय को ऐसे वैसे तैसे करने वाली, रुक रुक के जाने वाली, होटल के मिरर के आर पार देखने वाली. ओहो हो, क्या बात है. चिलिंग एंड ठंडी ठंडी वाली. वेरी गुड मॉर्निंग काशिका जी, एश फ्रॉम सुशील्स मसल शेफ कैफे वेलिंगटन. थैंक यू वेरी मच. कितने ध्यान से सुनते हो आप. आपका टेक्स्ट थोड़ा आज लेट आया, मुझे लगता है कि शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हुई होगी. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्स्ट. बाय द वे, मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑल्सो अबाउट यू नो कुछ कॉमन चीज़ें जो होती जा रही हैं. एंड ऐसे में बंटवारा 1947 के बारे में मैंने आपके साथ बातचीत की थी. और एज़ पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो बंटवारा 1947, इसको अडल्ट रेटिंग के लिए ही पास किया गया है. और ये जो सर्टिफिकेट है, ये कल हैंडओवर भी कर दिया गया. और ये फिल्म बताया जा रहा है 2 hours 25 minutes की लगभग होने वाली है. इट्स अ रेयर फिल्म जहाँ पे सनी देओल की फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है. यूजुअली वो फैमिली ऑडियंस की तरफ ही एम करते हैं. एंड यू नो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शायद ए पर नहीं जाती. आई डोंट इवन रिमेंबर कि इनका कोई ए की कोई पिक्चर, एडल्ट्स की कोई ऐसी पिक्चर बनाई भी होगी. तो येस, इट्स द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म. बंटवारा 1947 इज ऑन अ प्ले जिस लाहौर नहीं देखा. ओके, और ये सैयद असगर वजाहत ने लिखा था. पार्टीशन एरा की स्टोरी अराउंड अ मुस्लिम फैमिली हु माइग्रेट्स फ्रॉम लखनऊ टू लाहौर. एंड उनको एक एलोकेट की जाती है एक हवेली ऑफ अ हिंदू फैमिली. अब क्या होता है, क्या नहीं होता है, यही पूरी कहानी है बंटवारा 1947.
2: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली बस मेरा फोकस है.
2: हाँ. अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
2: मिसेस सिंह.
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
5: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
6: चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स. सेलेक्टेड नए ओमोडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए

0: क्रेडिट क्राइटेरिया फीस टीज एंड सीज अप्लाई.
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
3: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
4: The Bedzaras birthday sale is on now with amazing savings. Like the chiropractic HD Radiate bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzaras, Medical and Poke Kohe, celebrating 36 years of great sleep.
5: It's Carpet Court's massive 3-day sale. Right now, save thousands on carpet, vinyl and hard floor, including massive savings on big brands like Rhino. Bring in your floor measurements today. Hurry, sale ends Saturday, only at Carpet Court.
6: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
7: Sorry about that.
6: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
7: Kogan Mobile, true Aussie value.
6: Terms and conditions apply.

डायरी। आपके सपने में एक बिल्ली कैट आई है। वैसे कैट अगर आपके सपने में आती है, इट्स प्रोटेक्टिव इटसेल्फ, क्योंकि नो मैटर व्हाट दे लाइक टू कीप देमसेल्फ सेफ। और एक बिहेवियर होता है एवरी सिंगल थिंग यू नो यू आर वॉचिंग, कैट इज वॉचिंग एवरी सिंगल थिंग, लेकिन यू नो वो अपनी आप अपनी सेफ्टी को कहीं नहीं छोड़ती। ये बिहेवियर यू नो जब तक उनको अटैक नहीं किया जाता वो थ्रेटनिंग नहीं होती और कभी भी इतनी डेंजरस भी नहीं होती। वैसे परफेक्ट सेफ्टी इज़ वॉट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये ख़ास तौर पे जब होता है जब लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अच्छा ठीक है ये है वो है, और रिएक्ट नहीं कर रहे होते किसी बात पे, पॉजिटिवली स्पीकिंग यू नो कि जब ये कैट्स देखते हैं ये रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन, एनिमीज़ या फिर ऑब्स्टिकल्स जो आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं। और रियलिटी ये होती है कि आप बहुत जल्दी ना इन बातों से डरते नहीं हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक एक्ट है जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैट की तरफ ही देख लो। यू नो मोस्टली जब हम कैट की तरफ देखते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने टाइम पे ही सोती हैं, अपने टाइम पे उठेंगी, अपने टाइम पे बाहर जाएंगी, ऑल दोज थिंग्स। तो ये कुछ एम्प्टी थ्रेट्स जो होती हैं दे डोंट वर्क ऑन पीपल। लाइक अगर आपने कैट को देखा है सपने में तो मे बी इट्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग नाइस अबाउट यू, इट्स अ नाइस सेफ पर्सन दैट यू आर, आई कैन से दैट, एंड हुज बेस्ट अगर आपको अकेले छोड़ दिया जाए। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ना गुस्सा करती हैं ना आप उन चीज़ों से बॉदर होते हैं, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। आप क्या ऐसे किसी बंदे या बंदी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं हुज़ एक्चुअली गॉट दिस काइंड ऑफ यू नो फीचर्स।

थ्रोबैक में आपको बस इतना ही याद दिलाना चाहती हूँ दैट गरबा नाइट होने वाली है अगले सैटरडे को महात्मा गांधी सेंटर में. eventsticket.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं. राज गढ़वी विल बी परफॉर्मिंग लाइव फॉर यू और ये आपके लिए मुमकिन है विद द लोटस प्रोडक्शन श्री इवेंट न्यूजीलैंड एंड साथ में विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप आपके लिए लेकर आने वाले हैं. वैसे एक डबल पास जीतने के लिए RG लिख के भेजिए आप एंड आपका नाम है ड्रॉ में ऐड जरूर कर देती हूँ फॉर द स्पेक्टेकुलर इवेंट. एंड कोशिश कीजिएगा अगर आपको टिकट खरीदनी है तो eventsticket.co.nz के जरिए जाके फटाफट ये टिकट आप खरीद सकते हैं. एक गाना ऐसा जो मुझे बहुत पसंद आया था एंड मीनाक्षी शेषाद्री वॉज जस्ट फैंटास्टिक इन दिस मूवी अलॉन्ग विद नन अदर देन द मैन विद द 2.5 किलो का हाथ. यस ये डेफिनेटली कमाल की फिल्म थी एंड दामिनी फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता था सनी देओल जी ने और साथ साथ राजकुमार संतोषी फॉर द बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट स्टोरी बाय सुतानु गुप्ता और साथ साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी बेस्ट फिल्म दामिनी को मिली थी और अमरीश पुरी एंड मीनाक्षी शेषाद्री को नॉमिनेशन मिली थी फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट विलन रिस्पेक्टिवली. सो वन सॉन्ग फ्रॉम देम

0: इसका जो चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुस्बी, टिकट्स बुक हो गए।
3: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better month at Farmers.
11: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
12: Lots.
11: Will they word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
12: Probably.
11: Am I paying for this free coffee?
12: Definitely.
11: Will they talk me into an upgrade?
12: Oh.
11: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
13: Cheer, Midas!
14: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy.
15: Bunnings Warehouse.
14: Lowest prices are just the beginning.
16: Own the game, own the gear. It's sale time at Rebel Sport. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store wide. Here in Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
17: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 11. A weather bomb has dumped at least 50 millimetres of rain on Greymouth in just 6 hours. Grey District Mayor Tania Gibson says the full extent of flooding is still being assessed, but she believes it's gone through some properties.
18: Civil defence are out working with people and the fire brigade are out helping people as well. We're asking people if they have been affected to get in touch, but there was no evacuations as such.
17: Auckland police have confirmed the recovery of a body in the Swanson area yesterday. Acting Detective Inspector Megan Goldie says while formal identification process has just begun, it's believed to be missing 20-year-old Wolvedi Ding. The death will be referred to the coroner. New Zealand's among 60 countries set to be slapped with sweeping new tariffs by the United States. The Trump administration's announced import taxes of between 10 and 12.5% on nations it claims are not doing enough to combat forced labour. They'll come into effect at 4 this afternoon. Nurses at Auckland's Waitakere Hospital are calling for an end to unsafe patient ratios. A stroke ward staff walked off the job today. Neil Warrington of the Nurses Union says it follows a series of worrying events.
19: Very, very hard to keep our patients safe sometimes. We've got a lot of patients that are high falls risk, quite confused.
17: In sport, the Loch Ness Monster and thousands of athletes and para-athletes took centre stage at the Commonwealth Games opening ceremony in Glasgow. The King and Queen arrived in the indoor arena in Doctor Who's TARDIS before Charles did the honours on Sky Sport.
20: It is now my great pleasure to declare the 23rd Commonwealth Games open.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
21: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं
12: Anne's Funeral Home and on-site cremations.
13: सूचित किया जाता है कि पुकेनो के विजेंद्र प्रसाद की पत्नी पुकेनो के वरुण और कार्तिक की माँ एग्निया वेदा अर्जुन और मारिया की दादी माँ पुकेनो के रत्नामाला प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 0272687656 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. पुकेनो के विजेंद्र प्रसाद की पत्नी पुकेनो के वरुण और कार्तिक की माँ एग्निया वेदा अर्जुन और मारिया की दादी माँ पुकेनो के रत्नामाला प्रसाद की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आज 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0272687656 पर आप संपर्क करें. स्वर्गीय मुरारी लाल की पत्नी सतीश चंद, राकेश चंद्र, रजनेश चंद्र और हरिनेश लाल की माँ पपटोई की विद्यावती लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0217386678 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. स्वर्गीय मुरारी लाल की पत्नी सतीश चंद, राकेश चंद्र, रजनेश चंद्रा और हरिनेश लाल की माँ पापाटोई के विद्यावती लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0217386678 पर आप संपर्क कर सकते हैं. विसारू बाग के स्वर्गीय नागैया नायडू के पुत्र सादा पिल्ले केशवान, चिन्नैया और चंद्रकांता के भाई मनोज कुमार और ANZ की पूनम सिंह के पिता सेगा रियलिटी के कृष्णामूर्ति की मृत्यु मेडलमो हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार आने वाले रविवार के दिन दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड सेट क्रीमेशंस में किया जाएगा. सूचना दोबारा सुने. विसारू बा के स्वर्गीय नागैया नायडू के पुत्र सादा पिल्ले केशवन, चेन्नैया और चंद्रकांता के भाई मनोज कुमार और ANZ की पूनम सिंह के पिता सेगा रियलिटी की कृष्णामूर्ति की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार आने वाले रविवार के दिन 26 तारीख को दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा.
21: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
22: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
23: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
22: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: The highs of 16, overnight temperature of 9. आज का forecast बताया जा रहा है. Rain possibly heavy showers जो expected हैं. Thunderstorm के साथ साथ it feels like 14 degrees right now. 5:31 पर sunset बताया जा रहा है.

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. हाउ आर यू? आप कैसे हैं भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और पूरा प्लान बना चुकी हूँ कि अगर आपने कुछ प्लान नहीं बनाया तो एक प्लान तो ज़रूर आपको बनाना पड़ेगा. मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपके साथ और ये प्लान है आपको अपने लिए बनाना है, जहाँ थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो रिजुविनेट होने के लिए, अपने आप को बिल्कुल वापस फॉर्म में लाने के लिए, ताकि मंडे को काम पे जोश के साथ आप लौट कर आएँ, ठीक है ना? अरे भाई, मैं ना आपकी रिमाइंडर क्लॉक हूँ तो आपको ये बात तो बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि समय कितना ज़्यादा मूल्यवान है. जब मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो मैंने ज़रूर एक बात कही थी कि समय ये कहता है कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा. कौन जानता है कि मैं तुम्हें हंसाऊँगा या रुलाऊँगा. जीना है तो इस पल के लिए जियो, क्योंकि इस पल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊँगा. तो ये तो समय का ज्ञान हुआ, लेकिन मेरा ज्ञान अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ. और कशिश फूड्स को थैंक यू भी करना चाहती हूँ, जिनके सौजन्य से आपके लिए मार टाइम 10 से 12 बजे के दरमियान आ जाता है. और आप ज़रूर कशिश फूड्स के स्टॉल पे चले जाएगा जो फूड शो में है, जाके ज़रूर कहिएगा काशिका ने भेजा है आपको, ठीक है? चलो, शायद कुछ फ्रीबीज भी वहाँ पर आपको मिल जाए इसी बहाने. वेलकम ऑन माई टाइम मेरे साथ 12 बजे तक.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: तो न्यूजीलैंड हैज जॉइन 59 अदर इकोनॉमीज, जहाँ पे यूके और ऑस्ट्रेलिया भी ऐड किया गया है, जहाँ ये टैरिफ जो है रेंजिंग होगी फ्रॉम 10% टू 12.5%.

0: सो यू नो हम लोग कभी कभी क्या हमारी टेंडेंसी होती है ना कि हम जब एक लेन में चल रहे होते हैं और सडनली उस लेन से चलते चलते हमें बगल वाली लेन जो दिखती है उसमें दिखाई देता है कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो मन करता है कि फटाफट वहाँ पे हम लोग चेंज करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं ना ये कोई रोडवर्क्स, कोई एक्सीडेंट या कोई लेन क्लोजर की वजह से बढ़ता चला जाता है, और कभी कभी ये क्यूज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं। अब इन्हें कहते हैं फैंटम ट्रैफिक जैम्स, यानी कि ये स्टॉप स्टार्ट वेव्स जो होती है जहाँ ट्रैवल आप कर रहे होते हैं और आप हर व्हीकल को लगता है आपसे आगे निकल रहा होता है। एक जापनीज रिसर्च हुई थी इन 2008 जहाँ पे रिसर्चर्स ने 22 ड्राइवर से कहा टू ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक और अपने कांस्टेंट स्पीड और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना अपने व्हीकल से जो आपके फ्रंट में हो। विद इन मिनट्स छोटे छोटे अनअवॉइडेबल डिफरेंसेस, ब्रेक रिएक्शन, ये बढ़ता चला गया एंड स्टॉप स्टार्ट वेव स्टार्ट हो गई जहाँ जो लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे अराउंड द सर्किट, डिस्पाइट कोई ऑब्स्टिकल नहीं था वहाँ पे, फिर भी उसके बावजूद भी वो उसमें लगे हुए थे। ये एक्सप्लेनेशन सिंपल है, एक ड्राइवर जो है ब्रेक्स स्लाइटली ज़्यादा ही लगाता है जो कि उनको लगता है कि नेसेसरी है, और जो ड्राइवर पीछे होता है वो उसको थोड़ा टाइम लगता है फिर वो ब्रेक हार्ड करता है, नेक्स्ट ड्राइवर उसके पीछे वाला और वैसे करता है। इन दिस वे ये एक इनिशियल टाइनी डिस्टर्बेंस जो होती है ट्रैवल बैकवर्ड्स चलने लग जाता है और ड्राइवर्स जो हैं हंड्रेड्स ऑफ मीटर से धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप को स्लो करते चले जाते हैं। रादर दैन मॉडलिंग एवरी ड्राइवर जो इंडिविजुअली ड्राइव करते हैं, मैथमेटिशियंस ने कहा है कि ट्रैफिक को एक कंटिन्यूस फ्लो की तरह से आप ट्रीट करिए, और ये बोरिंग आइडिया है ना ये इसको छोड़ दीजिए जहाँ पे आप लेन चेंज कर रहे होते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिलेशनशिप जो है ट्रैफिक के फ्लो के साथ थ्योरी में वो है कि जहाँ पे ट्रैफिक वेयर ट्रैफिक क्यू इज़ द ट्रैफिक फ्लो, ठीक है, और पी इज़ द ट्रैफिक डेंसिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, द अमाउंट ऑफ कार्स ऑन द रोड, एंड वी इज़ जहाँ पे एक एवरेज स्पीड से कोई गाड़ी चला रहा होता है। ये एक सिंपल इक्वेशन है जो एक्सप्लेन करता है कि भाई ये आपकी लेन्स किस तरह से चल रही हैं। इनिशियली ये ज़्यादा व्हीकल्स अगर आप ऐड करते हैं फॉर द ओवरऑल ट्रैफिक फ्लो, तब व्हीकल्स जब रोड को पास करती हैं तब आपको गर्दी होनी शुरू हो जाती है, मुश्किल होनी शुरू हो जाती है, बट जब एक बार रोड्स ओवर क्राउडेड हो जाती हैं इफ़ यू आर डेफिनेटली फोर्स टू गो स्लो। ये इक्वेशन जो है देर इज़ एन ऑप्टिमल ट्रैफिक डेंसिटी जो मैक्सिमाइज करता है व्हीकल्स को जो पास करना चाहती हैं एक दूसरे से भगदड़ में लगी रहती है, यही मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करती है लेन चेंजिंग इज़ इट रियली वर्थ वाइल और नॉट। ये लेन चेंजिंग कभी कभी डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो सिग्नलिंग प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्म करती है मेजरमेंट्स फ्रॉम रोड सेंसर्स कैमराज या जो व्हीकल्स होते हैं और साथ साथ ड्राइवर का एक बिहेवियर होता है, वेदर कंडीशंस होती हैं, चेंजिंग ट्रैफिक की डिमांड भी होती है, और साथ साथ कुछ एक फॉरकास्ट होती है जो आप शायद रेडियो पे सुन रहे होते हैं ट्रैफिक जाम से रिलेटेड, और एक्यूरेट ट्रैफिक तो हमारा आप सुनते ही हैं, और ये कंट्रोल थ्योरी जो होती है लूप में रहती है कि ट्रैफिक सिस्टम किस तरह से उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, ट्रैफिक लाइट्स के टाइमिंग्स, आपके अडेप्टिव स्पीड लिमिट जो यहाँ पर कितनी जल्दी बदल जाती है। तो फिर अपनी जर्नी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है हम वो उस हिसाब से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आगे चलना शुरू हो जाते हैं। बट रिसर्चर्स ने बताया था कि वो सर्कुलर ट्रैक का जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट इटसेल्फ शोड हमारा टेम्परमेंट क्या होता है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस और अपने ब्रेक्स और जब आप स्पीड दे रहे होते हैं स्मूथ रखिए, और टेम्पटेशन रिजल्ट आप रिजिस्ट कीजिए जहां आपको लेन्स को स्विच करना हो। हो सकता है दिस इज़ द ओनली वे आउट टू एक्चुअली मूव अहेड। सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट, कोई है तो बताइए क्योंकि मैं चाहती हूं मैं इंस्टा पे इसे शेयर करूं।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
2: Life doesn't stop when you decide to study. Whether you're working, raising a family, or planning your next career move, With SIT Online, you can gain new skills and qualifications without putting your life on hold. Study where you are. Learn when it suits you. Gain a recognized qualification. From education and enterprise to creativity and career development. Study your way, your time, your place, your future. Visit sit.ac.nz today.
3: SIT Online. Learn without limits.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Branchy Group, Tree Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Marine Prastut Kare Chhe Raj Gadvi Live in Auckland.
8: Hey, hello, bhai, hello, hello.
7: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે, જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજ ગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજ ગઢવી, સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
9: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर. यार
10: क्यों, क्या हुआ?
9: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
11: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

0: Twitter. Six Word Story.
1: तो मेरी आज की सिक्स वर्ड स्टोरी है, बहुत ही मायने रखती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दे हैव रिटन, अलोन एंड लॉस्ट शी बिकेम स्ट्रॉन्ग. अलोन एंड लॉस्ट शी बिकेम स्ट्रॉन्ग. आई लव्ड इट. एब्सोल्युटली आई एम श्योर आप बहुत करेजियस हैं एंड वुमन पावर ऑफ कोर्स डेफिनेटली दिख रही है यहाँ पर. तो थैंक यू सो मच आपने ये टेक्स्ट किया. बट आई थिंक ऐसे में आपने अपना नाम नहीं लिख के भेजा और आपने कहा ये आपकी बीती है एंड मैं आपके लास्ट डिजिट्स भी नहीं बताऊंगी, जस्ट एज रिस्पेक्ट. बट आई विल डेफिनेटली शेयर द स्टोरी ऑन हम इंस्टा, तो ज़रूर आप सुनिएगा. वैसे सुनिएगा ज़रूर अब ध्यान से, क्योंकि एक डबल पास जीतने का मौका है आपके लिए. आपका नाम ड्रॉ में मैं ऐड कर सकती हूँ, जहाँ पर हमें पता है 25 तारीख को करण औजला पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आने वाले हैं एट द स्पार्क अरीना. अगर आपने अभी अभी इस बारे में सुना है तो हम .rova.nz या livenation.co.nz के ज़रिए आपको इसकी टिकट्स और इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है. लेकिन अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो एक डबल पास जीतने के लिए बहुत ही प्यारा मौका है, जहाँ पर आपको मुझे लिख के बताने का है. नौजला का शॉर्ट फॉर्म है KA. आप KA लिखे कीवर्ड और बताइए आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है करण औजला का. आपका नाम ज़रूर लिखना मत भूलिएगा. आपका नाम मैं ड्रॉ में ज़रूर ऐड कर दूंगी. गौरव एंड निलेश, मैंने आपका नाम ऑलरेडी ऐड कर लिया है.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: अली खान 25 जुलाई यानी कि कल ये होने वाला है एंड सैटरडे दिस मेगा थिंग इज गोइंग टू गेट ओवर. मास्टर ऑफ कव्वाली, मास्टर ऑफ सूफी, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड कोई एक्स्ट्रा शो नहीं, कोई सेकंड चांस आपके लिए नहीं है. द वॉइस बिहाइंड द मोस्ट अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स आपके लिए आ रहे हैं. dryTickets.com के जरिए आप ये टिकट खरीद सकते हैं, ट्रस्ट अरीना में पहुँच सकते हैं और ये लास्ट फ्यू टिकट्स बची हैं जो आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल हैं. सो गो एंड बाय द टिकट्स राइट नाउ.
1: My time with Kashika. Wow. How? Oh. Adbhut.

0: ஜர்னி ஹை.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: कम्युनिटी में क्या हो रहा है चलिए हम आपको बता ही देते हैं, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आप हमारे साथ साथ अपनी कम्युनिटी में हम आपकी आवाज़ बने, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको फोर्थ न्यूजीलैंड कैरम टूर्नामेंट में इनवाइट करना चाहती है 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त के दिन बर्कनहेड स्काउट्स हॉल में. यहाँ पर जो स्किल लेवल्स हैं पार्टिसिपेशन के लिए आपके लिए प्लेयर्स के लिए रेडी किए जा रहे हैं. रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन फेसबुक के पेज पर आप जा सकते हैं, नहीं तो इनके प्रेसिडेंट पंकज मुंगा से आप संपर्क भी कर सकते हैं 021-090-8506-067 पर. फीजी गिरमिट फाउंडेशन और एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रिमेशंस आपके लिए इसी संडे के दिन हेल्थ एंड वेलबींग का एक एक्सपो लेकर आ रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल फ्री इवेंट है. सुबह 10 बजे से 3 बजे तक A1 इवेंट सेंटर में ये किया जाने वाला है, जहां फ्री स्क्रीनिंग होगी फॉर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, ECG, आई टेस्ट. इसके साथ साथ इन्फो मिलेगी ऑन कैंसर स्क्रीनिंग एज वेल, प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ CPR, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेंटल हेल्थ बींग के बारे में एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और फिर बच्चे आप लोगों के लिए जो अगर आप साथ लेकर आ रहे हैं किड्स एक्टिविटीज, फेस पेंटिंग, हैम्पर्स, गिव अवेज, लाइट रिफ्रेशमेंट्स, इन सब का बंदोबस्त किया गया है. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में अखंड रामायण का पाठ 1st and 2nd August को होने वाला है, और ये सैटरडे को जो है ये सुबह 7 बजे शुरू होगा और संडे को 10 बजे सुबह शुरू होगा. महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है. और इसके साथ साथ ऑकलैंड रामायण ट्रस्ट मासिक जो रामायण कथा है वो अगले फ्राइडे के दिन जो है वो होने वाली है शाम 7:15 बजे. जगह तो आपको पता ही है, RST कम्युनिटी सेंटर 53 स्क्रिप्टन स्ट्रीट मैंगरी में. सभी इनवाइटेड हैं और 022-670-5271 के ज़रिए आप संपर्क भी कर सकते हैं. आपकी भी कम्युनिटी की कोई ऐसी खबर है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो buzz@hamfm.com पे आप हमें ईमेल ज़रूर कर सकते हैं.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
3: ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ

क्यों मेरी रिसाइकल में मैं आज बात करती हूँ अबाउट रबर बैंड्स, जो आपके स्लिपरी कोट के हैंगर्स होते हैं ना, तो अगर उनके आसपास आप ये लगा देते हैं टू प्रिवेंट द शर्ट्स और ड्रेसेस जो स्लाइड ऑफ करने लगती हैं, तो ये कभी कभी रैप रबर बैंड कर दीजिएगा ना अगर आप, तो आपके जो रबर बैंड्स की वजह से हैंगर्स के साइड्स पे कोने पे जहाँ पे उनके यू नो आर्म टाइप होते हैं, जैसे हेड होता है ना जिसमें हैंग पे हुक करते हैं, फिर रबर बैंड्स आप अगर आसपास लगा देंगे तो वो कभी आप नोट करेंगे कि रबर बैंड्स रोक लेंगे अगर आपकी शर्ट या कोई ड्रेस जो है वो स्लिप कर रही होती, तो फेंकिए मत इन रबर बैंड्स का या जो टैग्स होते हैं आपके हेयर टैग्स, इनका इस्तेमाल आप बड़े आराम से इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ जो मुझे शेयर करनी थी वो थी हमारे म्यूज़िक स्टेशंस के बारे में। डेफिनेटली आप हमारे म्यूज़िक स्टेशंस को प्यार से ध्यान से सुनते चले जाते हैं, तो याद रखिए हम रिवाइंड 80s के जूक बॉक्स, फीजी कीर्तन संग्रह और फीजी भजन, चर्दी कला और राहत फतेह अली खान जो कल आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, आपके लिए अवेलेबल हैं।

तो भाई चलिए इसी के साथ साथ यहाँ समापन हो रहा है, यानी कि अब मेरे जाने का वक्त आ रहा है। बट नीलेश एंड अंतप्रीत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेक्स्ट, एंड अभी के लिए मैं चलती हूँ। वैसे मंडे की सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा, एंड याद रखिएगा राहत फ़तेह अली खान कल परफॉर्म करने वाले हैं, तो ट्रस्ट अरिना